मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के अषाढ़ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 49 सेकंड हुए हैं। आज की हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में मैं आपके साथ हूँ, आपके रेडियो मित्र रश्मि राहुल। सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र द्वारा अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की 2 दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है।

0: साबित है। श्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं सामूहिक स्वर में देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना का इस कार्यक्रम में प्रारंभ में अभी आपने सुना देशगान, तो आइए आप सुनते हैं नरेंद्र चंचल के द्वारा गाया हुआ कार्यक्रम का ये पहला भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और अभी आपने सुना नरेंद्र चंचल और उनके साथियों के स्वरों में गणपति बाबा को याद करते हुए भक्ति विभोर से ये गीत। तो आइए आप सुनते हैं पामिला जैन व साथियों के स्वरों में कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसके अंतर्गत हम आपको अभी सुनवा रहे थे पामेला जैन व साथियों के स्वरों में श्याम सुंदर हमार इस गीत पर, इस भजन पर बहुत ही प्यारी सी प्रस्तुति। तो आइए अब सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का ये अगला भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए कार्यक्रम के अंत में अब आपको सुनवाते हैं आशा भोंसले की मधुर आवाज़ में कार्यक्रम का ये अंतिम भजन।

0: श्रोताओं से अंतिम भजन के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन में आज सुनिए जमीन इस विषय पर बसंत निरगुड़े का आलेख, वाचक स्वर है डॉक्टर अरविंद सोनी का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: प्रारंभ में जमीन कैसे बनी, धरती का निर्माण कैसे हुआ, धरती बन जाने के बाद सृष्टि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इन बातों का जवाब हमें या तो पुराण कथाओं में मिलता है या आदिम पुरा कथाओं में मिलता है। जमीन से पहले क्या था? क्या पहले जमीन थी? इस पहेली को सुलझाने का प्रयास बैगा जनजाति का एक मिथक या मिथ कथा ने किया है। मिथ कथा कहती है, सृष्टि के प्रारंभ में न जमीन थी, न आकाश था, न हवा थी, न पानी था, था तो केवल शून्य था। यहां तक कि भगवान के मन में किसी प्रकार की इच्छा तक नहीं थी। हजारों वर्ष इसी तरह निकल गए। एक दिन भगवान के मन में इच्छा जागृत हुई और सृजन की शुरुआत हुई। सबसे पहले भगवान ने शून्य से आकाश बनाया, फिर हवा बनाई, चांद सूरज बनाए, इसके पश्चात जल बनाया। चारों ओर जल ही जल हो गया। हवा चलने लगी, जल में लहरें उठने लगीं। भगवान लहरों पर फिर हजारों साल सोते रहे, हिचकोले खाते रहे। जल के ऊपर एक पुरैन पत्ता तैरने लगा, उस पर भगवान बैठने लगे। ऐसे कई दिन निकल गए। भगवान दिन रात सोच में रहने लगे। उन्होंने सोचा, यहां मैं और केवल मेरा संकल्प है। फिर वो दिन भी आया जब भगवान ने अपने संकल्प को साकार करने का सुदृढ़ निश्चय किया। उनके मन में एक बारगी विचार आया कि यहां तो जल ही जल है, धरती या जमीन कहीं है ही नहीं, आखिर जीव अपने पैर कहां टिकाएगा। ऐसा सोचते सोचते भगवान ने अपनी छाती से मैल निकालकर एक कौवा बनाया, कौवे में जान डाली। इसके बाद कौवे को आदेश दिया, जाओ रे कौवे, तुम जाकर धरती जमीन मिट्टी का पता लगाओ। आदेश पाकर कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते उसे एक कछुआ दिखाई दिया जिसका नाम कुंवर ककरामल था। कछुआ जल के ऊपर

0: सुस्ता रहा था। कछुए के बड़े बड़े डाढ़ थे। कौवा भी उड़ते उड़ते थक गया था। उसे विश्राम की भी कोई जगह नहीं दिखाई दे रही थी। आखिर में वो थक कर कछुए की डाढ़ पर बैठ गया। थोड़ा सुस्ताने पर कौवा बोला, भैया तुम्हारा परिचय क्या है? कछुए ने कहा, मैं कुंवर ककरामल हूं। कौवे ने कहा, मैं भगवान का दूत कौवा हूं। कुंवर ककरामल, तू झूठ मत बोलना, मुझे ईमानदारी से धरती जमीन मिट्टी का पता बता देना। मैं भगवान के कहने पर ही धरती की मिट्टी लेने आया हूं। ये सुनकर कुंवर ककरामल ने कौवे को अपने डाढ़ में दबाया और पाताल लोक की ओर ले गया। तब धरती पाताल लोक में थी। राजा किचकमल केंचुए ने धरती और उसकी सारी मिट्टी को दबोच रखा था। कछुआ कौवे को लेकर राजा किचकमल के सामने आया। कौवे ने सारी कथा सुना दी। राजा ने सोचा, कौवे की चोंच में कितनी मिट्टी आएगी, इसे मिट्टी देने में कोई नुकसान नहीं है। कौवे ने राजा से भगवान के लिए थोड़ी सी मिट्टी मांगी। मांगने पर राजा ने कौवे को धरती की थोड़ी मिट्टी दे दी। कुंवर ककरामल कौवे को लेकर पाताल लोक के ऊपर आ गया। कौवा उड़ता हुआ भगवान के पास पहुंचा। कौवे ने धरती की मिट्टी भगवान को दी। भगवान ने उस मिट्टी को एक बर्तन में डाला और मिट्टी को मथानी से मथने लगे। अच्छी तरह से उस मिट्टी को मथकर भगवान ने पूरे पानी में फैला दिया। वही मिट्टी पानी के ऊपर जमीन बन गई, जिसे धरती का नाम दिया गया। पहले धरती लचीली थी, बाद में धीरे धीरे कड़क होती गई। उसकी एक मोटी परत बन गई, जिसमें अनेक प्रकार के छोटे जीव जंतु, खनिज और जल समाते गए। धरती के ऊपर अनेक प्रकार की वनस्पतियां उगाईं। अंत में इस जमीन पर पशु पक्षियों के साथ मनुष्य नाम का प्राणी आया, जिसने अपने बुद्धि कौशल से इस जमीन को सुंदरतम बनाया। जमीन की इस कहानी में पृथ्वी को वसुंधरा, रत्नगर्भा और प्रकृति और प्राणियों के रहने लायक होने का अक्षय वरदान प्राप्त हुआ है। पृथ्वी, धरती और जमीन वाकई में प्राणियों की प्रार्थना है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना जमीन। इस विषय पर बसंत निर्गुणी का आलेख, वाचक स्वर था डॉक्टर अरविंद सोनी का। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:35 और 40 सेकंड हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में वास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है कृषि चर्चा। सामायिक चर्चा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे बैंगन की फसल में समन्वित कीट नियंत्रण, और जानकारी दे रहे हैं SS चौधरी।
1: किसान भाइयों, हमारे पास जो भी खेती के उपलब्ध साधन हैं, चाहे वो भूमि हो, जल हो, पौध संरक्षण दवाएं हो, उन्नत कृषि यंत्र हो, या पौध संरक्षण के उपाय, इन सभी का भरपूर खेती में उपयोग करते हुए हमारी कोशिश होती है कि खेती को अधिक से अधिक लाभ का व्यवसाय बनाया जाए। और आज ये बहुत जरूरी भी हो गया है, क्योंकि खेती में लागत बहुत ज्यादा आजकल आ रही है। किसान भाई सब्जी की भी खेती करते हैं, और उसमें भी बैगन, टमाटर, फूलगोभी, पात गोभी, इन दिनों ये महत्वपूर्ण सब्जियां हैं। और बैगन की खेती तो अब देखा जाए तो जैसे जैसे उन्नत तकनीक हमारे पास आई है तो 12 महीने अब बैगन उपलब्ध रहता है। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि जब फसल में किसी कीट का प्रकोप हो जाता है तो बाजार से लाके सीधे दवाई का प्रयोग कर देते हैं, छिड़काव कर देंगे या भुरकाव कर देते हैं। हमें बैगन की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन के उपाय अपनाना है, ताकि जो सब्जियां हैं उन पर इन घातक रसायनों का प्रभाव ये तो बिल्कुल ना रहे या फिर कम से कम हो। जैसे हम देखते हैं कि बैगन की फसल में मुख्य रूप से तना और फल बेदक कीट का प्रकोप होता है, एपिलेकना भृंग का भी प्रकोप होता है, इसी तरह हरा फुदका, चेपा, इन कीटों का भी प्रकोप हो सकता है। इसमें सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला जो प्रमुख कीट है वो है तना और फल छेदक कीट। इसका प्रकोप आमतौर पर पौध रोपाई के 1 सप्ताह बाद ही शुरू हो जाता है। मादा कीट अधिकतर एक एक करके बैगन की पत्तियों, मुलायम तनों, कलियों और कभी कभी फलों पर भी अंडे देती है। सूढ़ी तने के ऊपरी भाग में छेद कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे ये झूल कर सूखने लगते हैं। रोकथाम के लिए हमको ग्रसित तनों को ऊपर से प्रति सप्ताह सूढ़ी सहित तोड़ करके नष्ट करते रहना चाहिए। प्रति हेक्टेयर में 100 फेरोमोन फंदा लगाकर वयस्क नर कीटों को सामूहिक रूप से आकर्षित कर नष्ट करने से खेत में अंडों की संख्या में काफी कमी हो जाती है। नीमगिरी 4%, 40 ग्राम नीमगिरी का चूर्ण 1 लीटर पानी में, इस हिसाब से घोल बनाकर

0: 10 दिन के अंतर पर फसल में छिड़काव करने से कीट प्रकोप कम होता है। ग्रसित फलों को तोड़कर उनके अंदर की सूढ़ी को नष्ट करके और खेत से सूखी पत्तियां हटाकर स्वच्छ खेती करने से तना और फल विदक कीट का प्रकोप आमतौर पर कम होता है। एपिलेकना भृंग, ये कीट भी बैगन का एक प्रमुख कीट है। इसकी दो किस्में पाई जाती हैं, एक की पीठ पर 12 और दूसरे की पीठ पर 28 गहरे धब्बे पाए जाते हैं। बैगन के अलावा ये कीट आलू, टमाटर, कद्दू, इन फसलों पर भी इसका प्रकोप देखा गया है। वयस्क तथा भृंग दोनों ही हानिकारक अवस्थाएं हैं। ये एक पत्ती खाने वाला कीट है। पहली अवस्था में कीट के भृंग पत्तियों को खरोंचते हैं, जिससे पत्ती पर हल्की हरे रंग की रेखा बन जाती है। वयस्क कीट और इसकी सूढ़ियां पत्ती का हरा भाग खाती हैं। ऐसी अवस्था में केवल पत्ते पर नसों का जाल ही दिखाई देता है। शुरुआती अवस्था में भृंग को पत्तियों से हटाकर नष्ट कर देते हैं। इसके लिए एक दवाई है मेलाथियन 5%, ये पाउडर के रूप में दवाई है। इसकी 25 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करने से कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। ये हरा फुत का कीट, जिसे जेसिट के नाम से भी जाना जाता है, ये मूलतः कपास की फसल का कीट है। इसके अलावा सेम, आलू, इन फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। एक मादा 15 से 30 अंडे तक देती है। इसके वयस्क और शिशु दोनों बैगन की पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं, साथ साथ अपना जहरीला लार उसमें छोड़ते हैं। इनसे प्रभावित भाग पीला हो जाता है और पत्ती किनारे से अंदर की ओर मुड़ने लगती है। धीरे धीरे पूरी पत्ती पीले धब्बों से भर जाती है और सूख कर गिरने लगती है। इसके प्रकोप से पैदावार में काफी कमी हो जाती है। बैगन की पौध को रोपाई से पहले इसका उपचार कर लेना चाहिए। इन कीटों के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए नीमगिरी 4% का प्रयोग 10 दिन के अंतराल पर करने से फायदा होता है। किसी भी कीटनाशक दवाई का हम प्रयोग करें, इसके पहले ये जरूर देखना कि कीट आर्थिक हानि स्तर बिंदु से ऊपर है या नहीं, तभी दवा का प्रयोग करें। अच्छा होगा कि दवा प्रयोग के पहले हम कृषि विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। सामायिक चर्चा के अंतर्गत आज आपने सुना बैंगन की फसल में समन्वित कीट नियंत्रण और जानकारी दे रहे थे SS चौधरी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है सूचना और समाचार, सूचना पर कार्यक्रम दर्पण।
2: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। GST परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें,
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
6: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम दर्पण, या आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है, कुछ ही देर में संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र द्वारा अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह तथा केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहना लोक कल्याण मार्गस्थते प्रदर्शनस्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनं कृतवन्तौ। तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्यैः पुनः पुनः कृतैः व्यवधानैः लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं समेत्य विविध विषयेषु ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सद्य एव जाते नीट परीक्षायाः प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान् विरुध्य दृढ़ निग्रहं कर्तुं अथ राष्ट्रस्य यूनां हितस्य संरक्षणं च पुनः उद्घाटितवान्। असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशानां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति। प्रधानमंत्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः मंगल मिलन इति नामना अपि प्रख्याते संसदीय दलीयोपवेशने उक्तवान्। वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् उपवेशने प्रधानमंत्री देशव्यापिनां भावि परीक्षाणां प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन निवारणाय सर्वेषां संबंधित पक्षाणां समन्वित प्रयत्नानां आवश्यकतां विशेषतया प्रतिपादितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा भारत उत्तर मैसेडोनिया देशयोः आर्थिक सम्बन्धान् विस्तारयितुम् उक्तवती। उभयदेशीय उद्योगिनः व्यापारात् परं निवेश प्राविधिकी नवोन्मेषाधारित दीर्घकालिक सहकार्यं प्रवर्धयितुम् आग्रहम् अकरोत्। स्कोप्जे इत्यत्र भारत उत्तर मैसेडोनिया व्यापार मंचं संबोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मैसेडोनिया देशस्य एषा प्रथमा यात्रा अस्ति या उभयदेशयो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने डिजिटल नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, औषधि और स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि अमरीका हर उस स्थल पर जोरदार हमले करता रहेगा जहां ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करने का प्रयास करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनन के राष्ट्रपति जोसेफ फाउन की उपस्थिति में श्री ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान तनाव

जारी रखने के बावजूद बातचीत की कोशिश में है। ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऐसा होने पर अमरीका

0: बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंदर सबसे पहले जानकारी हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों के बारे में। तो आपसे कुछ ही देर में यानी कि 7:20 पर आप सुनेंगे कहानी नानी बहुत अच्छी है और कहानीकार होंगी प्रतिभा त्रिवेदी। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे 7:30 पर। दोपहर 10:05 पर, सुबह 10:05 पर, दोपहर 12 बजे और इसके अतिरिक्त दोपहर 2 बजे 2:30 पर भी। 8:30 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे राजेंद्र सिंह सिकरवार के द्वारा भजन। सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर आप सुन सकेंगे सुबह 9 बजे। 9:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज आप सुन सकेंगे योगिनी तांबे के द्वारा ध्रुपद धमार राग भैरव। पखावस पर संगत देंगे जयवंत गायकवाड़। श्रोताओं, इसी के साथ आपको बता दें कि दोपहर 11 बजे आप सुन सकेंगे फ़ोन करें गीत सुने कार्यक्रम, जो कि हमारी मध्य प्रदेश केंद्र की प्रस्तुति होगा। दोपहर 1 बजे आप सुन सकेंगे महिला कार्यक्रम, जो कि हमारे ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। 1:30 पर होगा लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। यह तीनों ही कार्यक्रम आप सुन सकेंगे हमारे मध्य प्रदेश केंद्र द्वारा, जो कि ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों के बारे में। तो आइए अब जानकारी ले लेते हैं हमारी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, शाम 5 बजे 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम होगा युववाणी, जिसके अंतर्गत आज चर्चा के विषय होंगे राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और संवाद कौशल। 5:33 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत, इसके अतिरिक्त फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे 6:30 पर, रात्रि 8:35 पर और रात्रि 9:15 पर। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे शाम 6 बजे। 7:20 पर होगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल, जिसके अंतर्गत आज चर्चा के विषय होंगे विश्व मस्तिष्क दिवस और दूषित जल और भोजन सेहत के लिए नुकसानदेह। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप एक भेंट वार्ता भी सुन सकेंगे, जिसका विषय होगा सीताफल उत्पादन कैसे करें, और आप इस जानकारी को सुन सकेंगे डॉक्टर प्रवीण सिंह गुर्जर से सोहन सिंह की बातचीत के अंतर्गत। श्रोताओं, शाम 8:30 पर आप सुन सकेंगे विधानसभा समीक्षा, 8:35 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। रात्रि 10 बजे होगा संसद के मानसून सत्र 2026 के अंतर्गत संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही का सीधा प्रसारण। 10:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी प्रथम और द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में। पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी आज के कार्यक्रम 8:30 पर, जिसे आप सुनेंगे सुगम संगीत के अंतर्गत राजेंद्र सिंह कुशवाहा के द्वारा, राजेंद्र सिंह सिकरवार के द्वारा, और साथ ही 9:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत योगिनी तांबे के द्वारा ध्रुमत धमार राग भैरव। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने को है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र द्वारा आप सुन सकेंगे।
1: भोपाल केंद्र है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच आर्थिक संबंधों को विस्तार देने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आ रहे बेहतर परिणाम, खोले गए करोड़ों बैंक खाते। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, डॉ. हेडगेवार ने राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया। और लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय, कई जिलों में हो रही बारिश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच आर्थिक संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के कारोबारियों से केवल व्यापार तक सीमित न रहकर निवेश, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में लंबे समय की साझेदारी बनाने का आह्वान किया। स्कोपे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनकी यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जो दोनों देशों के मजबूत संबंधों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने कहा,
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: हर परिवार तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 से प्रारंभ की गई जनधन योजना के बेहतर परिणाम आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में 3,08,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है। कल राज्यसभा में लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इनमें 32,68,00,000 खाते महिलाओं के हैं, जबकि 45,62,00,000 अधिक खाते ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। श्री चौधरी ने यह भी बताया कि इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 27,84,00,000 से अधिक लोगों का नामांकन हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58,78,00,000 से अधिक और अटल पेंशन योजना में पिछले महीने तक 9,29,00,000 से अधिक लोगों का नामांकन किया जा चुका है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री ने कहा,
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने कहा है कि प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री यादव लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य अभियंताओं के साथ दलों द्वारा भोपाल, जबलपुर, गुना, इंदौर, सीधी, उज्जैन और छतरपुर जिलों के 35 निर्माण कार्यों के औचक निरीक्षण की कल समीक्षा कर रहे थे। भरत यादव ने सड़क निर्माण में असंतोषजनक गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और निर्माण एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश दिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना के तहत मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने कल अधिकारियों को आईपीएस की रैंक लगाई। रैंक पाने वाले अधिकारियों में निमिषा पांडे, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा पाठक सोनी, सुमन गुर्जर, सभ्यसाची सराफ और समर वर्मा शामिल हैं। डीजीपी मकवाणा ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उपलब्धि उनके समर्पित सेवा भाव का प्रतिफल है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्वतंत्रता पूर्व के चुनौतीपूर्ण दौर में डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्र सर्वोपरि और प्रखर राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया और लाखों लोगों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रात भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर संस्कार भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन दर्शन पर विचार साझा करते हुए कहा,
4: इस बात को आज वास्तव में ये अलग प्रकार से महसूस हो रहा है। डॉक्टर हेडगेवार जी का मंचन और डॉक्टर हेडगेवार जी का मूल दर्शन जो था समानता का दर्शन, और उस समानता के दर्शन के लिए एक समान कानून का पास होने का आज सौभाग्य मध्यप्रदेश की धरती पर, ये कितना अद्भुत संयोग।
0: केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मानसून से पहले और मानसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं सहेजे। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों को और बावड़ियों के जीर्णोद्धार तथा रिचार्ज पिट और चेक डैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी विषय पर आज सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी भोपाल के खास कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में को सुनना ना भूलें। इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और जल संरक्षणवादी उमा शंकर पांडे रहेंगे। 2-3 सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कल भोपाल, ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर सहित 30 से अधिक जिलों में झमाझम बारिश हुई। माओगंज, उदयपुरा, बीरसिंहपुर सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज गुना, श्योपुरकुला, सतना, सिवनी, बालाघाट, पन्ना, मैहर, राजगढ़, बैतूल और कटनी समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। आगामी 2-3 दिनों तक प्रदेश भर में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे फसलों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी प्रदेश में सामान्य से करीब 17% तक बारिश कम होने की खबर है। खंडवा संवाददाता के अनुसार जिले में कल तक 295.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं सतना से मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में 317.2 मिलीमीटर और मैहर में 240.2 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है। गुना जिले में 309.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं और कई महत्वपूर्ण शासकीय विधेयकों पर चर्चा होगी। खंडवा जिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर डॉ. पूर्वा मित्तल आज जिले के भ्रमण पर रहेंगे। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने पोषण समिति की बैठक में पात्र हितग्राहियों के आधार नामांकन और अपडेशन के लिए स्कूल और सेक्टर स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। सतना पुलिस विभाग के नशा मुक्ति अभियान के तहत पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में चित्रकला, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया। मंदसौर जिले में डायरिया रोको अभियान के तहत पीएचई विभाग ने पेयजल स्रोतों का क्लोरिनेशन किया और ग्रामीणों को जल जनित बीमारियों से बचाव के उपाय बताए। मैहर में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने 17 अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा और 40 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इंदौर में महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। गुना कलेक्ट्रेट में कल आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने 295 आवेदनों पर सुनवाई की। इस दौरान कई मामलों का त्वरित निराकरण भी किया गया। शिवपुरी जिले में करगिल विजय दिवस और सेवा सुशासन के 12 वर्ष पर पीएम कॉलेज में 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी आज से शुरू हो रही है। भोपाल नगर निगम के अमले ने सड़कों पर घूमने वाले 7 मवेशियों को कांजी हाउस और 4 घायल पशुओं को आसरा चिकित्सालय भेजा है। नीमच में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गठित विशेष सेल की बैठक कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20:40 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है कहानी नानी बहुत अच्छी है। कहानीकार है प्रतिभा तुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं इनके द्वारा ये कहानी।
2: यह चिट्ठी बिना किसी संबोधन के, मम्मी पापा आप दोनों को मैं दो प्रति में लिख रही हूँ। कल मेरी बर्थडे है और अब मैं 16 साल की हो जाऊंगी। आप लोग को शायद याद भी नहीं होगा कि आपकी पीहू का जन्मदिन कब आता है या वो अब कितनी बड़ी हो गई होगी। शायद आप लोगों की अपनी नई दुनिया में मेरे लिए कोई कोना ही नहीं बचा होगा अब तक। फिर भला मेरी याद क्यों कर आएगी। पापा से अलग होने के बाद मम्मी आप मुझे हॉस्टल में डाल गई थीं, क्योंकि आपको कंपनी के द्वारा कनाडा का ऑफर जो मिल रहा था। भला इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप कैसे ठुकरा देती। पापा से तलाक हो ही चुका था और मुझे भी हॉस्टल भेजकर आप भी अपने मातृत्व कर्तव्य से मुक्त हो गई थी। मेरे कितने उजले अच्छे गोरे चिट्टे दिन थे वो, जब आप दोनों के साथ मैं बिताया करती थी। भले ही मुझे दिन भर कुंती दीदी यानी आया के साथ रहना पड़ता था, लेकिन शाम होते ही पहले पापा ऑफिस से लौट कर आते। मैं पापा के आते ही सबसे पहले दौड़कर गले से लग जाया करती, फिर तत्काल अपने चॉकलेट पापा से छीनकर खाने लगती। मेरे पापा तब मेरे सुपरमैन पापा हुआ करते थे। मम्मी 8 बजने तक घर पहुँच पाती थी। बेंगलोर में शाम होते ही ट्रैफिक जाम की भयावह समस्याओं से उन्हें गुजरना पड़ता और आपका ऑफिस भी हमारे घर से बहुत दूर तो था, इसीलिए मम्मी आप जब भी आती उसके पहले ही पापा मुझे समझाया करते, देखो पीहू बेटा जब मम्मी ऑफिस से घर आए तो ज़्यादा परेशान मत करना, वो बहुत थक जाती हैं। मेरे पास कीमती खिलौनों की कभी कमी नहीं रही, क्योंकि आप दोनों वीकेंड पर सिर्फ मेरे लिए ही पूरा समय गुजारा करते। महंगे होटल में कभी लंच तो कभी डिनर, कभी मॉल की महंगी शॉपिंग, तो कभी अपनी लग्जरी गाड़ी में लंबी लंबी सैर पर निकल जाया करते। मेरे पास उन दिनों की मीठी यादें अब भी ताज़ा हैं। मेरे स्कूल के फंक्शंस या मीटिंग्स की जब बारी आती आप दोनों यही प्रयास करते पीहू के स्कूल जरूर जाना है। पापा मम्मी कितना अच्छा होता यदि हम लोगों की इंजीनियरिंग कॉलेज की गेट टुगेदर एलुमनी मीट में हम ना गए होते। आप लोग मुझे भी साथ लेकर गए थे। मेरे सामने ही पापा की पुरानी फ्रेंड रीना आंटी से पता नहीं किस बात पर मम्मी आप उलझ गई थी। पापा का चीख चीख कर कहना अभी भी मुझे याद है, हाँ हाँ हाँ रीना मेरी कॉलेज की ही नहीं स्कूल की भी बेस्ट फ्रेंड है, इसमें दो राय नहीं है। उसी रात स्टेज परफॉर्मेंस में मम्मी आपने डांस किया था, लेकिन पापा के साथ नहीं, आपने अकेले ही डांस किया। आप दोनों को डांसिंग फ्लोर पर मैंने हमेशा साथ साथ देखा था, चाहे शादी की बारात हो या बर्थडे पार्टी आप दोनों मिलकर ही तो डांस करते थे और सभी लोग आप दोनों के डांस की बड़ी तारीफें करते। उस दिन स्टेज से उतरते ही मम्मी को भीड़ ने घेर लिया था और तेज बजते बैंड के साथ सभी झूमने लगे थे। मम्मी आप भी उस दिन वो वाली मम्मी जाने क्यों नहीं लग रही थी, आप नाच रही थी, बेतहाशा नाचती जा रही थी। पता नहीं वो गुस्सा पापा के लिए था या पापा से बदला, क्योंकि उसी बीच पापा ने मेरा हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए पार्टी से मुझे बाहर लेकर

खुले में आ गए थे। तब मेरी उम्र 10 वर्ष की थी, लेकिन इतनी तो बड़ी हो ही चुकी थी कि गुस्सा क्या है और प्यार क्या है यह तो समझ में आने लगा था मेरे। तब तक रीना आंटी, जिन्हें पापा ने दोपहर में बेस्ट फ्रेंड कहा था, वो भी पार्टी छोड़कर पापा के पास आ गईं। वो भी मम्मी के बदले हुए व्यवहार से काफ़ी दुखी थीं, फिर भी मुझसे पूछा था, चलो बेटा उधर आइसक्रीम काउंटर पर चलते हैं। क्यों, आइसक्रीम खाओगी ना? नहीं आंटी, मुझे नहीं खाना, मम्मी के पास जाना है, मैंने मायूसी से कहा था। नहीं बेटा नहीं, अभी मम्मी नहीं आ पाएगी, उनके फ्रेंड्स उनके साथ हैं। चलो चलो डिनर लेंगे हम लोग, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, रीना आंटी ने फिर कहा था। उस दिन पहली बार मैंने खाना नहीं सब्र खाया था, क्योंकि शायद मेरे अच्छे रुपहले दिनों का कोटा जो खत्म हो रहा था। अगले दिन हम बकना घाट शिमला से लौट रहे थे, दिल्ली से हमारी बेंगलोर की फ्लाइट थी, इसीलिए टैक्सी से हम लौट रहे थे। मोबाइल पर आप दोनों ही कॉलेज फंक्शंस की फ़ोटोज़ देख रहे थे, तभी किसी फ़ोटो पर पापा आप बिगड़ गए थे। मम्मी को टैक्सी ड्राइवर की परवाह किए बिना अनाप शनाप बोलने लगे, मम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे। टैक्सी तेज भाग रही थी और मम्मी पापा आप दोनों के उतने ही तेज उग्र विवाद बढ़ते जा रहे थे। आप लोग शायद यह भूल गए थे कि आपकी प्यारी पीहू, आपके कलेजे का टुकड़ा पीहू आपके साथ यात्रा कर रही है। चंडीगढ़ करीब आ रहा था, एकाएक पापा आपने टैक्सी वाले को गाड़ी रोकने को कहा था, उसने घबरा कर टैक्सी रोक दी। आप मम्मी से कह रहे थे, उतरो टैक्सी से, उतरो अभी उतरो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। हाँ रीना मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, मुझसे गलती हुई, मैंने तुमसे शादी की, मुझे रीना से ही शादी करनी थी, उसने अब तक शादी नहीं की, जानती हो क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन उसने कभी जिक्र नहीं किया, और तुम, अब तुम जो जी चाहे करो, मैंने आज़ाद किया, जब जहाँ बोलोगे तलाक के पेपर पर साइन करने आ जाऊँगा। उतरो टैक्सी से, अभी उतरो, जल्दी उतरो, यदि तुम नहीं उतर रही हो तो मैं ही उतर जाता हूँ। मम्मी का गुस्सा हिरण हो चुका था, लेकिन आत्मसम्मान तो था ही, बस पल भर में ही मेरी बाह उन्होंने पकड़ी और अपनी अटैची के साथ टैक्सी से उतर पड़ी। वो जाड़ों का मौसम था, हम हाईवे पर खड़े थे जहाँ तेज़ी से गाड़ियाँ आ जा रही थीं, ठंडी हवा से हम दोनों के दांत किटकिटा रहे थे। आपकी आंखों से बहते आंसुओं की गर्मी शायद आपको लग रही होगी, इसलिए शायद ठंड का एहसास आपको नहीं था, लेकिन आपकी पीहू तो ठंड से बर्फ़ हुई जा रही थी। मम्मी आपने अपने मोबाइल से कंपनी को फ़ोन लगाया था और घंटे भर में ही कंपनी ने चंडीगढ़ ब्रांच से गाड़ी दिल्ली एयरपोर्ट के लिए भिजवा दी थी। उस दिन पहली बार आपको मैंने बेहद चुप बेहद शांत देखा था। हमारी वापसी एक साथ एक ही फ्लाइट से थी, इसलिए एयरपोर्ट पर पापा का नाम पैसेंजर कमिंग के लिए बार बार अनाउंसमेंट होता रहा, लेकिन पापा आप तो हमारा साथ छोड़कर हमें पहले ही बाय कर चुके थे। हम बेंगलोर पहुँचे, मम्मी ने नाना नानी से बात कर ली थी, वो लोग बार बार हमें समझा रहे थे कि तुम्हारा ऐसा करना ठीक नहीं है, बचपना छोड़ो। नाना ने आपको पापा बार बार फ़ोन लगाया, लेकिन आप मम्मी से गुस्से की सजा नाना को भी दे रहे थे। उसके बाद सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ, हमारी समझ में आया ही नहीं कि काले कोट वाले वकीलों की जिरह से कोर्ट के एक फैसले से आप दोनों के रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। पापा आप मेरे लिए उस दिन ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे, लेकिन मैं रोते हुए इतना ही कह पाई थी, मुझे पापा भी चाहिए और मम्मी भी चाहिए। लेकिन नानी ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। अगले महीने ही मम्मी आपको कंपनी की ओर से कनाडा का ऑफर मिला, जिसे आपने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मुझे महंगे बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलाकर आपने भी राहत की सांस ली होगी। यहाँ आकर तकिए में मुँह छिपाकर मैं देर तक रोती रहती थी। मुझे मेरा घर, मेरा शहर, मेरे वीकेंड, मेरे बर्थडे के सेलिब्रेशन सब याद आते थे। मेरा सब कुछ छिन गया था, मेरी कुंती दीदी भी अब मुझसे बहुत दूर चली गई थी। आप लोगों से बिछड़ने के बाद मैं ज़िद्दी और लड़ाकू होने लगी थी। एक दिन किसी बात पर मैंने क्लास में अपनी क्लासमेट की कलाई में दांत गड़ा दिए। मुझे अपने रूममेट के रुपए चुराने में पता नहीं क्यों मज़ा आने लगा, लेकिन CCTV की फुटेज पर मेरे कारनामे पकड़े गए। मम्मी आपने नाना नानी को लोकल गार्जियन मेरा बनाया था, बस मेरी कंप्लेन उन लोगों तक पहुंची, वो दोनों बूढ़े लोग भागे भागे आए। मैंने भी रो रो कर नानी से ही कहा था, नानी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता।
मुझे अपने घर अपने बेंगलोर जाना है, मुझे कुंती दीदी के पास जाना है। नानी मुझे ले चलो नानी।

0: उसके बाद हमारा बेंगलोर का जो घर था उसमें नाना नानी के साथ मैं रहने जा पहुंची। आपसे बात हुई थी, आपने फ़ोन करके कुंती दीदी को भी मेरे पास भिजवा दिया। नाना नानी ही अब मेरी दुनिया थे, उनके लड्डू गोपाल की पूजा ही अब मेरी खेल खिलौने थे। अब मैं बदल रही थी, नानी मुझ पर पूरा ध्यान देती, अब मैं पढ़ने में लीन रहती, किताबों में डूबी रहती। यदि नाना नानी ने समय रहते मुझे वहाँ से ना निकाला होता तो मैं शायद पीहू शर्मा ऐसी चिट्ठी लिख भी ना पाती। हाँ पापा मम्मी, केवल आप दोनों ही नहीं बल्कि दुनिया के वो तमाम मम्मी पापा जो बिना बच्चों की परवाह किए तलाक ले लेते हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर यही विनती है कि जीवन केवल उनका नहीं होता, उस जीवन में उनके बच्चों का भी हक होता है। आप लोग भले ही तलाक लेकर स्वयं पति पत्नी के संबंध से मुक्त हो गए हों, लेकिन आपकी मर्जियों की सजा वो बच्चे पा जाते हैं और ताउम्र एक खालीपन उन्हें घेर लेता है। सही मायने में वो बाजार के उन चाबी वाले गुड्डे गुड़ियों की तरह हो जाते हैं जहाँ स्वयं उनकी मनमर्जी नहीं होती, वे हालातों के शिकार हो जाते हैं। हर किसी की किस्मत में नाना नानी नहीं होते। ये खुला पत्र यही समाप्त करती हूँ क्योंकि नानी के साथ मुझे मंदिर जाना है। अब कोई सबसे प्यारा है तो वो और कोई नहीं, मेरी नानी है। हाँ मेरी नानी बहुत अच्छी नानी है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रतिभा त्रिवेदी के द्वारा एक कहानी जिसका शीर्षक था नानी बहुत अच्छी है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं, तो लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म दोस्ती से। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आनंद लीजिए फिल्म दोस्ती के इस गीत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं आपको प्यारे प्यारे गीत। तो आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज़ में फिल्म दुल्हा दुल्हन से लिया हुआ ये गीत। गीत को लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। तो आप भी आनंद लीजिए मुकेश की आवाज़ में इस प्यारे से गीत का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, लेकिन कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से विराम का और हाजिर होते हैं इस विराम के बाद।
1: भाई, एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
2: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
1: मतलब
2: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
3: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: और प्रोग्राम के बाद स्वागत करते हैं श्रोताओं आपका फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। तो लीजिए कार्यक्रम में ये अगला गीत मुकेश और शारदा की आवाज़ों में। गीत को हमने लिया है फिल्म दुनिया से, गीत को लिखा है SH बिहारी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। तो आनंद लीजिए फिल्म दुनिया के इस गीत का।

0: किंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: अल्पविराम के बाद स्वागत है श्रोताओं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म सफ़र का ये गीत। गीतकार हैं इंदिवर और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। तो आनंद लीजिए फिल्म सफ़र के इस गीत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अभी आपने सुना जो गीत, तो आइए कार्यक्रम में आप सुनवाते हैं अगला गीत दुनियादारी फिल्म से, जिसमें आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। गीत को लिखा है एनजी हसमत ने और संगीत दिया है एक बार फिर शंकर जयकिशन ने। तो आनंद लीजिए फिल्म दुनियादारी के इस गीत का।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही देर में समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र द्वारा होंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: कर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।

0: जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
2: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
4: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
5: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मालवण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBU 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर

0: बंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीयों को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 3री बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए हमने आईटी कृषि फूड प्रोसेसिंग फार्मास्यूटिकल्स टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं
2: Our correspondent covering the president's visit to North Macedonia has filed this report.
4: President Murmu said India's pharmaceutical industry is well placed to invest in North Macedonia through joint manufacturing of medicines and medical devices for the wider Balkan and European markets. She also encouraged partnerships in food processing, cold chain logistics, renewable energy, artificial intelligence, cyber security, and startup ecosystems. The president invited North Macedonia to join initiatives such as International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and the Global Biofuels Alliance. She also extended an invitation to participate in the World Audiovisual Entertainment Summit WEBS to be held in India next year. This is Subhasri Mahapatra from Skopje, North Macedonia.
2: Concluding her address, President Murmu urged businesses, investment agencies and industry bodies of both countries to build enduring partnerships through technology transfer, joint ventures and local value creation. India will host a three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness, and equitable access to quality health care. A report.
5: The 16th BRICS Health Ministers meeting reflects India's commitment to advancing collective action on key global health priorities through the guiding theme of building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Addressing a press conference, Union Health Secretary Punya Salila Srivastava said that discussions during the ministerial meeting will focus on strengthening cooperation in areas such as health security, pandemic preparedness, digital health, innovation, access to affordable medicines, traditional complementary and integrative medicine, tuberculosis, health lifestyles, mental wellness and resilient health systems. The official program will commence with the senior officials meeting today, followed by the 16th BRICS Health Ministers meeting tomorrow, chaired by Union Health and Family Welfare Minister JP Nadda, during which health ministers will deliberate on key global and regional public health priorities and consider the adoption of the 16th BRICS Health Ministers Declaration. The meeting will provide an important platform for advancing the health priorities of the Global South and promoting collective action towards achieving universal health coverage and the health-related sustainable development goals. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
2: Indian Navy will commission INS Malvan, the second of the Mahe-class anti-submarine warfare shallow water craft at Karwar in Karnataka today, marking another milestone in India's indigenous naval shipbuilding program. The commissioning ceremony will be presided over by Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, in the presence of Vice Admiral Sanjay Vatsyayan, Flag Officer Commanding-in-Chief Western Naval Command, senior naval officers, veterans and other distinguished guests will also attend the event. More from our correspondent.
6: INS Malwan anti-submarine watercraft built by Cochin Shipyard under Atmanirbhar Bharat mission uses more than 80% indigenous equipment and technology. Armed with RBU 6000 rockets and DRDO torpedoes and a German-Indian sonar suit, it can play a dominant role in guarding our undersea defense. This Mahe-class warship is testament to country's growing capability in warship construction and our growing strength in maritime security and anti-submarine warfare capabilities. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। और सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र सिंह सिकरवार के द्वारा गाए हुए कुछ भजन। कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएं अगला भजन, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम और फिर

0: हाजिर होते हैं कार्यक्रम का अगला भजन लेकर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: अल्पविराम के बाद एक बार फिर से हाजिर है कार्यक्रम सुगम संगीत में। तो लीजिए अब सुनिए एक बार फिर से राजन सिंह सिकरवार के द्वारा कार्यक्रम का ये अगला भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं राजन सिंह से करवार के द्वारा गाए हुए भजन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र सिंह सिकरवार के द्वारा गाए हुए कुछ भजन। तो आइए कार्यक्रम में अब इनसे सुनते हैं ये हरि भजन।

श्रोताओं अब सुनिए कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह सिकरवार के द्वारा गाया हुआ कार्यक्रम का ये अंतिम भजन।

श्रोताओं, इसी अंतिम भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे राजेंद्र सिंह सिकरवार के द्वारा गाए हुए कुछ भजन। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8:58 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच आर्थिक संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के कारोबारियों से केवल व्यापार तक सीमित न रहकर निवेश, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में लंबे समय की साझेदारी बनाने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश के 16वीं विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं और कई महत्वपूर्ण शासकीय विधेयकों पर चर्चा होगी। भोपाल नगर निगम के अमले ने सड़कों पर घूमने वाले 7 मवेशियों को कांची हाउस और 4 घायल पशुओं को आसरा चिकित्सालय भेजा है। स्वतंत्रता पूर्ण के चुनौतीपूर्ण दौर में डॉ. हेडगेवार ने राष्ट्र सर्वोपरि और प्रखर राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया और लाखों लोगों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल रात भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर संस्कार भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने कहा है कि प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मौसम विभाग ने आज गुना, श्योपुरकला, सतना, सिवनी, बालाघाट, पन्ना, मैहर, राजगढ़, बैतूल और कटनी समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आप
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।
3: गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं कैसे हैं आप? बिल्कुल हमारी ही तरह खुश होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे हमारे कार्यक्रम का, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ और साथ ही करते हैं आपसे गीत और संगीत के साथ आपका मनोरंजन भी।

0: तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बदलते गरजते कुछ मौसम के बदलते और गरजते हुए मिजाज के साथ, यानी कि हम बात कर रहे हैं तापमान की। तो अगर हम तापमान की बात कर रहे हैं तो बताना चाहेंगे कि अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और रात में है तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि न्यूनतम दर्ज किया गया है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ सा है, यानी कि अभी बीच में कुछ समय के लिए बारिश का कुछ थमना हमारे लिए थोड़ा गर्मी का सबब बन गया था, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चल रही है। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि गर्मी का मौसम जैसे जैसे बदलता जा रहा है ना, वैसे ही वैसे जो है बारिश का मौसम लगातार अपनी दस्तक दे रहा है। और बिल्कुल केवल हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि कई शहरों में कल जो है बारिश के मौसम ने दस्तक दी। और सबसे ज़्यादा जो बारिश है वह हुई भिंड में 254 मिलीमीटर तक वर्षा को दर्ज किया गया है। और साथ ही ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना, रायसेन, राजगढ़, इन सभी में भी बारिश के काफ़ी अच्छे नतीजे सामने आए। और ऐसा लग रहा है कि जो मौसम ऐसे लग रहा था कि जैसे कि मौसम बदल ही नहीं रहा है, बारिश हो ही नहीं रही है, लेकिन अब बारिश हो गई है और धीरे धीरे ये मानसून सभी शहरों में एक साथ आने वाला है। जिस तरह से मौसम बदलता है वैसे कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ना केवल आसमान में, ना केवल हमारे आसपास, बल्कि बारिश की वजह से कुछ स्वास्थ्य को लेकर भी हमें सचेत होना चाहिए। क्योंकि बदलते मौसम में अक्सर हम देखते हैं कि हमारा सभी शरीर जो है वह तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आसपास उड़ने वाले कई सारी हवा में मिलने वाली कई सारे बदलाव जो है हमारे शरीर को कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनाते हैं। इसलिए बदलते हुए मौसम के साथ और बदलते हुए मौसम के मिजाज के हिसाब से हमें भी अपने शरीर का मिजाज कुछ बदलते रहना चाहिए। लेकिन हम अपने मौसम को बदलें और मिजाज को भी बदलें उससे पहले लेते एक छोटा सा विराम और हाजिर होते हैं आपके लिए मौसम के मिजाज के बारे में और भी चर्चा लेकर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: तो दोस्तों अल्पविराम के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, जिसमें हम करते हैं आपसे ढेर सारी बातें और आपको जानकारियां भी देते हैं। तो जैसे कि हम इस अल्पविराम से पहले बात कर रहे थे मौसम के बदलते हुए मिजाज की, और साथ ही बात कर रहे थे कि हमारे स्वास्थ्य में हम कैसे सुधार लाएं। अगर मौसम बदल रहा है तो स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी होती है, तो उसमें स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है बारिश के समय में। बारिश की जो झमाझम बूंदें होती हैं वो अक्सर करके देखने में जितना सुकून देती है ना, उतने ही हमारे शरीर के तापमान को उसके हिसाब से नियंत्रित करने में थोड़ा टाइम लगता है हमें। जैसे कि कहा जाता है कि जैसे वैज्ञानिक जो है इस बदलते हुए मौसम में, अक्सर करके बारिश के मौसम में जो परेशानियाँ होती हैं उसे कहते हैं पिंक नॉइज़। हमारे दिमाग में को ये आराम पहुंचाती है, बारिश की बूंदें बहुत सुकून देती हैं, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन इस सुहाने मौसम में एक दूसरा पहलू यह भी होता है कि मौसम में ऑक्सीजन की कमी होने से लोगों में को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अक्सर करके बारिश में बाहर जाते हैं, पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे ये चीज़ें हमें परेशान करती हैं, कैसे हमारे तापमान को नियंत्रित नहीं होने देती हैं, कैसे हमें आसपास की चीज़ों से हमें बचाव करना है। इसका मुख्य कारण यह है कि जैसे तेज़ बारिश में बूंदें ज़मीन और पौधों पर गिरती हैं तो पराग कणों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वह सब जगह फैल जाते हैं, जो कि बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, जो कि हवा में भी आसानी से उड़ जाते हैं और हम ना भी चाहें तो भी हमारे अक्सर करके हमारे सांस के साथ हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे सांस को इस तरह की चीज़ों से एलर्जी होती है, यानी कि रुकावट पैदा होती है। बारिश में वायुमंडलीय जो दबाव होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे हवा में ऑक्सीजन सोखने की क्षमता घट जाती है और शरीर और दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचने या पहुंचाने के लिए फेफड़ों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सांसों का तेज़ तेज करना ही तभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी सांस और हमारे सीने में बहुत ज़्यादा हम लोग तेज़ी से सांस खींच रहे हैं। मानसून में हवा भारी हो जाती है और नम हो जाती है, इस कारण यह भारी हवा जो है सांस लेने में हमें मुश्किल होती है। इस मौसम में जो आम समस्याएं होने लगती हैं मौसम के बदलाव के कारण, वो ये होती हैं ब्रेन फॉग, यह एक

होती है, लगातार उन्हें खांसी होने होती रहती है। इसके अलावा उन्हें सर्दी जुखाम ये चीज़ें आम समस्या के रूप में बनी रहती है, और लगातार इस समय में जो है बाहर की हवा और इस तरह की बारिश जो है, नमी जैसी बारिश जो है, वो परेशानी का सबब बनती है। कई तरह की एलर्जीज़ भी हो सकती हैं, जैसे लगातार छींक आना, नाक बहना, आँखों में खुजली होना, या किसी की बॉडी पर बारिश की बूंदों से एलर्जी फील होना, यानी कि लगातार खुजली होना। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए जो इन समस्याओं से गुजर रहे हैं, वो तो एक तरीके से अपनी इस तरह से कि बचकर भी थोड़ी मदद कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को थोड़ा दूर रख सकते हैं बारिश से। लेकिन जिनको एलर्जी नहीं है, उनको भी बचाव उतना ही ज़रूरी है। यदि आप बारिश में भीग जाते हैं, या फिर अनावश्यक रूप से बाहर निकलते हैं, या फिर किसी काम से बाहर निकले हैं और आप गलती से भी भीग गए हैं, तो तुरंत अपने कपड़े बदलें, तुरंत अपने शरीर को सुखाएं। और आमतौर पर बारिश का पानी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसलिए एक बार सादा पानी से, घर पर आकर सादा पानी से एक बार हाथ पैर अच्छे से नहाएं, और तब अपने शरीर को सुखाकर और दूसरे कपड़े पहने। थोड़े से शारीरिक व्यायाम और सीढ़ियाँ चढ़ने पर भी तेज़ी से सांस फूलना भी सांस उखड़ने जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। इसलिए अक्सर करके बचें, जब बारिश हो रही है तो घर के ज़्यादातर अंदर ही रहें, बारिश के समय पर बाहर ना निकलें। तो ऐसे में आप घर में बैठे बैठे भी बारिश का आनंद ले सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि इसी तरह से आप सुरक्षित भी रहें, इसी तरह से बारिश का आनंद भी लें। और बदलते मौसम तो हमेशा आते रहेंगे, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम है, और बिना बारिश के एक प्यारे से गीत के कैसे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं? तो आइए एक बारिश के गीत का आनंद हो जाए, उसके बाद फिर से चर्चा करेंगे हमारे बदलते कैसे मौसम के बारे में।

बिल्कुल दोस्तों, आपसे मिलने के बाद ही तो हमें पता चलता है कि ये मौसम कितना प्यारा है, ये कार्यक्रम कितना प्यारा है, और इसीलिए थोड़ी हम आपका इंतज़ार करते हैं कि कार्यक्रम की कि इतनी अच्छी चीज़ें सुनानी है, बल्कि इसलिए ज़्यादा इंतज़ार करते हैं कि आपको ढेर सारे प्यार भरे गीत सुनाने हैं, प्यार भरी बातें करनी है और ढेर सारी जानकारियाँ भी तो देनी है, और हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही आप हमसे मिलें। तो आइए कार्यक्रम में, जैसे कि हम बात कर रहे थे बारिश के बारे में, बरसात के बारे में, और उसको एंजॉय करने के बारे में, और थोड़े शरीर को भी स्वस्थ रखने के बारे में। तो लेकिन अब जितना एंजॉय कर लिया है, जितना सब कुछ प्यार से सारी बातें हो रही हैं, तो इसमें थोड़ा सा स्मार्टनेस डालते हैं, यानी कि थोड़ी सी हम लोग पर्यावरण के प्रति भी सचेत होते हैं। जैसे बारिश होती है तो आपने देखा होगा हर जगह हरियाली होती है, हर जगह खुशी होती है। आप देखते हैं कि कई बार बारिश इतनी ज़्यादा होती है लेकिन उसके पानी का हम कोई प्रयोग नहीं करते हैं। कई बार ऐसा करते हैं हम कि बारिश में, जिस तरह से हमें बारिश के भरे हुए पानी में छप छप करके चलना अच्छा लगता है, तो क्यों ना हम इस बारिश के पानी को बेकार होने से या फिर ऐसे ही वेस्ट होने से बचा सकें, कुछ ऐसा क्यों ना करें। तो आइए इसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं, जो कि ना केवल चर्चा है बल्कि एक पहल होनी चाहिए हमारी तरफ से। सरकार द्वारा भी इस वर्षा के पानी के लिए एक पहल की गई है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान या कैच द रेन जैसी व्यापक पहल शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य है बारिश की हर एक बूंद को सहेजना, भूजल स्तर को बढ़ाना और पारंपरिक जल स्रोतों, तालाबों और कुएं को पुनर्जीवित करना। प्रमुख जो हमारी पहल है उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके क्या पहलू हैं या किस तरह से इसको करना है, तो और किस तरह के अभियान इसमें चलाए जा रहे हैं। तो पहला अभियान है जल शक्ति अभियान, यानी शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित यह अभियान है। ग्रामीण और शहर दोनों ही क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन यानी छत पर पानी को इकट्ठा करना, उसे ज़मीन में रिचार्ज करने के लिए भेज देना, इसे प्रोत्साहन देना जो है जल शक्ति अभियान का एक अभियान चलाया जा रहा है। अगर हम दूसरे अभियान के बारे में बात करें तो इसे कहते हैं कैच द रेन, जहां गिरे जब गिरे वहीं पानी बचाएं। ये सिद्धांत पर आधारित यह अभियान है, विशेष रूप से मानसून के दौरान सक्रिय रहता है यह अभियान। इसके तहत हर घर, स्कूल, कार्यालय, औद्योगिक संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अटल भूजल योजना, यह योजना विशेष रूप से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में स्पेशली ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में भूजल स्तर की स्थिर रखने के लिए नगर निगम ने नियमों को सख्त किया है। नए भवनों और निश्चित क्षेत्रफल वाले घरों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है, और कई सारे ऐसे कार्यालय भी हैं जहां पर सरकार द्वारा ये पहल की गई है कि आप इस तरह के हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं और उससे भूजल स्तर

0: जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मियों के समय पर पानी नहीं होता है, ऐसी जगह को तो सुनिश्चित किया गया है कि यहाँ पर इस तरह के अभियान जो है चलाए जाएंगे। और जनता की अवेयरनेस के लिए, आम लोगों की अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स के द्वारा उन्हें समझाया जा रहा है। जैसे कि हम भी आपको बताएं कि इस तरह के किस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। यदि आप अपने घर या संस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं तो सरकार द्वारा कई तकनीकी प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। जैसे छत का पानी अगर इकट्ठा करते हैं तो फिल्टर करके भूमिगत टैंक या बोरवेल में भेजा जा सकता है। रिचार्ज पिट, घर के बाहर छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उनमें कंकड़ पत्थरों को भर दिया जाता है। ऊपर से यह ज़मीन ठोस होती है लेकिन नीचे इसमें जो है कंकड़ और पत्थर की वजह से पानी के निकास नीचे तक जाने के लिए व्यवस्था की जाती है। जैसे कि होता ये है कि घर के बाहर जो छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं उसमें बारिश का पानी जो है तेज़ी से ज़मीन के अंदर चला जाता है। और अगर आपके आसपास वहाँ की बोरवेल है या फिर आपकी घर की भी बोरवेल है तो उसमें पानी की कमी नहीं होगी। तो इस तरह की जो पहल है उसमें हमें भी शामिल होना चाहिए, और जिनको इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है उनको भी इस बारे में अवेयर करना है। तो बिल्कुल, बदलते हुए मौसम का जैसे हम आनंद लेते हैं वैसे ही हमारे आने वाले भविष्य के लिए अगर हम उस पानी को सहज करके सुरक्षित कर लें तो ये भी तो हमारे लिए आगे आनंद का ही सबब बनेगा दोस्तों। तो बिल्कुल, कार्यक्रम में इसी तरह हम आपको जानकारी दें इसके लिए एक छोटा सा विराम तो बनता है और फिर से हाजिर होते हैं इस विराम के बाद।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अर प्रोग्राम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। और जैसे कि कार्यक्रम के पहले हम बात कर रहे थे बरसात के बारे में, तो आइए कार्यक्रम में अब चर्चा का विषय बदलते हैं और अब बात करते हैं हमारे दिन विशेष के बारे में। तो आज दिन है 22 जुलाई। यह तारीख केवल तारीख नहीं है बल्कि इतिहास में इसका नाम सुनहरे पन्नों पर लिखा गया है। उसका कारण हम आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा, जो हमारी शान आन और बान है, को इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन आज माना जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 में भारत की संविधान सभा ने हमारे वर्तमान तिरंगे को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया था यानी अपनाया था। अगर ऐतिहासिक स्वरूप देखें तो 22 जुलाई 1947 को पंडित नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव रखा गया था। हर साल 22 जुलाई को इसी ऐतिहासिक घटना की याद में झंडा दिवस या राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अपनाए गए झंडे में 3 पट्टियाँ शामिल थीं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग जो है साहस और बलिदान का परिचय देता है। सफ़ेद रंग शांति और सत्य के बारे में हमें सिखलाता है। साथ ही बता दें कि हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। इसके केंद्र में 24 तीलियां वाला अशोक चक्र, जो हमें धर्म और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहने का प्रतीक होता है। तो ना केवल एक जो है ये हमारे लिए एक झंडा ना केवल एक पट्टिका है, बल्कि यह हमारे आन वान शान का प्रतीक है। हमेशा ऐसे ही इस तिरंगे को हम ऊंचा रखें, इसकी शान बनाए रखें, इसके प्रति कृतज्ञ रहें और इसी तरह से हम इस झंडे के में जिन लोगों ने बलिदान दिया उन्हें इस झंडे की स्मृति और लहराते हुए ध्वज में याद करते रहें। तो आइए कार्यक्रम में हम भी इसे अपनी कृतज्ञता देते हैं, अपनी सलामी देते हैं, अपना सल्यूट देते हैं इस गीत के साथ।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बिल्कुल दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। और जैसे कि हम बात कर रहे थे दिन विशेष की, तो आइए आज एक नहीं बल्कि दो दो दिन विशेष के रूप में हम आज इस दिन को जानते हैं। ना केवल आज हम तिरंगे की शान और आन बान के लिए सतत देशभक्ति के लिए सजग हैं, बल्कि जिस तरह से हमें अपने देश के अपने स्वास्थ्य अपने देश के आन बान शान के लिए काम करना चाहिए, वैसे ही बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य यानी कि अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे। इस दिन का एक मुख्य उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका संबंधी बीमारियाँ यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और उसके बचाव के बारे में जागरूक करना इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि जिस तरह से हम कहते हैं ना कि अगर तन खुशी तो मन खुशी, अगर हमारा तन यानी कि शरीर स्वस्थ है तो मन अपने आप स्वस्थ हो जाता है। हमारे आसपास जितना हमें बारिश और सुख शांति महसूस कराती है, जितना सुकून महसूस होता है, उतना ही सुकून हम तब महसूस कर सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ है और हमारा शरीर के अंदर होने वाला मन स्वस्थ है। अगर मन सुखी तो हर चीज़ सुखी हो जाती है दोस्तों। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आसपास शांति बनाए रखें, अपने चीज़ों को अपने कामों को समय पर व्यवस्थित कर लें और अपनी मानसिक जो स्थिति है उसको हाइपर होने यानी तनावग्रस्त होने से बचा सकें, क्योंकि आजकल दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से छूटती जाती हैं। हमारे हाथ से डेली ही कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं, कुछ काम पूरे हो जाते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं, और इन कामों के पूरे ना होने की वजह से हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत फ़र्क पड़ता है। दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में कई बार हम अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते हैं, बदलते मौसम के कारण भी ऐसा होता है, और फिर वो मानसिक तनाव जो हमारे अंदर होता है उसकी वजह से कई काम जो बनने वाले होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए हमें, ऐसे हमें करना ये चाहिए कि अपने काम को समय पर करें, अपनी स्थिति को यथोस्थिति जैसी भी है उसे वैसे ही समझें, और उस स्थिति में अगर आप बदलाव कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो उसे मानसिक रूप से ज़्यादा उस बात का तनाव ना लें। ऐसा कहा जाता है कि विश्व मानसिक मस्तिष्क दिवस की शुरुआत साल 2014 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा की गई थी। मस्तिष्क हमारे शरीर का मुख्य अंग है और संवेदनशील अंग भी है, इसलिए इसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और इस पर हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी बात से तनावग्रस्त होते हैं तो अक्सर करके हमारा ऐसा मानना है कि उन बातों को सोचना या उन बातों को करना छोड़ ही दीजिए कुछ समय के लिए। शरीर यदि स्वस्थ होगा, मन यदि स्वस्थ होगा, तो आप उस काम को और भी दूसरे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप तनावग्रस्त होंगे तो वो काम आसानी से होने वाला काम भी आपके काम को बिगाड़ देगा। और कहा भी जाता है कि हमारे दिमाग के केवल दो ही दुश्मन होते हैं, पहला प्रदूषण और दूसरा अधूरी नींद। रोज़ाना 7 घंटे से कम की नींद लेना, मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना, प्राकृतिक जो हमारे मस्तिष्क की सफाई होती है या शांति होती है वह केवल पूरी नींद से ही आ सकती है। तो हमेशा अपनी पर्याप्त नींद लें। मस्तिष्क को दिन भर का जमा हुआ जो अवशिष्ट है यानी कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, उन सबको थोड़ा मन को शांत करने के लिए पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आपके मन में शांति होगी वैसे ही आराम से जो काम आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है, WHO ने पहली बार वायु प्रदूषण को डिमेंशिया की प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल किया है। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण रक्त के माध्यम से मस्तिष्क पहुंचकर तांत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं और प्रदूषित हवा में रहने से सूजन बढ़ती है और संज्ञानात्मक क्षमता भी प्रभावित होती है, यानी कि हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जितना पॉसिबल हो अपने आप को ढक कर रखें, अपने नाक को हमेशा मास्क से कवर रखें, जितने ज़्यादा प्रदूषण से दूर रहेंगे अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य उतना ही स्वस्थ रहेगा। और इसी तरह से हम कामना करते हैं कि हमेशा आप ऐसे खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमारे कार्यक्रम को सुनते रहें। लेकिन अभी घड़ी की सुइयों ने हमें दे दी है इजाज़त कि अब कार्यक्रम को हमें अगले दिन के लिए जाने के लिए अभी तो बंद करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको अगली भी जानकारियाँ दें लेकिन अगले दिन, और आज हम इस कार्यक्रम से दे दीजिए इजाज़त। तो सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। तो लीजिए, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे योगिनी तांबे के द्वारा ध्रुपद धमार राग भैरव। पखावज पर संगत की है जयवंत गायकवाड़ ने। तो आनंद लीजिए शास्त्रीय संगीत का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना योगिनी तांबे के द्वारा ध्रुपद धमार राग भैरव पखावज पर संगत दी थी जयवंत गायकवाड़ ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत यहीं ख़त्म हुआ, संपन्न हुआ। सुबह के 10 बजने को है, थोड़ी देर में आप
1: सुनेंगे चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खरगोन जिले की चिट्ठी, आलेख आशुतोष पुरोहित, वाचन स्वर दीपा सिंह। खरगोन जिले के लिए महीना मिला जुला रहा। जिले के झिरनिया में पिछले दिनों आयोजित सिकल सेल शिविर में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि सिकल सेल जैसी अनुवांशिक बीमारी के उन्मूलन के लिए उपचार के साथ साथ जन जागरूकता भी आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक इस बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसे जन सहभागिता से ही पूरा किया जा सकता है। जल गंगा संवर्धन अभियान में खरगोन ने प्रदेश में छठा स्थान प्राप्त किया है। अभियान के अंतर्गत जिले में 8352 जल संरक्षण कार्य पूरे किए गए हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के जिलास्तरीय समापन समारोह में विधायक बालकृष्ण पाटीदार, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मलिंद कुमार नागदेवी सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। खरगोन में पिछले दिनों सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, वनाधिकार से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने, आयुष्मान कार्ड अभियान में तेजी लाने, सिकल सेल उन्मूलन अभियान को प्राथमिकता देने, पेयजल और सिंचाई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग में ड्रॉप आउट बच्चों की मुख्य धारा में वापसी, स्कूल भवनों की मरम्मत और निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। भारत

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन का शुभारंभ पिछले दिनों हुआ। विकसित भारत गारंटी ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन का शुभारंभ पूर्व मंत्री खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार के मुख्य आतिथ्य में हुआ। श्री पाटीदार ने कहा कि यह मिशन ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के साथ जल संरक्षण और आजीविका सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खरगोन जिले के झिरनिया विकासखंड ने नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में मध्यप्रदेश जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर दिशा समिति की बैठक में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने पूरी टीम और जिला प्रशासन को बधाई दी। उधर झिरनिया और भगवानपुरा विकासखंड में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए विशेष परिवहन सुविधा शुरू की है। इसके साथ सुमन पंचायत पहल के माध्यम से सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रभारी कलेक्टर रेखा राठौर ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन और शासन की प्राथमिकता है। इससे जन सहभागिता से मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत खरगोन नगर पालिका क्षेत्र के 29 श्रद्धालुओं का वैष्णो देवी यात्रा के लिए पिछले दिनों रवाना किया गया। श्रद्धालु बस से खंडवा और वहां से रेल मार्ग से वैष्णो देवी गए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी, उपाध्यक्ष भूलू कर्मा सहित पार्षदगण और अधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाओं के साथ विदा किया। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पिछले दिनों सपत्नीक खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर का भ्रमण किया। उन्होंने मां नर्मदा और बारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की तथा अहिल्या किला और महेश्वर साड़ी बुनाई केंद्र का अवलोकन किया। जिले में अमृत हरित महाअभियान के तहत नगर पालिका खरगोन ने शहर में लगभग 1500 पौधों का रोपण किया। अभियान के अंतर्गत औषधीय फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। महत्वाकांक्षी अभियान धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष के तहत जिले में लगभग 34,65,00,000 रुपए की लागत से छात्रावासों, अधीक्षक और आवासों तथा मरम्मत कार्यों सहित 29 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दस्तक अभियान शुरू किया गया है। 31 अगस्त तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए किसानों को 31 मई तक फसल बीमा कराने की अपील की गई है। योजना में कपास, सोयाबीन, मक्का, अरहर और मूंग की फसलें शामिल हैं। प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग के सचिव अक्षय कुमार सिंह ने जिले के कृषि क्षेत्रों का भ्रमण कर किसानों से संवाद किया। उन्होंने बढ़िया मिर्च की गुणवत्ता और निर्यात की संभावनाओं का भी अध्ययन किया। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के दौरान लगातार जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन पुलिस द्वारा जिले के सभी 18 थाना क्षेत्रों के अंतर्गत किया जा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे ज़िले की चिट्ठी। इसमें आज का विषय था खरगोन ज़िले की चिट्ठी। आलेख आशुतोष पुरोहित का था, वाचन था दीपा सिंह का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। तो ये प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म, जिसमें आवाज़ है किशोर कुमार की, और जिसे हमने लिया है फिल्म नमक हराम से। संगीत है आनंद बख्शी का और संगीत है आरडी वर्मन का और गीतकार है आनंद बख्शी। एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि किशोर कुमार की आवाज़ में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म नमक हराम का ये गीत। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत दिया है आरडी वर्मन ने। साथ ही आपको बता दें कि इस गीत को सुनने की फरमाइश की है एनी सॉन्ग धनोरी तेलीवाला से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू ने। इसी गीत को सुनना चाहते थे शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बेहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन वर्मा, मास्टर समर राज आर्यन, बेबी आरोही ऐशिका, अंजलि श्वेता वर्मा, इन सभी ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, सुमन वर्षा, माधुरी किरण, इन सभी ने। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहाना अब्बासी, सुहान अब्बासी, अर्जा

अब्बासी अवान अब्बासी अब्बासी परिवार ने इसी गीत के लिए अगला हमें फरमाइश मिला है। जाकिर मुलानी का सुमेर मुलानी सुमैया मुलानी सुबान मुलानी समीर सलमान।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: अल्प विराम के बाद स्वागत करते हैं श्रोताओं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, डीजे कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हिमालय की गोद में। इस फिल्म से आवाज़ है मुकेश की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। और साथ ही आपको बता दें कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा ने। इस गीत को सुनना चाहा है नाहिर शेख, नाजिर शेख, नजियान सीर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से सुनना चाहते हैं जुनेद मुजावर, साहिबा साबिहा मुजावर और मुखाइल जैन मुजावर ने। इस गीत के लिए हमें लिख भेजा है

मालवा रेडियो श्रोता संघ संघ ग्राम हिंगड़ी अलोटा जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने इसी गीत के लिए फरमाइश है। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राज्यपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बीवी अंशिका और तन्मय गजबिये ने। तो आइए इन सभी गजबिये परिवार और सभी श्रोताओं की ओर से आपको सुनवाते हैं फिल्म हिमालय की गोद से लिए हुए इस गीत को।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं आपके पसंद के गीत। तो आइए कार्यक्रम में अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म महबूब की मेहंदी से लिया हुआ ये गीत। और साथ ही बताना चाहेंगे कि इसी गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और एक बार फिर से संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए कार्यक्रम में साथ ही आपको बताएं कि इस गीत को पसंद करता है हमारे गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार, वैशाली, प्रजाक्ता, वैष्णवी, गायत्री, यज्ञेश घोड़ के परिवार ने, सतवीर सिंह बिजार निया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नाव्या विजारनिया परिवार ने, गांव खारियां ढाड़ी, जिला सिरसा और हरियाणा से इस हमें फरमाइश की है। चुनूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू पियोगिता श्रीवास और रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास बादवानी, इन सभी ने हमें फरमाइश भेजी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अगले फरमाइश करता है बुलढावा महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन माठे, संजय माठे, यज्ञेश माठे, यज्ञेश माठे, ज्ञानेश्वर माठे, देवेंद्र भटक भाटकर, इन सभी ने हमें जो है फरमाइश भेजी है इस गीत के लिए। अगली फरमाइश है नई बस्ती गुंजडुनवारा से मोहम्मद यासिन हाजमी, नाजमा हासिन, बेगम हाजमी, तौसीफ हाजमी, तैमूर हाजमी और कलीम अंसारी ने। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश है ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की। इसी गीत को फरमाइश करते हैं हरगोविंद नगर नवा शेखरपुर कलाम रोड से सुरविंदर संधु, अनीता संधु, रोहित, रितेश, शिखा और प्रतिमा संधु और मैक्स ने। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म महमूद की मेहंदी से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं वर्ड्स ऑफ फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म आप आए बाहर आइए। इस फिल्म से लिया हुआ ये गीत, जिसे फरमाइश की है कंवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन MP से प्रवीण श्रीमाली, मीना शर्माली ने, दिवेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से इसी गीत के लिए लिख भेजा है। जिला नांदेड़ ऐताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल ने, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलेवाला, दुखना सदफ जूही इकबाल, अमाना आसमा परी, इकबाल अहमद फूलेवाला और इमरान अहमद फूलेवाले ने। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। अगले फरमाइश करता है तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, मिनानी धाड़े, स्वप्निल धाड़े ने। अगले फरमाइश करता है श्रोता संघ जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभाड़ी महाराष्ट्र से रूपे संघे, महे संघे, प्रज्ञे संघे, प्रतेश संघे, पूरे संघे इस परिवार ने। तो आइए सुनवाते हैं आपको इनकी पसंद का गीत फिल्म आप आए बाहर आए, इस गीत फिल्म से लिया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं आपके ही पसंद की फरमाइश किए हुए गीत। तो आइए, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं कुमार सानू, अलका याग्निक और अनु मलिक की आवाज़ों में फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई से लिया हुआ ये गीत। गीत को लिखा है जमीर काजमी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है संबलपुर कांकरे से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव ने। ग्राम लोहड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, यूपी से जयसपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांश, आराधना, रोनिका, चंद्रेश, गौहर, सुनील पाठक ने। जसपुर उत्तराखंड से हमें लिखते हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा वेदन सिद्दीकी, रियाज रिफाक, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, इन सभी ने उत्तराखंड से हमें लिखा है इस गीत के लिए। हरदोई रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज़ शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, इन सभी ने। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार, इन सभी ने हमें इसी गीत के लिए लिख भेजा है। साथ ही माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा, इन सभी ने अडार नंदघाट छत्तीसगढ़ से हमें इसी गीत के लिए फरमाइश की है। तो आइए इनकी फरमाइश को पूरा करते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई से लिया हुआ ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं वारसा फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए, कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से लिया हुआ ये गीत कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ों में। और साथ ही बता दें, इस गीत के लिए हमें लिख भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल वर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और विट्ठल बजाज ने। तो इस गीत के लिए अगली फरमाइश है संभाजी नंबर नगर से वैशाली प्राजक्ता वैष्णवी गायत्री यज्ञेश अनिल कुमार घोड़के के तरफ से, और कुम्हार गली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, पार्थक, प्रथमेश, संतोष, पांडरंगू कुम्हार गली से इन सभी ने। नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी, इन सभी ने इस गीत के लिए फरमाइश की है। साथ ही ये सुनना चाहते हैं इसी गीत को हमारे अगले फरमाइश करता है पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना भगत, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सुमन सिंह और अनामिका सिंह, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और सविता, इन सभी ने। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, मजनू का टीला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा ने। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, दीदी वैदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी, कुमारी अकीता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, इन सभी ने इस गीत को सुनने की फरमाइश की है। तो आइए, सभी की फरमाइश को पूरा करते हैं और आपको सुनवाते हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए आप सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत फिल्म चाहत से अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाज़ों में। इस गीत को पसंद किया है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढीमिया और अपार ढींगिया ने। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू ने इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, जनमन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहिनी, पिंगावाली चौक, गुराया, जालंधर से। और इसी गीत को मलियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, संजय जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और जैन साहब ने इसी गीत के लिए फरमाइश करता है। फरमाइश भेजने वाले हैं हमारे गणेशपुरा, गुंजुंडवारा, एटा उत्तर प्रदेश से फारूक शेख, समा शेख, साइमा शेख, फराज शेख, फरान शेख और बीबी मुस्कान ने। दीपक गायड़वाड़, ग्रंथ गायड़वाड़, कार्तिक गायड़वाड़, सुंदर गायकवाड़ और सरिता गायकवाड़ ने हमें लिख भेजा है। सावनी मालवा, सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम, बनापुरा से इसी गीत के लिए फरमाइश करता है। बिहार री कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, चेतना मस्किन, रचिता मस्किन, आशीष मस्किन, इन सभी ने। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजाल इमाम, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। दादा बाबू रोड गिरही झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा अनजान, साइमा अनजान, हसन अनजान, आबू अहमद, मिफरा नाच और बेबी चाहत ने इसी गीत को पसंद किया है। तो लीजिए इनकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं फिल्म चाहत का गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। इसी अंतिम गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इस घंटे की खास खबर कुछ ही देर में।

0: हफ्ते की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि वर्ष 2027 युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान बेहतर शिक्षा, आधुनिक स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के नए अवसरों के साथ युवा सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जाएगा। सरकार ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें उन्होंने दिल्ली हमलों के मद्देनजर मुस्लिम सैन्यकर्मियों से 20,000 इस्तीफे मिलने का दावा करते हुए दिखाया गया है। सरकार के अनुसार यह वीडियो AI द्वारा निर्मित डीप फेक है जिसे जनता को गुमराह करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं और कई महत्वपूर्ण शासकीय विधेयकों पर चर्चा होगी। भोपाल नगर निगम के अमले ने सड़कों पर घूमने वाले 7 मवेशियों को कांची हाउस और 4 घायल पशुओं को आसरा चिकित्सालय भेजा है। मध्य प्रदेश पुलिस में सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग भर्ती वर्ष 2025 के अंतिम परीक्षा परिणाम के आधार पर दस्तावेज परीक्षण, चरित्र सत्यापन, मेडिकल परीक्षण की कार्यवाही 27 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। और गुना, श्योपुरकुला, सतना, चिवनी, बालाघाट, पन्ना, मैहर, राजगढ़, बैतूल और कटनी समेत कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

0: फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए। फिर पत्तों की पाजेब बजी, तुम याद आए। पहले तो मैं चीख कर रोया और फिर हंसने लगा। बादल गरजा, बिजली चमकी, तुम याद आए। श्रोताओं नमस्ते, मैं हूं नीतिका वर्मा। प्रस्तुत है आपके लिए फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने, और जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता के साथ। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्ते।
1: नमस्कार मैडम,
0: किससे बात कर रहे हैं हम, परिचय दे दीजिए।
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
0: जी लोकेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: जी धन्यवाद मैडम।
0: उज्जैन में बारिश हो रही है?
1: हाँ मैडम, कल थोड़ी हल्की बारिश हुई थी, बाकी मौसम तो अभी खुशनुमा बना हुआ है। बारिश का इंतजार रहने के, बारिश आ जाए, क्योंकि बरखा रानी का तो सभी जगह इंतजार हो रहा है।
0: हाँ, और अब तो झमाझम बारिश होनी शुरू हो गई है कई जगह प्रदेश पर, आज पानी बरस ही रहा है। और
1: हाँ जी जी, बहुत जगह थोड़ी बारिश जो पहले हुई थी ना, पहले जो बोहनी के समय में होती है, हाँ। उस समय तो सब पूरे प्रदेश में और पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में हुई है,
0: हाँ।
1: पर अभी बीच में थोड़ा ये 15 दिन का अंतराल जो बहुत मुश्किल भरा निकला है मैडम।
0: ठीक है, ये तो खैर ऐसा है कि अब जब भी बारिश बरसेगी तो सुकून आपको मिलेगा। बहरहाल आप ये बताएं कि आज आपने फोन किया है, पहला फोन कॉल है आपका, और कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: तो फिर एक और चरस फिल्म का जी, आजा तेरी याद आई, बस इस आपका ये गीत है।
0: जी जी जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर हम भेज रहे हैं।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, नमस्कार।
2: दिल

गाया मैंने काली घटा छाई, जुल्फ लहराई तो रात हो जाएगी, जो नहीं होनी वो बात हो जाएगी। ये सुना दीजिए।

0: हेलो
1: जी
0: मैडम, नमस्ते।
1: नमस्ते
0: शैतान सिंह मीना बोल रहे हैं राजस्थान से। थैंक
1: जी। जी बहुत स्वागत है आपका
0: यू मैडम। मैडम एक गाना सुनना है, फिल्म
1: जी, अपनी पसंद बताएं।
0: का नाम है राम लखन और गाने के बोल हैं ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैडम जी, ऐसा कुछ गाना है जी।
1: जी जी
0: जी जी मैडम यही वाला।
1: जी चलिए, 1 2 का 4, 4 2 का 1।
0: जी जी जी मैडम जी।
1: चलिए, आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है।

0: हाँ, मैं कटनी से सुनील गर्ग बोल रहा हूँ
1: जी। नमस्कार सुनील गर्ग जी, बहुत स्वागत है आपका।
0: आप कौन दीदी बोल रही?
1: मेरा नाम नीतिका वर्मा है।
0: अच्छा दीदी, आज हमें आपकी परछाई यहाँ पिक्चर का गाना सुनना रहा, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। जी आपकी परछाइयां पिक्चर
1: जी
0: का।
1: आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। नमस्कार
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी जी परिचय दीजिए आपका।
1: मैं सोनिया सोनी बोल रही हूँ।
0: जी क्या करती हैं सोनिया जी?
1: मैं घर पे रहती हूँ, काम करती हूँ।
0: अच्छा, और रेडियो सुनती हैं हमारा?
1: जी कभी कभी सुन लेते हैं, टाइम मिलता है तो घर के काम से।
0: जी, तो आज आपने फोन किया है, आपकी पसंद का गीत कौन सा है?
1: हम तुम्हारे हैं सनम का टाइटल ट्रैक। जी मैम, आप कौन बोल रही हैं?
0: जी मैं नीतिका वर्मा बोल रही हूँ। चलिए, आपके पसंद का ये गीत हम रेडियो पर भेज रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया है। नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: केसी सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास तिवारी ले बोल रहा हूँ।
1: जी देवीदास जी बहुत स्वागत है जी, बताएं आज फोन किया है, आपकी पसंद का गीत कौन सा है?
0: पसंद गीत तो बताऊंगा मैं, जब आज सेंधवा में बरसात हो रही है
1: जी,
0: तो आज फिल्म का नाम है हेलो, जैसा बता रहा हूँ मैं आपको, फिल्म का नाम माशुक
1: जी, माशुक का
0: ओ यारा जिन्होंने भेजी है जुदाई
1: जी, ये गीत आपका रेडियो सेट पर भेज रहे हैं, आपकी पसंद
0: जी, थैंक यू
1: जी, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: जी नमस्कार।
0: हाँ दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते
0: हम भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर गंज बासोदा से। हाँ
1: जी
0: दीदी, और मौसम कैसा है भोपाल में अभी?
1: जी बारिश हो रही है आज तो।
0: हाँ इधर तो बासोदे में भी पानी गिर रहा है। बिल्कुल
1: चलिए अच्छा है ना।
0: बिल्कुल,
1: अब ये
0: नजदीक है सावन तो नजदीक है।
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: मानसून आ गया, ये बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मानसून तो जरूरी है, पानी गिर ही नहीं रहा था।
1: हाँ, फसलें खराब हो जाती हैं हमारी
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
1: जी। तो आज
0: और दीदी
1: जी
0: आज कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, फोन करेंगे
1: फोन
0: क्या?
1: करेंगे
0: है,
1: सुने हैं
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी, बताएं अपनी पसंद का गीत
0: दीदी हमें सुनवा देना बॉर्डर फिल्म का,
1: कौन सा।
0: बहुत संदेशे आते हैं, चिट्ठी आती है।
1: जी, संदेश आते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: हमें क्या है, चिट्ठी लिखने का बड़ा शौक है, इसलिए हम फौजी भाइयों के लिए ये
1: हाँ
0: गीत सुनाना चाहते हैं, जो हमारे जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं अपनी देश की सुरक्षा के लिए, उन नौजवानों के लिए
1: जी, बहुत धन्यवाद आपने।
0: जो अपने भी घर नहीं पहुंच पाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, उनके
1: हाँ
0: लिए चिट्ठी के माध्यम से।
1: जी बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत हम भेज रहे हैं।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। ये है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और आकाशवाणी भोपाल केंद्र से प्रसारित किया जा रहा कार्यक्रम है। फोन करें, गीत सुने।
0: जी बिल्कुल सही, आपका परिचय बताइए।
1: तुलसीराम साहू, ग्राम खापरखेड़ा, जिला रायसेन, एमपी, मध्य प्रदेश, भोपाल।
0: जी,
1: जी,
0: तो आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: आज मैंने फिल्म का नाम बंजारन।
0: बंजारन फिल्म, बोल बता दीजिए गीत के।
1: ये जीवन जितनी बार मिले।

0: तो श्रोताओं, आज के मौसम के बदलते मिजाज पर मेरा कुछ यूं कहना है कि तब्दीली जब भी आती है मौसम की यादों में, किसी का यूं ही बदल जाना बहुत याद आता है। तो ये था आज का फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने। अब कार्यक्रम से अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्ते।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बीरोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जल अवतरण करेगी। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि वर्ष 2027 युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान बेहतर शिक्षा, आधुनिक स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के नए अवसरों के साथ युवा सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जाएगा। सरकार ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें उन्हें दिल्ली मामलों हमलों के मद्देनजर मुस्लिम सैन्यकर्मियों से 20,000 इस्तीफे मिलने का दावा करते हुए दिखाया गया है। सरकार के अनुसार ये वीडियो AI द्वारा निर्मित डीप फेक है। मौसम विभाग ने आज गुना, श्योपुर, सतना, सिवनी, बालाघाट, राजगढ़ और बैतूल समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज PV सिंधु का सामना उन्नति हुड्डा से होगा। प्रतियोगिता के अन्य वर्गों में भी आज भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आप सभी की फरमाइश लिखने वाले हैं देवरी भाडरपारा से गनुलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर महाराष्ट्र से अभिजीत, श्रीमती सरिता, सिद्धांत, प्रिंस एकांश, नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता, सुमित, कुमारी ध्वनि, बंडा बेली से लक्षणपुर रामजी और इनके परिवार के सदस्य, लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। आप सभी ने सुनना चाहा है विवाह फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी उदित नारायण और श्रेया घोषाल ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

महादेव घाट व अमलेश्वर से टुमन ठाकुर, सुमन, मिथलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश, बाटरपारा से द्वारिका प्रसाद, किशोर, दीपक और जाविंद्र वर्मा, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। आप सभी ने सुनना चाहा है आशिकी फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू ने। गीत समीर का है, तस बनाई नदीम श्रवण ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके परिवार के सदस्य। इंदौर से लाल फतेह चिंदानी, लीला फतेह, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी ने सुनना चाहा है तलाश फिल्म का नगमा, मोहम्मद लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और तज बनाई एस डी बर्मन ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं तलाश फिल्म का ये नगमा।

रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर, जितेंद्र और मीका बिरक, अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब, मुस्तबा, रऊफ भाई और शाहिद, अकोला से रमेश और वैशाली। आप सभी ने सुनना चाहा है आशिक फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं उदित नारायण और अनुराधा पॉटवाल ने, गीतकार हैं समीर। तो आइए आप सभी की पसंद पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

औरंगाबाद से राजेश सामले, शीतल, राशि और राजदीप, अनिल साबी, पूजा, सुषमा, श्वेता और इनके परिवार के सभी सदस्य, इन्होंने ये ख़त हमें भेजा इंदौर से। आप सभी ने सुनना चाहा है मीरा का मोहन फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश फाड़ेकर ने। गीत इंदिवर का है, तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पे ये नगमा।

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: जी भी है, ऑल्सो जैन ओल्ड नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कामिनी काय कांतारे का सातवां भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित, प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का सातवां भाग।

अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महालय छोड़कर चले जाते हैं। मार्ग में वृक वन में एक अपरिचित उनके प्राणों की रक्षा करता है। उनके प्रिय अश्व नीलमणि को लेकर वो आचार्य नागदत्त के आश्रम में बांध देता है। अश्व नीलमणि ठीक हो जाता है। आचार्य नागदत्त नीलमणि को अवंती भेजने की व्यवस्था करते हैं। अब आगे

0: राजा भर्तारी का प्रिय अश्व नीलमणि अवंती आ जाता है। उसे आचार्य नागदत्त के आश्रम से चंद्रसेन लेकर आते हैं। चंद्रसेन को रानी पिंगला बुलाती है। चंद्रसेन महल के अतिथि गृह में बैठे हैं। रानी की सेविका वैसिका कहती है,
1: आपने तो मधुरव्य का स्पर्श भी नहीं किया ब्रह्मचारी।
2: देवी, आप वय में मुझसे बड़ी हैं, अतः आप नाम से पुकारें तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे चंद्रसेन कहते हैं।
1: इस भांति मैं भी देवी नहीं हूँ, मेरा संबोधन है वैसिका।
2: किंतु मैं आपका नाम नहीं लूंगा, दीदी कहूं तब क्या अधिक ठीक नहीं होगा? इस महानगर में मेरा कोई परिचित मित्र नहीं है। गोप आश्रम से मेरे साथ आया है, दो दिन के साथ में मैं उसे समझ ही नहीं पाया। वो भी सयात उतना ही मेरे प्रति अजनबी है। वो बाहर झांकना भी नहीं चाहता। अपने भोजन शयन सुविधा से निकलकर उसके लिए केवल अपना परिवार है।
1: सांसारिक व्यक्ति है, अपनी सीमाओं में जीता हुआ। अब तुम मुझे दीदी कहो या बहन, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। किंतु क्या तुम दासी और अनुचरी को बहन के रूप में स्वीकार कर पाओगे?
2: क्यों नहीं, मैं भी तो सेवा

0: हूं।
1: अंतर है ब्रह्मचारी, तुमने स्वयं सेवा का व्रत चुना है और मैं क्रय की गई सेविका हूं, दासी, स्वामी के आदेशों से बाध्य।
0: तो आप मेरी दीदी बनना नहीं चाहती?
1: ऐसा तो मैंने नहीं कहा चंद्रसेन, पहले मुंह तो झूठा करो।
0: आपकी जिव्या से अपना नाम सुनकर मुझे सुख मिला। बहुत स्वादिष्ट है ये मधुरव्य, किंतु व्रती को सांसारिक सुख से बचना चाहिए, संयम बाधित होता है, सुख का परितोष क्रमशः व्यसन में बदल जाता है। पाने की इच्छा बलवती होती जाती है और न पाना दुख बन जाता है। पाने के लोभ में विचलन और उसके बाद अकरणीय का रूप ले लेती चेष्टाएं, ये पाप कर्म की प्रवृत्ति है दीदी।
1: बहुत ज्ञान की बातें करते हो चंद्रसेन।
0: नहीं दीदी, ज्ञान तो शास्त्रों में है, जहां उद्विग्नता, क्लेश, विकार से मुक्त होकर ही कुछ सीखा और समझा जा सकता है। ये तो मेरा अनुभव है। लीजिए, आपकी आज्ञानुसार मैंने जलपान कर लिया, अब आप मेरी एक याचना स्वीकार करेंगी?
1: भाई की बात तो माननी ही पड़ेगी। यदि असाध्य ना हो, संभव हो, करनीय हो।
0: कोई बड़ी बात नहीं है दीदी, मुझे महामात्य ने 5 स्वर्ण और 5 रजत मुद्राएं दी हैं। मेरे लिए उनकी कोई उपादेयता नहीं है। एक मुद्रा मैं गोप को देने वाला हूं, परिवार के लिए कुछ क्रय कर लेगा। शेष 4 स्वर्ण मुद्राएं आप रख लीजिए। लीजिए, मेरे किसी भी काम की नहीं है।
1: किंतु इन्हें मेरे पास क्यों रख रहे हो?
0: इसलिए कि आप मेरी दीदी हैं, आपके सिवा मेरा यहाँ कौन है।
1: अच्छा, रख लूंगी।
0: ये लीजिए।
1: तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है चंद्रसेन?
0: परिवार बहुत विशाल है मेरा परिवार दीदी। 20 कुष्ठ रोगी, अनेक अशक्त, वृद्ध, बावरे और अनेक मूक जैसे सेवक, परिचारक, सेवाश्रम के कार्यकर्ता, आचार्य नागदत्त से मुझ तक लगभग 100 से अधिक सदस्य हैं मेरे परिवार में दीदी।
1: हो, 100 तो है, किंतु मैं तुम्हारे माता पिता के संबंध में पूछ रही थी। सेवाश्रम में कहां से पहुंचे हो?
0: आया तो गोपांचल से हूं, ब्राह्मण के घर में जन्मा था। बाल्यकाल में मां नहीं रही, उसकी धुंधली सी स्मृति है। और रहने दीजिए, किसी अन्य अवसर पर सब कुछ सुनाऊंगा।
1: ठीक है, ये मुद्राएं मेरे पास तुम्हारी धरोहर रहेंगी, जब चाहो ले लेना।
0: ठीक है दीदी।
1: कभी भी आ सकते हो, द्वार पर मेरा नाम लोगे तो प्रवेश मिल जाएगा।
0: बहुत अच्छा,
1: नाम स्मरण है ना मेरा, वैसिका दासी।
0: आपका नाम और छवि तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता दीदी। आपको देखते ही मुझे आश्रम के भेषज्ञ त्रिलोचन का स्मरण हो आया। आप दोनों की छवि में अद्भुत साम्य है।
1: त्रिलोचन? कौन है ये त्रिलोचन?
0: सेवाश्रम के भेषज्ञ हैं, मुझ पर उनका असीम स्नेह है, बिल्कुल लघु भ्राता मानते हैं मुझे।

0: त्रिलोचन, वह क्या होगी उनकी? कहां से आए हैं?
1: दीदी, आश्रम में किसी का कुल, ग्राम, गोत्र तथा देश जानने की प्रथा नहीं है। कोई स्वयं बता दे तो अलग बात है। वहां केवल दो ही भाव हैं, पीड़ा और सेवा। आश्रम वासियों को जोड़ने के लिए यही पर्याप्त है। हाँ, भेषज्ञ त्रिलोचन की वय मेरे अनुमान से वो मुझसे 5-7 वर्ष वरिष्ठ होंगे।
0: क्या तुम्हारे भेषज्ञ का वर्ण गंदूशी है?
1: हाँ, मुझसे कुछ उजला है।
0: क्या उनके बाएं कपोल पर क्षत का कोई चिन्ह है?
1: वो तो मुझे ज्ञात नहीं।
0: चंद्र,
1: दीदी,
0: एक काम करना, आश्रम के भेषज्ञ से उनका देशाकुल पूछना।
1: अच्छा।
0: यदि वो दक्षिणत्य कालाधर से हो तो किसी भांति उनके कपोल पर घाव की रेखा का चिन्ह देखने का प्रयत्न करना। यदि ये 3 संयोग मिल जाएं, तो उनसे पूछना कि क्या उन्होंने गोदावरी की जल यात्रा की है। त्रिलोचन की आंखों में कहीं अश्रु दिखाई दे तो तुरंत मुझे सूचना देना।
1: ये क्या दीदी, पहले मुझे रुलाई आई और अब तुम रोने लगी।
0: रो नहीं रही हूँ चंद्रसेन, अपनी आंखें धो रही हूँ कि कहीं कोई आशा की किरण दिखे तो उसे चीन तो सकूं। अच्छा, अब जाओ, उज्जैनी में दर्शन और भ्रमण करो। ये नगरी बड़ी मोहक है। और हाँ, लौटने से पहले भेंट करके जाना।
1: जो आज्ञा दीदी। प्रणाम दीदी।
0: प्रणाम।

0: वैसिका से भेंट करके चंद्रसेन नगर भ्रमण को निकल पड़ते हैं। रथ चालक उनसे कहता है कि महास्पद के बिना वो इन्हें रथ से नगर भ्रमण के लिए नहीं ले जा सकता है। नगर में उन्हें पहरुआ रोकता है।
1: रुको!
2: अरे
1: हाँ हाँ, तुम सही कह रहा हूं। कौन हो तुम? कहां से आ रहे हो? यहां भीतर कैसे पहुंचे?
2: अरे भाई, हम महामात्य के अतिथि हैं।
1: तुम राजकीय अतिथिशाला में ठहरे हो?
2: हाँ, हम महाराज का अश्व लेकर आए हैं।
1: उसे जानते हैं?
2: अरे वो तो गोप है, मेरा सही यात्री।
3: बचाइए बचाइए बचाइए ब्रह्मचारी जी।
2: हाँ।
3: मुझे बचाए, इन लोगों ने मुझे निरुद्ध कर रखा है।
2: अरे
3: भांति भांति के प्रश्न करते हैं।
1: क्यों, ये तुम्हारे साथ है ये व्यक्ति?
2: हाँ भाई, हाँ आश्रम से भी साथ है। आओ गोप, आ जाओ।
3: हाँ हाँ हाँ,
1: ठीक है ठीक है। कहाँ जाना है?
2: नगर भ्रमण करना है, लेकिन सर्वप्रथम महाकाल के दर्शन करेंगे। अवंती के सनातन शासक तो वही हैं, शेष तो आते जाते रहते हैं। भूलोके च महाकालो लिंगत्रे नमोस्तुते।
1: किंतु आपने राजकीय वाहन नहीं लिया?
2: आवश्यकता नहीं है, पैदल चलने का स्वाभाविक अभ्यास है।
1: जी जी, जाइए जाइए जाइए।
2: गोप चलो, तुम यहाँ कैसे आ गए?
3: ब्रह्मचारी जी,
2: हाँ
3: मैं एकाकीपन से ऊब रहा था, सोचा राजमहल देख लूं, अब यहाँ आने का अवसर कहाँ मिल पाता।
2: हाँ हाँ।
3: किंतु रक्षकों ने रोक लिया, राजमहल देख नहीं पाया।
2: वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, चिंता मत करो। मुझे अपना भाई स्वीकार किया है उन्होंने।
3: किसने? महारानी ने?
2: नहीं बंधु, प्रीति और विरोध समान से होना चाहिए। वहां महारानी की एक सेविका है।
3: अच्छा?
2: स्नेहशील और मितभाषी। उनकी छवि हमारे भेषज्ञ त्रिलोचन से बहुत साम्य रखती है। उन्होंने मुझे अपना भाई स्वीकार किया है, अब हम किसी भी समय महालय में आ जा सकते हैं।
3: हाँ।
2: किस ओर से महाकाल के लिए चलना है?
3: देव मंदिर की दूरी तो इधर से कम पड़ेगी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इधर से चलते हैं।
3: हाँ चलिए।

0: महाकाल की श्रद्धा के आकर्षण से आवश्ट वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तथा स्वतः प्रकाशित दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर अभिभूषित हो जाते हैं। बाहर निकलते हुए चंद्रसेन कहता है,
1: देख रहे हो बंधु गोप, कैसा अनिर्वचनीय आनंद है भगवान शिव के सानिध्य में। जैसे काल और जगत की गति ही ठहर गई हो, न उत्पत्ति है और न विनाश, केवल शांति ही शांति, चिरंतन शांति, अनुभवातीत शांति। ओम नमः शिवाय।
2: अब वो तो है,

0: तो आप तो जैन है ब्रह्मचारी।
1: जैन हूं नहीं, होना चाहता हूं। वैसे आसान नहीं है जैन होना, वो एक चर्या है, विचार है, व्रत है। सो मैं एक व्रती मात्र होना चाहता हूं। महाकाल से आशीष चाहा था मैंने कि मेरा व्रत सफल हो, किंतु उनके सामने कुछ भी स्मरण नहीं रहा, स्तुति के श्लोक तक विस्मृत हो गए। महाकाल का प्रभाव, सम्मोहन, जैसे माया संपन्न हो गई हो।
0: ब्रह्मचारी जी, धूप तो तीखी होने लग गई है।
1: हाँ सो तो है, कहीं विश्राम करें क्या?
0: हाँ ऐसा कीजिए, आप उन वृक्षों की छाया में ठहरें।
1: अच्छा अच्छा,
0: मैं तो अपने एक परिचित वणिक के यहाँ जाता हूँ।
1: हाँ ठीक है। गोप, यहाँ से अतिथिशाला कितनी दूर है?
2: लगभग आधा कोस। यदि मुझे लौटने में देर हो जाए तो प्रतीक्षा न करें ब्रह्मचारी।
1: हाँ हाँ,
2: देखिए हाँ। आगे चौक से मुड़कर आप वहां पहुंच जाइए।
1: ठीक है,
2: मैं वहीं आ जाऊंगा।
1: अच्छा,
2: जाता हूँ।
1: ठीक है, जाओ जाओ।

0: राजमहल के द्वार पर चहल पहल हो रही है। सभी चिंतित हो रहे हैं कि चंद्रसेन और गोप कहां गए हैं। चंद्रसेन को देखकर कुमारास्पद पूछते हैं कि आप कहां हो? आपके लिए रथ और शिविका की व्यवस्था तो थी। इसका चंद्रसेन उत्तर देते हैं,
1: आप नहीं थे व्यवस्था के सूत्रधार। यह समझकर मैंने अपना निर्णय स्वयं ले लिया। अब हम यहां नहीं रहेंगे। देवी वसुंधरा तक आर्य नागदत्त का पत्र पहुंचाना है, तो किसी से पूछकर उन तक पहुंच जाएंगे। जाने से पहले वैसिका दीदी से विदा लेना है। आप हमारी चिंता छोड़िए। हमारे कारण आपको जो असुविधा हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें बंधु।
0: कुमारास्पद से विदा लेकर चंद्रसेन महालय की ओर प्रस्थान करते हैं।
2: किधर जा रहे हो ब्रह्मचारी?
1: हम
2: कौन हो तुम? यह राजपथ है, महालय का मार्ग।
1: हमें वहीं तो जाना है विदा लेने।
2: किससे विदा लोगे?
1: देवी व्यासिका से।
2: ठहरो, तुम संदेह जागृत कर रहे हो।
1: भाई, ब्रह्मचारी के पास छुपाने के लिए क्या है?
2: ओह, क्षमा करें ब्रह्मचारी, आप ही हैं जिन्हें देवी व्यासिका ने अबाध आने की अनुमति दे रखी है।
1: हाँ भाई।
2: आइए ब्रह्मचारी जी।

0: देवी वयस्का तक सूचना पहुंचा दी गई है। हाँ। उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा है।
1: अच्छा अच्छा,
0: आप विराजिए। हाँ।
2: प्रणाम दीदी।
3: जीते रहो चंद्र। कहो क्या बात है, तुम तो दो दिन बाद लौटने वाले थे, मन नहीं लग रहा तुम्हारा इस वैभव की नगरी में?
2: नहीं दीदी, दृश्य के नेपथ्य में कुछ ऐसा है जिसे समझ नहीं पा रहा हूँ और आत्म प्रवंचना स्वीकार नहीं। महामात्य की अधीरता, महादेवी का विषाद और आर्य त्रिलोचन के संबंध में आपकी व्यग्रता, कुछ तो है जो अबूझ है। दीदी, महाराज की अनुपस्थिति एक बड़ा प्रश्न है, अवंती का रहस्य। महाकाल के दर्शन कर लिए और सोचता हूं कि कल प्रातः लौट जाऊंगा। प्रश्न तो यह भी है कि भेषक त्रिलोचन और आपकी मुखाकृति में इतना साम्य क्यों है?
3: चंद्र, तुम थोड़ा सा उपहार ग्रहण करो, मुझे भी देवी वसुंधरा के पास औषधि लेने जाना है, मेरे साथ ही चलना।
2: आप देवी वसुंधरा से परिचित हैं दीदी?
3: मैं प्रायः उन सभी को जानती हूँ जिनसे महादेवी की भेंट होती है। क्यों?
2: सुंदर और सुशील तो होंगी।
3: होंगी क्या, निसंदेह हैं, किंतु तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो?
2: आर्य नागदत्त उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखते? देवी वसुंधरा उनके साथ हो तो उनके

0: देवी वयसिका, रथ द्वार पर प्रस्तुत है।
1: अच्छा अच्छा,
2: चंद्रसेन चलें।
1: चलिए दीदी, किंतु देवी मैं व्रती हूं, जीव पर आरूढ़ होना कल भूल हो गई थी, व्रत भंग का फल भी मुझे मिल गया।
2: तुम राजा के अतिथि हो, राज्य की मर्यादा तोड़ोगे? व्रत उपवास आदि आश्रम में एकांत के आचरण है, ये राजधानी है चंद्रसेन, चलो रथ पर बैठो।
1: अच्छा दीदी।
2: चलो सारथी, देवी वसुंधरा के आवास पर। लो आ गए हम चंद्रसेन, अब उतरो।
1: अरे
2: महामात्य तो यहाँ पहले से ही हैं, उनका रथ दिख रहा है।
1: हाँ।

0: अनुचरी आकर वैसिका को अतिथि कक्ष में बैठा देती है। महामात्य और देवी वसुंधरा वहां पर आसन ग्रहण किए हुए हैं। देवी वसुंधरा कहती हैं,
1: आओ आओ वैसिका, बैठो।
2: मैं ठीक हूं देवी, महादेवी ने मुझे आशा दिलाने के लिए भेजा है। मेरे साथ सेवाश्रम के ब्रह्मचारी चंद्रसेन आए हैं। आपके लिए उनके पास एक पत्र है, वे बाहर बैठे हैं।
1: ठीक है वैसिका।
3: वो ब्रह्मचारी तो राजकीय अतिथि गृह में ठहरा है ना?
2: उसने वो आवास छोड़ दिया है देव, अब आश्रम लौटना चाहता है।
1: ठीक है वैसिका, मैं राजमहिषी की औषधि लाती हूँ, तुम यहीं रुकना।
2: जी।
1: यदि चाहो तो आश्रम के पत्रवाहक को यहीं बुला लो।
0: ये कहकर देवी वसुंधरा औषधि लेने महालय के अंदर चली जाती हैं। महामात ने वैसिका से कहा,
3: आओ बैठ जाओ वैसिका। खड़ी क्यों हो?
2: धृष्टता होगी देव।
3: वैसिका
2: जी,
3: तुमसे कुछ कहने की इच्छा है। सोचता हूं और फिर रह जाता हूं। संकोच भी है और भय भी।
2: उज्जैनी के महामाते को भय? सहज विश्वास नहीं होता देव।
3: वैसिका, कभी कभी पद की प्रभुता भी भय का कारण होती है। ये 10 वर्षों से तुमसे कहना चाहता हूं किंतु आज तक कह नहीं पाया। वैसिका,
2: आज कह दें।
3: नरेश नगर में होते ना तो कदाचित कह डालता। उत्कटता से उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रयास करूंगा कि 10 वर्षों का भार उनके समक्ष ही उतार दूं।
2: कह देने से यदि भार उतरता हो तो निश्चिंत होकर मेरे सामने कह डालिए देव। वचन देती हूँ कि मैं किसी पर प्रकट नहीं करूंगी। प्रीत दासी इससे अधिक क्या विश्वास दिला सकती है?
3: तो सुनो वैसिका, चाहो तो हंस लेना। समझ लो कि मैं मां बात नहीं हूं। मैं तुम्हारे प्रति अनुरक्त हूं। क्या तुम्हें स्वीकार है वैसिका?
2: एक बात कहूं महामाते?
3: हाँ, कहो।
2: आपकी साहसहीनता ने 10 वर्ष यूं ही गवा दिए। आप समर्थ हैं, वैसे भी मुझे अपनी सेवा में ले सकते हैं।
3: हाँ, हाँ, महादेवी को स्वीकार होगा?
2: मैं बना लूंगी।
3: तुम वैसिका, तुम

महामात से लौटकर सीधे अपनी पीठिका पर जाकर बैठ जाते हैं। तीव्रतर हुई सांसों पर नियंत्रण पाते हुए मस्तक पर आया पसीना पहुंचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे भूकंप आ गया है, जिसमें ये भवन, ये दीवारें भर भरा कर गिर रही हैं।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का सातवां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार पद्म भंडारी, वैसिका प्रमिला दिवाकर, चंद्रसेन बद्रवास्ती, पहरुआ कमलेश जैमिनी, गोप विवेक सावरिकर मृदुल, वसुंधरा ज्योति केने, महामात्य अरशद इकबाल, संयोजक राकेश ढोंडियाल, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको याद होगा कि राजा भर्तृहरि महालय से पैठार गांव आ जाते हैं। वो पैठार छोड़कर जाना चाहते हैं, परंतु कुछ विपरीत परिस्थितियां उन्हें रोक लेती हैं। वे विपरीत परिस्थितियां क्या हैं? ये हम जानेंगे अगले भाग में।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर अपनी चर्चा की पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वर्ष 2027 युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान बेहतर शिक्षा, आधुनिक स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के नए अवसरों के साथ युवा सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जाएगा। मौसम विभाग ने आज गुना, श्योपुर, सतना, सिवनी, बालाघाट, राजगढ़ और बैतूल समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ

भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर के कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। श्राइन बोर्ड ने कटरा में फंसे तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क लंगर सहित व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु का मुकाबला महिला सिंगल्स के 32वें राउंड में अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का सामना 32वें राउंड में जापान के युशी तनाका से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी सखियों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी सखी निरंजना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज की तेज रफ्तार दुनिया में डिजिटल साक्षरता समय की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि शिक्षा, बैंकिंग, व्यापार और सरकारी सेवाओं का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल हो चुका है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस युग में बैंकिंग, शिक्षा और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए डिजिटल साक्षरता उतनी ही जरूरी है जितना कि सामान्य रूप से पढ़ना लिखना। अगर हमें डिजिटल रूप से सब काम करना आते हैं तो हम धोखाधड़ी से बच सकते हैं और UPI और नेट बैंकिंग के माध्यम से सुरक्षित लेनदेन कर सकते हैं। गाँव में रहने वाली महिलाएँ प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे माध्यमों से डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं। बदलते कार्यक्षेत्र में तकनीकी ज्ञान होने से नौकरी की भी अच्छी संभावनाएं बनती हैं। ईमेल भेजना, ऑनलाइन मीटिंग करना, डिजिटल माध्यमों से जुड़ना, अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखना, साइबर धोखाधड़ी से बचना, अपनी व्यक्तिगत जानकारी को निजी रखना आदि काम हम सरलता से कर सकते हैं। सखियों, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे भी डिजिटल माहौल में पल बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि कोडिंग और सोशल मीडिया जैसे विषय अब बच्चों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। विद्यालय में शिक्षक भी डिजिटल साक्षरता पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आज हर स्टूडेंट किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर निर्भर है। इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित, विश्वसनीय और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता उनकी शिक्षा और भविष्य के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सखियों, हम महिलाएं अपनी कला और हुनर को घर बैठे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर और अधिक निखार सकती हैं और अपने हुनर से परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग भी कर सकती हैं। तो सखियों, आप आज से ही अपनी छुपी हुई प्रतिभा को पहचानें और उसको डिजिटल माध्यम से एक नई पहचान दें।

0: सखियों, हम समय समय पर आपके लिए कहानी और वार्ताएं लेकर आते हैं। आज उसी कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं ये वार्ता, नशा नहीं नई दिशा चुने, नशा मुक्त भारत अभियान। इसकी वार्ताकार हैं शालिनी कुलश्रेष्ठ।
1: बहनों, मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ, जो न केवल एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के भविष्य का प्रश्न है। आज हमारी चर्चा का विषय है नशा नहीं नई दिशा चुनो। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं, और यदि नागरिक किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसके युवा होते हैं। यदि युवा स्वस्थ, शिक्षित और जागरूक होंगे तो देश निश्चित रूप से प्रगति करेगा। लेकिन यदि युवा नशे के गिरफ्त में आ जाए तो परिवार टूटते हैं, समाज भी कमजोर होता है और राष्ट्र का विकास प्रभावित होता है। सबसे पहले प्रश्न आता है कि नशा क्या है।

नशा वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति किसी ऐसे पदार्थ का बार बार सेवन करता है जो उसके शरीर और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है। शराब, तंबाकू, गुटखा।

पारिवारिक समस्याएं होती हैं, उनके लिए भी वो लोग नशा करने लग जाते हैं। बेरोजगारी, फिल्मों और सोशल मीडिया का प्रभाव और जिज्ञासा, ये इतनी सारी समस्याएं और कारण हैं जिसके कारण लोग नशा करने लग जाते हैं, जो धीरे धीरे आदत बन जाती है। नशा व्यक्ति के शरीर, मन, परिवार और समाज सभी को नुकसान पहुंचाता है। शारीरिक तौर पर भी इसका सबसे बुरा असर पड़ता है, जैसे हृदय, फेफड़े और लीवर यानी यकृत की गंभीर बीमारियों का होना, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आना, समय से पहले बुढ़ापा और मृत्यु का भी जोखिम बना रहता है। नशे का प्रभाव हमारे शारीरिक तौर पर ही नहीं, मानसिक रूप से भी हमें प्रभावित करता है। तनाव और चिंता का अवसाद, याददाश्त का कमजोर होना, निर्णय लेने की क्षमता का कम होना, चिड़चिड़ापन और हिंसक व्यवहार, ये व्यक्ति तभी करता है जब वो एक नशे का आदी हो जाता है। अगर हम इसके सामाजिक प्रभाव की भी बात करें तो नशे के कारण परिवार में कलह बना रहता है, घरेलू हिंसा होती है, बच्चों में भी आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, अवरोधों में भी वृद्धि होती है। व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करने लग जाता है तो उसको इतना नहीं ज्ञान होता और जिससे वो सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बनता है। शिक्षा और रोजगार पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। नशे का आदि व्यक्ति अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा नशे पर खर्च कर देता है। धीरे धीरे परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और पूरे परिवार का भविष्य खतरे में पड़ जाता। आज भारत विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है। आज समाज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से नशा एक बन चुका है। अब हमें यह समझना होगा कि नशा किसी समस्या का समाधान नहीं है। चाहे आपके साथ कितनी भी समस्याएं हों, लेकिन नशा करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जीवन में तनाव भी होते हैं, असफलताएं भी मिलती हैं, अकेलेपन से भी लड़ना होता है, लेकिन इन सब से बचने के लिए नशा नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन, सकारात्मक सोच, परिवार का सहयोग और अच्छे मित्रों का साथ आवश्यक। अब हमारे सामने यह भी प्रश्न आता है कि नई दिशा क्या हो सकती है। नई दिशा का अर्थ है जैसे शिक्षा को अपनाना। अगर सभी लोग शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति नशे की तरफ अग्रसर नहीं होगा। खेल और योग से जुड़ना, संगीत, कला और साहित्य जैसी रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में योगदान देना, समाज सेवा यानी लोगों की सहायता करना, लोगों के लिए खाने देना, अपने लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना। हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य होना चाहिए जिसे उसे पूरा करने में उसे बहुत मेहनत करनी चाहिए, जिससे उसका ध्यान कभी भटकने ना पाए और वो नशे की तरफ अग्रसर ना हो। यदि हर युवा अपने जीवन का उद्देश्य तय कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो नशे की तरफ जाए भी और सोचे। उसके जीवन में नशे का कोई स्थान ही नहीं रहेगा। समाज की भूमिका भी नशे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों के अच्छे मित्र बने, उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। घर का वातावरण अच्छा होता है और माता पिता में आपस में संबंध अच्छे होते हैं तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। विद्यालयों में समय समय पर जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। हमारी सरकार नशा मुक्ति के लिए बहुत सारे काम कर रही है, जैसे जन जागरूकता अभियान। सरकार समय समय पर नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान चलाती है कि हम नशा करने से कितना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, जिनमें स्कूल, कॉलेज, गांव और शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र संचालित किए जाते हैं जहां लोगों का उपचार और परामर्श दिए जाते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा नशा करते हैं उनको नशा मुक्ति केंद्र में भी थोड़े दिन रखकर उनका उपचार किया जाता है और उन्हें उससे मुक्त कराया जाता है। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी, बिक्री और सेवन पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून बनाए जाते हैं। शिक्षा और परामर्श के क्षेत्र में भी विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाती है, क्योंकि आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे भी नशा करने लग जाते हैं। लेकिन विद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी जाती है तथा सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। हेल्पलाइन और परामर्श सेवाएं दी जाती हैं। जरूरतमंद लोगों और उनके परिवारों को सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए परामर्श सेवाएं

0: हेल्पलाइन संचालित की जाती है। सामुदायिक भागीदारी भी हमारी सरकार करती है, जैसे सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर नशा मुक्त अभियान चलाती है। आइए हम सभी आज यह संकल्प लें कि मैं स्वयं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा या करूंगी, किसी को नशा करने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा या करूंगी। मैं अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को नशा मुक्त बनाने में सक्रिय योगदान दूंगी। इसके लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर कविता रखी है, नशा नहीं नई दिशा चुनो, जीवन को खुशियों से तुम बुनो, स्वस्थ तन हो निर्मल मन हो, हर चेहरे पर मधुर सधन हो, नशा छीन ले हंसी और सपने, तोड़ दे जी अपनों से अपने, क्षण भर का यह मीठा सुख, दे जाता जीवन भर का दुख, आओ मिलकर ले यह ठान, नशा मुक्त हो अपना हिंदुस्तान। धन्यवाद।
1: सखियों, अभी आपने सुनी ये वार्ता, नशा नहीं नई दिशा चुने, नशा मुक्त भारत अभियान। वार्ताकार थी शालिनी कुलश्रेष्ठ। वार्ता के बाद अब हम आपसे चर्चा करते हैं, बारिश में घर की बगिया की देखरेख कैसे करें। सखियों, गर्मी की तपन झेलने के बाद बारिश का मौसम आते ही हरी भरी बगिया हमारे मन को सुकून और खुशी से भर देती है, लेकिन इस समय हमारे पौधों की अच्छे से देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। बारिश के मौसम में पौधों को पानी तो भरपूर मिलता है, लेकिन जल भराव और धूप की कमी से पौधों में फंगस और कीड़े लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बगिया की सही देखभाल के लिए गमलों की जल निकासी को दुरुस्त रखें, ज़्यादा बारिश से नाजुक पौधों को बचाएं और जैविक खाद का ही उपयोग करें। हर गमले के नीचे बने ड्रेनेज होल को चेक करें ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकल जाए। अगर गमलों के नीचे पानी इकट्ठा करने वाली प्लेट्स लगी हैं तो उन्हें हटा दें, क्योंकि रुके हुए पानी में पौधों की जड़ें गल सकती हैं। अगर बहुत तेज बारिश हो रही हो तो नाजुक पौधों, छोटे पौधों और सब्जियों को प्लास्टिक शीट से ढक दें। अपने इंडोर पौधों को घर के अंदर ही रखें, लगातार बारिश उनके पत्तों को नुकसान पहुँचा सकती है। बारिश के पानी से मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं, इसलिए समय समय पर जैविक खाद और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें। बारिश के बाद मिट्टी की हल्की गुड़ाई करें ताकि जड़ों तक हवा पहुंच सके। सड़े हुए पत्तों और टहनियों को तुरंत काटकर हटा दें, क्योंकि नमी में इनसे फंगस फैलती है। कीड़ों और फंगस से बचाने के लिए पौधों पर नीम के तेल और पानी के मिश्रण का स्प्रे करें। और सखियों, अगर आप नए पौधे लगाना चाहती हैं तो ये मौसम उसके लिए बहुत अच्छा है। इस समय बेला, चमेली, कामिनी, गुड़हल, मैक्सिकन पिटूनिया, कनेर, चांदनी, अडेनियम, गुलाब, नागचंपा, जिरेनियम आदि लगा सकती हैं और अपनी बगिया को हरा भरा और सुंदर बना सकती हैं।

सखियों, अब हम गीत के बाद चर्चा करते हैं समय समय पर रूटीन हेल्थ चेकअप कितना जरूरी है। सखियों, हम अपने परिवार का ध्यान तो बहुत अच्छे से रखती हैं, लेकिन कई बार अपने शरीर में अनायास होने वाले बदलाव को हम नज़रअंदाज करती हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। कई बार शरीर में होने वाले कुछ सिम्टम्स हमें बीमारी का संकेत देते हैं, पर हम महिलाएं ये सोचकर उस पर ध्यान नहीं देती हैं कि हमें ऐसा लग रहा है, शायद हमने कल बहुत ज़्यादा काम किया था, शायद हम बहुत देर तक खड़े रहे थे तो थोड़ी परेशानी हो रही है। यही हम गलती करते हैं। हमें अपनी छोटी छोटी तकलीफ़ को भी सीरियसली लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि हमें समय रहते तकलीफ़ का पता लगे और हम इलाज करवा सकें। और सखियों, हमें अगर कोई परेशानी नहीं भी है तो भी हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए समय समय पर अपना रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए, ताकि कुछ बीमारियों जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को शुरुआती दिनों में ही पता लगाने में मदद मिले, जिससे उनका इलाज भी आसान और प्रभावी हो जाता है। रूटीन चेकअप में आमतौर पर ये जांचें होती है, ब्लड प्रेशर की जांच, खून से जुड़ी समस्याओं के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट, डायबिटीज़ की जांच के लिए ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की सेहत के लिए लिपिड प्रोफाइल, हार्मोनल संतुलन के लिए थायराइड आदि शामिल है। इस प्रकार सखियों, आप अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक और समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें, ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। और इसी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो अपनी सखी निरंजना को विदा लेने की अनुमति दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनिए आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा, प्रतिदिन शाम 7:20 से।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है। पहले सुनिए रतनलाल कुशवाहा और साथियों के स्वर में मल्हार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है। इसमें पहले सुनिए वैशाली मोघे के स्वर में भजन।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनिए प्रतिदिन आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, प्रतिदिन सुबह 7:20 से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

ये गीत था फिल्म सर से, जिसके लिए आवाज़ थी कुमार सानू की और संगीत दिया था अनु मलिक ने।

0: हाफ गर्लफ्रेंड इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना एश किंग साइशा तिरुपति की आवाज में, और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी

0: पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि सरकार पिछले 3 दिनों से चर्चा का प्रस्ताव दे रही है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी विपक्ष को चर्चा के एजेंडे पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया।
1: पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, यह सरकार चाहती है।
0: वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक हितों से बड़ा है। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन दिल्ली में छात्रों से मारपीट और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं दी, जिसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे। दिल्ली की घटना पर चर्चा की मांग को सत्तापक्ष ने यह कहकर नकार दिया कि ये मामला मध्य प्रदेश से बाहर का है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्रदेश में पुलिस नशे के अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न जिलों में पुलिस ने 82 लाख रुपए से अधिक के मादक पदार्थ और तस्करी में इस्तेमाल वाहन जब्त किए हैं। नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, शिवपुरी, इंदौर और नरसिंहपुर जैसे जिलों में पुलिस ने स्मैक और MD ड्रग्स के साथ कई आरोपियों को पकड़ा है। राज्य सरकार ने दतिया में विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में इस दिन मतदान होगा, इसलिए इसे सार्वजनिक और सामान्य अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए मुख्य अभियंताओं के 7 दलों ने भोपाल, जबलपुर और इंदौर सहित 7 जिलों में 35 निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। गुना और उज्जैन में 2 सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खराब मिलने पर संबंधित एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए। वहीं इंदौर में 1 छात्रावास की गुणवत्ता बेहतर मिलने पर संबंधित अधिकारियों की सराहना भी की गई। उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर की सावन माह की सवारी पहली सवारी 3 अगस्त को निकलेगी। इसकी तैयारियों को लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने सवारी मार्ग का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सड़क, बिजली और साफ सफाई से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और रामघाट क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने तथा जर्जर इमारतों के पास चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा आज लगातार 4थे दिन स्थगित रही। बालटाल और नुनवान के बेस कैंपों में ठहरे सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण माता वैष्णो देवी, शिवखोड़ी और मचैल माता यात्रा भी लगातार बंद रही। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और पिछले 36 घंटों में 35 से ज़्यादा जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज 15 जिलों में भारी और अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिवपुरी, गुना, सागर और डिंडोरी में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए 4 से 8 इंच तक बारिश की आशंका जताई गई है। राजधानी भोपाल में भी कल रात से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में 14 से 21 जुलाई तक चले दस्तक अभियान के तहत 5 साल तक के 5005 बच्चों की स्वास्थ्य जांच, 4480 बच्चों को विटामिन ए की खुराक और 4240 बच्चों को ORS के पैकेट बांटे गए। जबलपुर की 521 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से RO पेयजल प्लांट लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत बरेला के सालीवाड़ा गांव से की जाएगी। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत कल आगरमालवा जिले में विभिन्न विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और शिवपुरी में नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 8 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 26 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले

0: में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ओपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
4: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कदंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
5: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने आईएएसवी त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
6: In this era of volatility and disruption,
7: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत

0: और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं। इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
1: बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुरमुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
2: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार 4th दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन, प्रयागराज भट्ट। भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। आपने सुनना चाहा है फिल्म चश्मे बद्दूर का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है यशुदास हेमंती शुक्ला की और गीतकार हैं इंदु जैन और संगीत है राजकमल का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है हमारे इन श्रोता साथियों की। ये है रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश, ऋषि वर्मा, भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा। और ये साथी हैं धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, और ये जो साथी हैं ये हैं अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश, गुड़िया ठाकुर। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है अभिनेत्री का ये गीत, जिसकी आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आपकी फरमाइश में कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म चांदनी से, जिसके लिए आवाज़ है सुरेश वाटकर, अनुपमा देशपांडे की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है संगीत हरि का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं भोपाल से करुणा द्विवेदी, सीमा सपना गोयल, और इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी, मनन तान्या। बीड महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल। तो सुनवाते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद पर चांदनी फिल्म का ये गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, और खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मिति पंचोलिया, सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है 1942 अ लव स्टोरी, इस फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत है आर डी बर्मन का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है राजपुर मध्य प्रदेश से घीसु दिलवारे लक्ष्मी माधुरी सोनाली भगवान पुष्पा नेहा एकता अस्मिता सौरभ कुणाल दिलवारे और खुरई से राम सखी परमानंद सौरभ गौरव किशोरी बोस एलपी रोहित लल्लू राम पूरन रोहित और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म दहक का ये गीत जिसके लिए आवाज़ है हरिहरन साधना सरगम की गीतकार है श्यामराज और संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार नीट यूजी पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि सरकार पिछले 3 दिनों से चर्चा का प्रस्ताव दे रही है। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन दिल्ली में छात्रों से मारपीट और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं दी, जिसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे। प्रदेश में पुलिस नशे के अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न जिलों में पुलिस ने 82 लाख रुपये से अधिक के मादक पदार्थ और तस्करी में इस्तेमाल वाहन जब्त किए हैं। राज्य सरकार ने दतिया में विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को दतिया में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए मुख्य अभियंताओं के 7 दलों ने भोपाल, जबलपुर और इंदौर सहित प्रदेश के 7 जिलों में 35 निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा आज लगातार 4th दिन भी स्थगित रही। बालटाल और नुनवान के बेस कैंपों में ठहरे सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं और उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर की सावन माह की पहली सवारी 3 अगस्त को निकलेगी, जिसकी तैयारियों को लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने सवारी मार्ग का निरीक्षण किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपको बता दें आज शाम की सभा के कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5:02 पर सुनिए हमारी संध्याकालीन सभा में कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान होगा।

5:33 पर, 6:30 पर, रात 8:35 पर सुनिए फिल्म संगीत, और शाम 6 बजे सुनिए एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

8:30 पर होगी विधानसभा समीक्षा। 9:30 पर सुनिए चर्चा का विषय है, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात 10 बजे, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। और सात 7:21 पर सुनिए आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा। इसमें सुनिए भेंटवार्ता केला उत्पादन की उन्नत तकनीक डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ से। तो ये थी जानकारी हमारी शाम के सभा के कार्यक्रमों की। मीडिया वेव 1593 किलो हर्ट्स पर, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 3:02 हुए हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम की सभा में 5 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है। पहले सुनिए रतनलाल कुशवाहा और साथियों के स्वर में मल्हार।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है। पहले सुनिए वैशाली मोघे के स्वर में भजन।

0: डीटीएस के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।
1: मैं एनी, मामा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज़ और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

खामोशी द म्यूजिकल इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी अलका याग्निक हरिहरन की, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीत था जतिन ललित का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: हीरो नंबर वन इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थे उदित नारायण, पूर्णिमा के, गीतकार थे समीर और संगीत था आनंद मिलन का।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

प्यार तो होना ही था इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू की आवाज में। गीतकार थे विनोद महेंद्र और संगीत था जतिन ललित का।

0: समाप्त हुआ। डीटीएच की ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: सरकार ने बताया है कि देश भर में 162 वंदे भारत रेल सेवाएं चल रही हैं। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने यात्रा सुगम बनाने के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित की गई वंदे भारत रेलगाड़ियां शुरू की हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रदेश में पुलिस नशे के अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले तीन दिनों में विभिन्न जिलों में पुलिस ने 82 लाख रुपए से अधिक के मादक पदार्थ और तस्करी में इस्तेमाल वाहनों को जब्त किया है। प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए मुख्य अभियंताओं के 7 दलों ने प्रदेश के 7 जिलों जिसमें भोपाल, जबलपुर और इंदौर भी शामिल हैं 35 निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर की सावन माह की पहली सवारी 3 अगस्त को निकलेगी, जिसकी तैयारियों को लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने सवारी मार्ग का आज निरीक्षण किया। और FIH युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय सब जूनियर पुरुष और महिला टीमों का ओमान के मस्कट में एलीट पूल में शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुष टीम ने ओमान और पाकिस्तान को हराया है, जबकि महिला टीम का चीन के साथ मैच ड्रॉ रहा और उसने उज्बेकिस्तान को हराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: DTH के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

दोस्तों, अभी आप कव्वाल जानी बाबू से कव्वाली समात फरमा रहे थे और कलाम था फरीद टोंकी का। सामीन, एक जगह इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत उस्मान मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह से उनके एक मुरीद ने अर्ज किया, कभी कभी ऐसा होता है कि दिल की रगबत के बगैर भी मेरी जबान से अल्लाह ताला का जिक्र जारी रहता है। उन्होंने फरमाया, ये भी तो शुक्र का मकाम है कि तुम्हारे एक उज्व यानी जबान को अल्लाह ताला ने जिक्र की तौफीक बख्शी है, क्योंकि जिसका दिल अल्लाह ताला के जिक्र में नहीं लगता उसे बाज़ औकात शैतान वसवसा डालता है कि जब तेरा दिल अल्लाह ताला के जिक्र में नहीं लगता तो खामोश हो जा कि ऐसा जिक्र करना बेअदबी है। इस शैतानी वसवसे से बचना चाहिए। अल्लाह के नाम का विर्द और उसकी नेमतों का ध्यान इंसान के दिल से मायूसी और खौफ को मिटाता है। इंसान के दिल में यह यकीन पैदा होता है कि कायनात का हर जर्रा अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, जिससे नाउम्मीदी खत्म होती है, क्योंकि खुद अल्लाह के रसूल का ये मामूल था कि मुश्किलात और परेशानियों के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी तौर पर नमाज और जिक्र इलाही की तरफ मुतवज्जा हो जाते थे। दोस्तों, कसरत से इस्तग़फार करने से रिस्क की तंगी दूर होती है, मुसीबतें टलती हैं और वहां से मदद आती है जहां से इंसान का गुमान भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते हैं कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। जब बंदा मुसीबत में अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है।

एक आवाज जिसने बदल दिया वक्त का सफर, एक सुर जिसने जोड़े हर दिल से रिश्ते, और अब पूरा कर चुका है अपना गौरवशाली 90 साल का सफर। हाँ श्रोताओं, यह है आपका अपना आकाशवाणी। 90 वर्षों से हर दिल की आवाज।

0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है संग्रहालय से इस कार्यक्रम में कामिनी काय कांतारे की सातवीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित, प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का सातवां भाग।

अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महालय छोड़कर चले जाते हैं। मार्ग में वृक वन में एक अपरिचित उनके प्राणों की रक्षा करता है। उनके प्रिय अश्व नीलमणि को लेकर वो आचार्य नागदत्त के आश्रम में बांध देता है। अश्व नीलमणि ठीक हो जाता है। आचार्य नागदत्त नीलमणि को अवंती भेजने की व्यवस्था करते हैं। अब आगे।

0: राजा भर्तहरि का प्रिय अश्व नीलमणि अवंती आ जाता है। उसे आचार्य नागदत्त के आश्रम से चंद्रसेन लेकर आते हैं। चंद्रसेन को रानी पिंगला बुलाती है। चंद्रसेन महल के अतिथि गृह में बैठे हैं। रानी की सेविका वैसिका कहती है,
1: आपने तो मधुरव्य का स्पर्श भी नहीं किया ब्रह्मचारी।
2: देवी, आप वय में मुझसे बड़ी हैं, अतः आप नाम से पुकारें तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे चंद्रसेन कहते हैं।
1: इस भांति मैं भी देवी नहीं हूँ, मेरा संबोधन है वैसिका।
2: किंतु मैं आपका नाम नहीं लूंगा, दीदी कहूं तब क्या अधिक ठीक नहीं होगा? इस महानगर में मेरा कोई परिचित मित्र नहीं है। गोपाश्रम से मेरे साथ आया है, दो दिन के साथ में मैं उसे समझ ही नहीं पाया। वो भी सयात उतना ही मेरे प्रति अजनबी है। वो बाहर झांकना भी नहीं चाहता। अपने भोजन शयन सुविधा से निकलकर उसके लिए केवल अपना परिवार है।
1: सांसारिक व्यक्ति है, अपनी सीमाओं में जीता हुआ। अब तुम मुझे दीदी कहो या बहन, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। किंतु क्या तुम दासी और अनुचरी को बहन के रूप में स्वीकार कर पाओगे?
2: क्यों नहीं, मैं भी तो सेवक हूँ।
1: अंतर है ब्रह्मचारी, तुमने स्वयं सेवा का व्रत चुना है और मैं प्रय की गई सेविका हूँ, दासी, स्वामी के आदेशों से बाध्य।
2: तो आप मेरी दीदी बनना नहीं चाहती?
1: ऐसा तो मैंने नहीं कहा चंद्रसेन, पहले मुंह तो झूठा करो।
2: आपकी जिव्या से अपना नाम सुनकर मुझे सुख मिला। बहुत स्वादिष्ट है ये मधुरव्य, किंतु व्रती को सांसारिक सुख से बचना चाहिए, संयम बाधित होता है, सुख का परितोष क्रमशः व्यसन में बदल जाता है। पाने की इच्छा बलवती होती जाती है और न पाना दुख बन जाता है। पाने के लोभ में विचलन और उसके बाद अकरणीय का रूप ले लेती चेष्टाएं, ये पाप कर्म की प्रवृत्ति है दीदी।
1: बहुत ज्ञान की बातें करते हो चंद्रसेन।
2: नहीं दीदी, ज्ञान तो शास्त्रों में है, जहां उद्विग्नता क्लेश विकार से मुक्त होकर ही कुछ सीखा और समझा जा सकता है। ये तो मेरा अनुभव है। लीजिए, आपकी आज्ञानुसार मैंने जलपान कर लिया, अब आप मेरी एक याचना स्वीकार करेंगी?
1: भाई की बात तो माननी ही पड़ेगी। यदि असाध्य ना हो, संभव हो, करनीय हो।
2: कोई बड़ी बात नहीं है दीदी, मुझे महामात्य ने 5 स्वर्ण और 5 रजत मुद्राएं दी हैं। मेरे लिए उनकी कोई उपादेयता नहीं है। एक मुद्रा मैं गोप को देने वाला हूं, परिवार के लिए कुछ क्रय कर लेगा। शेष 4 स्वर्ण मुद्राएं आप रख लीजिए। लीजिए, मेरे किसी भी काम की नहीं है।
1: किंतु इन्हें मेरे पास क्यों रख रहे हो?
2: इसलिए कि आप मेरी दीदी हैं, आपके सिवा मेरा यहाँ कौन है।
1: अच्छा, रख लूंगी।
2: ये लीजिए।
1: तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है चंद्रसेन?
2: परिवार बहुत विशाल है मेरा परिवार दीदी। 20 कुष्ठरोगी, अनेक अशक्त, वृद्ध, बावरे और अनेक मूक जैसे सेवक, परिचारक, सेवाश्रम के कार्यकर्ता, आचार्य नागदत्त से मुझ तक लगभग 100 से अधिक सदस्य हैं मेरे परिवार में दीदी।
1: हो, 100 तो है, किंतु मैं तुम्हारे माता पिता के संबंध में पूछ रही थी। सेवाश्रम में कहां से पहुंचे हो?
2: आया तो गोपांचल से हूँ, ब्राह्मण के घर में जन्मा था। बाल्यकाल में माँ नहीं रही, उसकी धुंधली सी स्मृति है। और रहने दीजिए, किसी अन्य अवसर पर सब कुछ सुनाऊंगा।
1: ठीक है, ये मुद्राएं मेरे पास तुम्हारी धरोहर रहेंगी, जब चाहो ले लेना।
2: ठीक है दीदी।
1: कभी भी आ सकते हो, द्वार पर मेरा नाम लोगे तो प्रवेश मिल जाएगा।
2: बहुत अच्छा,
1: नाम स्मरण है ना मेरा, वैसिका दासी।
2: आपका नाम और छवि तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता दीदी, आपको देखते ही मुझे आश्रम के भेषज्ञ त्रिलोचन का स्मरण हो आया। आप दोनों की छवि में अद्भुत साम्य है।
1: त्रिलोचन, कौन है ये त्रिलोचन?
2: सेवाश्रम के भेषज्ञ हैं। मुझ पर उनका असीम स्नेह है, बिल्कुल लघु भ्राता मानते हैं मुझे।

0: त्रिलोचन, वह क्या होगी उनकी? कहां से आए हैं?
1: दीदी, आश्रम में किसी का कुल, ग्राम, गोत्र तथा देश जानने की प्रथा नहीं है। कोई स्वयं बता दे तो अलग बात है। वहां केवल दो ही भाव हैं, पीड़ा और सेवा। आश्रम वासियों को जोड़ने के लिए यही पर्याप्त है। हाँ, भेषज्ञ त्रिलोचन की वय मेरे अनुमान से वो मुझसे 5-7 वर्ष वरिष्ठ होंगे।
0: क्या तुम्हारे भेषज्ञ का वर्ण गंदूषी है?
1: हाँ, मुझसे कुछ उजला है।
0: क्या उनके बाएं कपोल पर क्षत का कोई चिन्ह है?
1: वो तो मुझे ज्ञात नहीं।
0: चंद्र,
1: दीदी,
0: एक काम करना, आश्रम के भेषज्ञ से उनका देशाकुल पूछना।
1: अच्छा,
0: यदि वो दक्षिणत्य कालाधर से हो तो किसी भांति उनके कपोल पर घाव की रेखा का चिन्ह देखने का प्रयत्न करना। यदि ये 3 संयोग मिल जाएं, तो उनसे पूछना कि क्या उन्होंने गोदावरी की जल यात्रा की है। त्रिलोचन की आंखों में कहीं अश्रु दिखाई दे तो तुरंत मुझे सूचना देना।
1: ये क्या दीदी, पहले मुझे रुलाई आई और अब तुम रोने लगी।
0: रो नहीं रही हूँ चंद्रसेन, अपनी आंखें धो रही हूँ कि कहीं कोई आशा की किरण दिखे तो उसे चीन तो सकूं। अच्छा, अब जाओ, उज्जैनी में दर्शन और भ्रमण करो।
1: जो
0: ये नगरी बड़ी मोहक है। और हाँ, लौटने से पहले भेंट करके जाना।
1: जो आज्ञा दीदी। प्रणाम दीदी।
0: प्रणाम।

0: वैसिका से भेंट करके चंद्रसेन नगर भ्रमण को निकल पड़ते हैं। रथ चालक उनसे कहता है कि महास्पद के बिना वो इन्हें रथ से नगर भ्रमण के लिए नहीं ले जा सकता है। नगर में उन्हें पहरुआ रोकता है।
1: ए, रुको, ए, रुको।
2: अरे
1: हाँ हाँ, तुम सही कह रहा हूं।
2: कौन हो तुम? कहां से आ रहे हो? यहां भीतर कैसे पहुंचे?
3: अरे भाई, हम महामात के अतिथि हैं।
2: तुम राजकीय अतिथिशाला में ठहरे हो?
3: हाँ, हम महाराज का अश्व लेकर आए हैं।
2: उसे जानते हैं?
3: अरे वो तो गोप है, मेरा सही यात्री।
4: बचाइए, बचाइए, बचाइए ब्रह्मचारी जी।
3: हाँ।
4: मुझे बचाए, इन लोगों ने मुझे निरुद्ध कर रखा है।
3: अरे
4: हम भांति भांति के प्रश्न करते हैं।
2: क्यों, ये तुम्हारे साथ है ये व्यक्ति?
3: हाँ भाई, हाँ आश्रम से भी साथ है। आओ गोप, आ जाओ।
4: हाँ हाँ हाँ,
2: ठीक है ठीक है। कहाँ जाना है?
3: नगर भ्रमण करना है, लेकिन सर्वप्रथम महाकाल के दर्शन करेंगे। अवंती के सनातन शासक तो वही हैं, शेष तो आते जाते रहते हैं।

0: भूलोके च महाकालौ लिंगत्रे नमोस्तुते।
1: किंतु आपने राजकीय वाहन नहीं लिया?
0: आवश्यकता नहीं है, पैदल चलने का स्वाभाविक अभ्यास है।
1: जी जी, जाइए जाइए जाइए।
0: गो चलो, तुम यहाँ कैसे आ गए?
2: ब्रह्मचारी जी,
0: हाँ
2: मैं एकाकीपन से ऊब रहा था, सोचा राजमहल ही देख लूं, अब यहाँ आने का अवसर कहाँ मिल पाता।
0: हाँ हाँ,
2: किंतु रक्षकों ने रोक लिया, राजमहल देख नहीं पाया।
0: वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, चिंता मत करो, मुझे अपना भाई स्वीकार किया है उन्होंने।
2: किसने? महारानी ने?
0: नहीं बंधु, प्रीति और विरोध समान से होना चाहिए। वहां महारानी की एक सेविका है।
2: अच्छा?
0: स्नेहशील और मितभाषी, उनकी छवि हमारे भेषज्ञ त्रिलोचन से बहुत साम्य रखती है। उन्होंने मुझे अपना भाई स्वीकार किया है, अब हम किसी भी समय महालय में आ जा सकते हैं।
2: हाँ।
0: किस ओर से महाकाल के लिए चलना है?
2: देव मंदिर की दूरी तो इधर से कम पड़ेगी।
0: अच्छा, चलो इधर से चलते हैं।
2: हाँ चलिए।

0: महाकाल की श्रद्धा के आकर्षण से आवश्ट वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तथा स्वतः प्रकाशित दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर अभिभूषित हो जाते हैं। बाहर निकलते हुए चंद्रसेन कहता है,
1: देख रहे हो बंधु गो, कैसा अनिर्वचनीय आनंद है भगवान शिव के सानिध्य में। जैसे काल और जगत की गति ही ठहर गई हो, न उत्पत्ति है और न विनाश, केवल शांति ही शांति, चिरंतन शांति, अनुभवातीत शांति। ओम नमः शिवाय।
2: अब वो तो है, किंतु आप तो जैन है ब्रह्मचारी।
1: जैन हूं नहीं, होना चाहता हूं। वैसे आसान नहीं है जैन होना, वो एक चर्या है, विचार है, व्रत है। सो मैं एक व्रती मात्र होना चाहता हूं। महाकाल से आशीष चाहा था मैंने कि मेरा व्रत सफल हो, किंतु उनके सामने कुछ भी स्मरण नहीं रहा। स्तुति के श्लोक तक विस्मृत हो गए। महाकाल का प्रभाव, सम्मोहन, जैसे माया संपन्न हो गई हो।
2: ब्रह्मचारी जी, धूप तो तीखी होने लग गई है।
1: हाँ सो तो है, कहीं विश्राम करें क्या?
2: हाँ ऐसा कीजिए, आप उन वृक्षों की छाव में ठहरें।
1: अच्छा अच्छा,
2: मैं तो अपने एक परिचित वणिक के यहाँ जाता हूँ।
1: हाँ ठीक है। गोप, यहाँ से अतिथिशाला कितनी दूर है?
3: लगभग आधा कोस। यदि मुझे लौटने में देर हो जाए तो प्रतीक्षा न करें ब्रह्मचारी।
1: हाँ हाँ,
3: देखिए हाँ। आगे चौक से मुड़कर आप वहां पहुंच जाइए।
1: ठीक है,
3: मैं वहीं आ जाऊंगा।
1: अच्छा,
3: जाता हूँ।
1: ठीक है, जाओ जाओ।

0: राजमहल के द्वार पर चहल पहल हो रही है। सभी चिंतित हो रहे हैं कि चंद्रसेन और गोप कहां गए हैं। चंद्रसेन को देखकर कुमारास्पद पूछते हैं कि आप कहां हो? आपके लिए रथ और शिविका की व्यवस्था तो थी। इसका चंद्रसेन उत्तर देते हैं,
1: आप नहीं थे व्यवस्था के सूत्रधार। यह समझकर मैंने अपना निर्णय स्वयं ले लिया। अब हम यहां नहीं रहेंगे। देवी वसुंधरा तक आर्य नागदत्त का पत्र पहुंचाना है, तो किसी से पूछकर उन तक पहुंच जाएंगे। जाने से पहले वैसिका दीदी से विदा लेना है। आप हमारी चिंता छोड़िए। हमारे कारण आपको जो असुविधा हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें बंधु।
0: कुमारास्पद से विदा लेकर चंद्रसेन महालय की ओर प्रस्थान करते हैं।
2: किधर जा रहे हो ब्रह्मचारी?
1: हम
2: कौन हो तुम? यह राजपथ है, महालय का मार्ग।
1: हमें वहीं तो जाना है विदा लेने।
2: किससे विदा लोगे?

0: देवी व्यासिका से।
1: ठहरो, तुम संदेह जागृत कर रहे हो।
0: भाई, ब्रह्मचारी के पास छुपाने के लिए क्या है?
1: ओह, क्षमा करें ब्रह्मचारी, आप ही हैं जिन्हें देवी व्यासिका ने अबाध आने की अनुमति दे रखी है।
0: हाँ भाई,
1: आइए ब्रह्मचारी जी।

0: देवी वयस्का तक सूचना पहुंचा दी गई है।
1: हाँ।
0: उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा है।
1: अच्छा अच्छा,
0: आप विराजिए।
1: हाँ।
2: प्रणाम दीदी।
3: जीते रहो चंद्र। कहो क्या बात है, तुम तो दो दिन बाद लौटने वाले थे, मन नहीं लग रहा तुम्हारा इस वैभव की नगरी में?
2: नहीं दीदी, दृश्य के नेपथ्य में कुछ ऐसा है जिसे समझ नहीं पा रहा हूँ और आत्म प्रवंचना स्वीकार नहीं। महामात्य की अधीरता, महादेवी का विषाद और आर्य त्रिलोचन के संबंध में आपकी व्यग्रता, कुछ तो है जो अबूझ है। दीदी, महाराज की अनुपस्थिति एक बड़ा प्रश्न है, अवंती का रहस्य। महाकाल के दर्शन कर लिए और सोचता हूं कि कल प्रातः लौट जाऊंगा। प्रश्न तो यह भी है कि बेशक त्रिलोचन और आपकी मुखाकृति में इतना साम्य क्यों है?
3: चंद्र, तुम थोड़ा सा उपहार ग्रहण करो, मुझे भी देवी वसुंधरा के पास औषधि लेने जाना है, मेरे साथ ही चलना।
2: आप देवी वसुंधरा से परिचित हैं दीदी?
3: मैं प्रायः उन सभी को जानती हूँ जिनसे महादेवी की भेंट होती है। क्यों?
2: सुंदर और सुशील तो होंगी।
3: होंगी क्या, निसंदेह हैं, किंतु तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो?
2: आर्य नागदत्त उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखते? देवी वसुंधरा उनके साथ हो तो उनकी चिंता कुछ हल्की हो जाएगी।
3: संसार भर की चिंताएं तो तुम्हें हैं चंद्रसेन। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ।

0: देवी वयसिका, रथ द्वार पर प्रस्तुत है।
1: अच्छा अच्छा,
2: चंद्रसेन चलें।
1: चलिए दीदी।
0: किंतु देवी, मैं व्रती हूं, जीव पर आरूढ़ होना कल भूल हो गई थी, व्रत भंग का फल भी मुझे मिल गया।
2: तुम राजा के अतिथि हो, राज्य की मर्यादा तोड़ोगे? व्रत उपवास आदि आश्रम में एकांत के आचरण है, ये राजधानी है चंद्रसेन, चलो रथ पर बैठो।
1: अच्छा दीदी।
2: चलो सारथी, देवी वसुंधरा के आवास पर। लो, आ गए हम चंद्रसेन, अब उतरो। अरे महामाती तो यहाँ पहले से ही हैं, उनका रथ दिख रहा है।

0: अनुचरी आकर वैशिका को अतिथि कक्ष में बैठा देती है। महामात्य और देवी वसुंधरा वहां पर आसन ग्रहण किए हुए हैं। देवी वसुंधरा कहती हैं,
1: आओ आओ वैशिका, बैठो।
2: मैं ठीक हूं देवी, महादेवी ने मुझे औषधि लाने के लिए भेजा है। मेरे साथ सेवाश्रम के ब्रह्मचारी चंद्रसेन आए हैं। आपके लिए उनके पास एक पत्र है, वे बाहर बैठे हैं।
1: ठीक है वैशिका।
3: वो ब्रह्मचारी तो राजकीय अतिथि गृह में ठहरा है ना?
2: उसने वो आवास छोड़ दिया है देव, अब आश्रम लौटना चाहता है।
1: ठीक है वैशिका, मैं राजमहिषी की औषधि लाती हूँ, तुम यहीं रुकना।
2: जी।
1: यदि चाहो तो आश्रम के पत्रवाहक को यहीं बुला लो।
0: ये कहकर देवी वसुंधरा औषधि लेने महालय के अंदर चली जाती हैं। महामात ने वैशिका से कहा,
4: आओ बैठ जाओ वैशिका। खड़ी क्यों हो?
2: धृष्टता होगी देव।
4: वैशिका
2: जी,
4: तुमसे कुछ कहने की इच्छा है। सोचता हूं और फिर रह जाता हूं। संकोच भी है और भय भी।
2: उज्जैनी के महामाते को भय? सहज विश्वास नहीं होता देव।
4: वैशिका, कभी कभी पद की प्रभुता भी भय का कारण होती है। ये 10 वर्षों से तुमसे कहना चाहता हूं किंतु आज तक कह नहीं पाया। वैशिका,
2: आज कह दें।
4: नरेश नगर में होते ना तो कदाचित कह डालता। उत्कटता से उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रयास करूंगा कि 10 वर्षों का भार उनके समक्ष ही उतार दूं।
2: कह देने से यदि भार उतरता हो तो निश्चिंत होकर मेरे सामने कह डालिए देव। वचन देती हूँ कि मैं किसी पर प्रकट नहीं करूंगी। प्रीत दासी इससे अधिक क्या विश्वास दिला सकती है?
4: तो सुनो वैशिका, चाहो तो हंस लेना। समझ लो कि मैं मां बात नहीं हूं। मैं तुम्हारे प्रति अनुरक्त हूं। क्या तुम्हें स्वीकार है वैशिका?
2: एक बात कहूं महामाते?
4: हाँ, कहो।
2: आपकी साहसहीनता ने 10 वर्ष यूं ही गवा दिए। आप समर्थ हैं, वैसे भी मुझे अपनी सेवा में ले सकते हैं।
4: महादेवी को स्वीकार होगा?
2: मैं बना लूंगी।
4: तुम वैसे का

महामात्य लौटकर सीधे अपनी पीठिका पर जाकर बैठ जाते हैं। तीव्रतर हुई सांसों पर नियंत्रण पाते हुए मस्तक पर आया पसीना पहुंचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे भूकंप आ गया है, जिसमें ये भवन, ये दीवारें भरभराकर गिर रही हैं।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का सातवां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार पद्म भंडारी, वैसिका प्रमिला दिवाकर, चंद्रसेन बद्रवास्ती, पहरुआ कमलेश जैमिनी, गोप विवेक सावरिकर मृदुल, वसुंधरा ज्योति केने, महामात्य अरशद इकबाल, संयोजक राकेश ढोंडियाल, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको याद होगा कि राजा भर्तृहरि महालय से पैठार गांव आ जाते हैं। वो पैठार छोड़कर जाना चाहते हैं, परंतु कुछ विपरीत परिस्थितियां उन्हें रोक लेती हैं। वे विपरीत परिस्थितियां क्या हैं? ये हम जानेंगे अगले भाग।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक कामिनी काये कांतारे की सातवीं कड़ी। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले, इसे लेकर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार ने सोशल मीडिया पर दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु होने के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। इकाई ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी की मृत्यु होने की कोई खबर नहीं है। सरकार ने बताया है कि देश भर में 162 वंदे भारत रेल सेवाएं चल रही हैं। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वंदे भारत रेलगाड़ियां शुरू की। राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि इस प्रदर्शन में शामिल हुए। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने टीटी नगर स्टेडियम में बरखेड़ा नाथू स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सभी कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 5:02 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

तिरंगे की हर लहर में भारत की शान है, इसके हर रंग में बसता हिंदुस्तान है। और जब आकाशवाणी की मधुर आवाज गूंजती है तो हर दिल कह उठता है, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। आइए इन दो अमूल्य धरोहरों को नमन करते हुए शुरू करते हैं आज की युववाणी कार्यक्रम को। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को सौम्या शिंदे का सादर नमस्कार। हर बार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं कुछ खास बातें, कुछ नई जानकारियाँ और ऐसे विचार जो हमने अपने देश, समाज और स्वयं को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। आज का कार्यक्रम दो विशेष अवसरों को समर्पित है। पहला है राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस, और चूंकि हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की पूर्व संध्या पर आपसे रूबरू हैं, इसलिए आइए इस स्वर्णिम अवसर पर भारतीय प्रसारण की उस प्रेरणादायक यात्रा का भी स्मरण करें जिसने दशकों से देश की आवाज़ बनकर करोड़ों दिलों को जोड़ा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा तिरंगा स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ दिन पहले ही भारत की संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगा केवल एक झंडा नहीं है, यह हमारे देश की पहचान, हमारे संघर्ष, हमारे बलिदानों और हमारे सपनों का प्रतीक है। तिरंगे का केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति और सत्य का संदेश देता है। हरा रंग समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है। बीच में बना अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। जब भी तिरंगा हवा में लहराता है तो करोड़ों भारतीयों के हृदय गर्व से भर जाते हैं। सोचिए, सीमा पर तैनात सैनिक जब तिरंगे को सलाम करते हैं तो उनके मन में देश के लिए कितना प्रेम और समर्पण होता होगा। तिरंगे का सम्मान करना केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारा सौभाग्य भी है। आज के युवाओं को यह समझना चाहिए कि देशभक्ति केवल नारों तक सीमित नहीं है। अपने काम को ईमानदारी से करना, समाज के प्रति जिम्मेदार रहना और देश की प्रगति में योगदान देना भी सच्ची देशभक्ति है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने का श्रेय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। उनके अथक प्रयासों ने ही हमें यह गौरवशाली ध्वज दिया। आज यदि हम तिरंगे के सम्मान की बात करते हैं तो हमें अपने देश के सम्मान की भी बात करनी चाहिए। इसी गर्व और सम्मान की भावना के साथ सुनते हैं एक प्रेरणादायक गीत।

गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार तिरंगा हमारे देश की पहचान है, उसी प्रकार रेडियो देश की आवाज रहा है, और यहीं से जुड़ता है हमारा अगला विषय, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई 1927 का दिन भारतीय संचार इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसी दिन पहली बार देश में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के माध्यम से रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई। बाद में यही सेवा विकसित होकर आकाशवाणी के रूप में पूरे देश की आवाज बनी। सोचिए, उस समय न मोबाइल थे, न इंटरनेट और न ही सोशल मीडिया, फिर भी रेडियो लोगों को समाचार, संगीत, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने का

रेडियो प्लेटफॉर्म आज भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। रेडियो की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सीधे दिल से जुड़ता है। आवाज़ में एक अलग जादू होता है। कभी कभी एक अच्छी आवाज़, एक अच्छी बात और एक सकारात्मक संदेश किसी व्यक्ति का पूरा दिन बदल सकता है। रेडियो हमें अच्छी बातचीत की कला सिखाता है। दोस्तों, जब हम प्रसारण की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण विषय सामने आता है, संवाद कौशल। अच्छी बातचीत केवल बोलना नहीं बल्कि सही तरीके से अपनी बात पहुंचाना है। आज बहुत से युवा प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन अपनी बात प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते। यदि आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो कुछ आसान आदतें अपनाइए। सबसे पहले, रोज़ कम से कम 10 मिनट ज़ोर से पढ़िए। दूसरा, बोलते समय जल्दीबाजी ना करें। तीसरा, सामने वाले की बात ध्यान से सुने। और चौथा, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। याद रखिए, प्रभावशाली व्यक्तित्व की शुरुआत प्रभावशाली संवाद से होती है। आइए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हमें अपने सपनों को पहचानने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

स्वागत है एक बार फिर। दोस्तों, आज का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि अवसर बनाने वाला युवा है। लेकिन सफलता केवल ज्ञान से नहीं आती, सफलता के लिए आत्मविश्वास, संवाद कौशल और सकारात्मक सोच भी उतनी ही आवश्यक है। चलिए हम आपको कुछ ज़रूरी टिप्स दिए देते हैं। यदि आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन बातों को अपनाने का प्रयास करें। प्रतिदिन समाचार सुने या पढ़ें, प्रतिदिन एक नया शब्द सीखें, अपनी मातृभाषा और हिंदी दोनों पर अच्छी पकड़ बनाएं, मोबाइल पर समय कम व्यतीत करें और या उसकी जगह कुछ नया सीखें, अपने विचार लिखने की आदत डालें, आईने के सामने बोलने का अभ्यास करें, अच्छे वक्ताओं और रेडियो प्रस्तुतकर्ताओं को सुने, अपने लक्ष्य को लिख कर रखें। याद रखिए, आत्मविश्वास अचानक नहीं आता, यह छोटी छोटी आदतें इसी को विकसित करती हैं। आज कई युवा पॉडकास्ट, यूट्यूब, एंकरिंग, रेडियो जॉकी और कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में शानदार कार्य कर रहे हैं। यदि आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी सोच सकारात्मक है और आप कुछ लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो यह क्षेत्र आपके लिए सुनहरा अवसर बन सकता है। यहाँ तक कि आज डिजिटल युग में बेहद आवश्यक है जिम्मेदार संवाद। आज सोशल मीडिया ने संवाद को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांचें। ऑनलाइन बातचीत में शिष्टाचार बनाए रखें, नफरत फैलाने वाले संदेशों से दूर रहें, ऐसी सामग्री साझा करें जो समाज में सकारात्मकता बढ़ाए। याद रखिए, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक अच्छा शब्द किसी को प्रेरित कर सकता है और एक गलत शब्द किसी का मन दुखा सकता है, इसलिए बोलने से पहले सोचें और लिखने से पहले समझें। इसी सुंदर संदेश के साथ सुनते हैं एक गीत।

यदि हम तिरंगे का सम्मान करें, अपने कर्तव्यों को समझें और सकारात्मक संवाद को अपनाएं, तो हम देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमें एकता का संदेश देता है और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमें संवाद की शक्ति का महत्व समझाता है। इन दोनों अवसरों से हमने यही सीखा कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए पहचान भी ज़रूरी है और संवाद भी। आपसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चलता दोस्तों। आशा है कि आज का यह विशेष कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस तथा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस से जुड़ी जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। अपने तिरंगे का सम्मान करें, अपनी आवाज़ का सदुपयोग करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं सौम्या शिंदे आपसे लेती हूँ विदा। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।

आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे कुछ ही देर बाद।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी

0: नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
2: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
3: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
2: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
3: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
2: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
3: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
2: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
1: ए भाई, जरा देख के चल।

0: याद रखो हमारी बात,
1: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
0: जंगल है धरती का गहना,
1: सदा इसकी रक्षा करना,
0: होगी जो धरती पर हरियाली,
1: चहुं ओर फैलेगी
0: खुशहाली।
2: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक था टाइगर से। सुखविंदर सिंह की आवाज में सुनिए नीलेश मिश्रा का लिखा यह गीत, जिसे संगीत दिया है सोहेल सेन ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म जन्नत 2 से। संजय मासूम के लिखे इस गीत को आवाज़ दी है राहत फतेह अली खान ने और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। फिल्म इशकजादे का गीत अभी आपने सुना, जावेद अली और श्रेया घोषाल की आवाज़ें थी। कौसार मुनीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं, फिल्म जोड़ी ब्रेकर्स से शफकत अमानत अली और क्लिंटन कैरेजो की आवाज़ें हैं। इरशाद कामिल की शब्द रचना और संगीत है सलीम सुलेमान का।

श्रोताओं, फिल्म जोड़ी ब्रेकर्स के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जन जन की बात 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान आज स्कोपजे शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भारत के थे, लेकिन सत्य और अहिंसा का उनका संदेश समस्त मानवता का है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले, इसे लेकर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने सोशल मीडिया पर दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु होने के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जाँच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। इकाई ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी की मृत्यु नहीं हुई है। सरकार ने बताया है कि देश भर में 162 वंदे भारत रेल सेवाएं चल रही हैं। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वंदे भारत रेलगाड़ियां शुरू की हैं। राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि इस प्रदर्शन में शामिल हुए और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राव।

0: राहुल रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने लिखते हैं,
1: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का लिखते हैं,
1: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
1: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
0: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
1: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
1: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
0: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
1: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
0: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
1: जी,
0: कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
1: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
0: जी,
1: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
0: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
1: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
0: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
1: जी,
0: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
1: जी,
0: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
1: जी
0: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है जिसे मोरुंग कहते हैं।
1: जी,
0: ये मोरुंग होता क्या है?
1: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
0: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
1: जी, यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
0: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
1: जी,
0: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
1: जी,
0: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
1: जी,
0: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्य।

0: कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
1: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
3: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
2: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
4: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
3: जी मालिक, ये बात तो है।
4: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहाँ की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
3: जी मालिक, कोशिश करता हूँ। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
4: अच्छा,
3: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 सेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
4: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
3: जी मालिक।
2: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
3: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
4: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
2: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
3: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा, मेरी प्यारी सुंदरिया।
2: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
4: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
3: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दोहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
4: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
3: जी सेठ जी।
2: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
4: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
3: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
4: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
2: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया? एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी

0: मेरा वहाँ मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ। मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
1: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, अब मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
1: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
2: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं उनका क्या होगा?
1: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
0: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
1: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
0: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था। कहने लगे,
2: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अरे, तुमसे यहां मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
1: जी सेठ जी।
2: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले आपसे मिलने जरूर आना।
1: धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओं, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
4: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
5: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
4: मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ये कहानी शिलोंग की है।
5: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलोंग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
6: यहीं कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की।

0: दुकान। उसके बाद हाँ वो रही।
1: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
2: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
1: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
2: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
0: हाँ यहां से अंदर चलता हूं। अरे वाह कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीस भी हैं। आजा आजा।
1: उसने कई बार अपने घर में कहा था वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
2: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है। अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
1: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
0: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
0: मेरा नाम यूजीन है। मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
0: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
0: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
0: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना। तो
0: नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ। मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
0: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
0: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे। आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। समझो मेरी बात, वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
0: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा। अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
4: हाँ हाँ अभी लाता है, बस एक मिनट।
2: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
1: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे, लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
5: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो। तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
4: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है। अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश, वापिस चलो।
0: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा, इधर आ।
5: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
0: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
5: हैं? अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
0: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
5: अरे बेटा, कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
0: क्या?
5: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
0: मैडम, मैं खरीदूंगा इसे, मैं ऐसे ही खरीदूंगा।
5: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
0: मुझे यही चाहिए।
5: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
0: नहीं।
5: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
0: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
5: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
0: यूं ही?
5: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
0: क्या मतलब? अगर इसकी टांगें खराब हैं तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
5: अच्छा, समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
0: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना। इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
5: पर बेटा ये तो
0: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
5: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए, मेरा मतलब है कि।
0: तो यही इसकी कीमत भी है, अब ये रहे 1500 रुपए। और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त, है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
5: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
0: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था। नीचे का आधा पैर कृत्रिम था। वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
3: अरे बेटा, ये तुम्हारा...
0: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं, मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
3: अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस...
0: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
3: बेटा।
0: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
3: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो।
0: आजा।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
9: अभी आपने सुना NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में सबसे पहले आइए सुनते हैं फिल्म मुझसे शादी करोगी का ये गीत।

श्रोताओं, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म मुझसे शादी करोगी से। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया था अन्नू मलिक ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं फिल्म लंदन ड्रीम्स से। शंकर महादेवन की आवाज़, प्रसून जोशी के लिखे बोल और संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: मन को अति भावे, मन को अति भावे सैया।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का।

श्रोताओं, शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना फिल्म कृष्णा कॉटेज से। संजय छेल के लिखे इस गीत को संगीत दिया था अन्नू मलिक ने। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, विशाल ददलानी, श्रुति पाठक और एक ऑन की आवाज़ों में, फिल्म रावण से। इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म काल से। सोनू निगम, कुणाल गांजावाला और साथियों की आवाज़ें हैं। शब्बीर अहमद के लिखे बोल और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

सोनू निगम, कुणाल गांजावाला और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना फिल्म काल से। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है।

0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: बधाई हो दत्ता, बहुत बहुत बधाई हो। बिटिया जन्मी है, घर में लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई हो।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनिटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बना वे आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
3: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान

0: किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट प्रदान करना है। लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स मुकाबले में आज सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे केला उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ की भेंटवार्ता। रात्रि 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे सांसद समीक्षा। कार्यक्रम सुर्खियों में का प्रसारण रात्रि 8:15 पर किया जाए। रात्रि 8:30 पर सुनिए विधानसभा समीक्षा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:35 पर। कार्यक्रम चर्चा का विषय है का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। रात्रि 10:00 सुनिए रेडियो नाटक सफेद भेड़िया। इसके लेखक हैं हाशिम अस सादिक और प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढूंढियाल। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज आप सुनेंगे अरविंद जोशी का बिहाग राग पर सितारवादन। श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी गुरुवार 23 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए सुबह 9:02 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रा सिंह द्वारा गाई गजलें। 9:30 पर सुनिए सादत हसन मंटो का लिखा और राकेश ढोंडियाल द्वारा प्रस्तुत रेडियो नाटक जेब कतरा। सुबह 10:05 पर सुनिए फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण 10:30 पर किया जाएगा। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत होगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे सुबह 11 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण दोपहर 12 बजे और 2:30 पर किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक कामिनी काए कांतारे का 8वां अंक आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 बजे सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर के योगदान से प्रसारित होंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2 बजे, शाम 5:33, 6:30, रात्रि 8:35 और 9:30 पर। शाम 6 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। रात्रि 8 बजे सुनिए संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से, 8:15 पर कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:30 पर सुनिए विधानसभा समीक्षा। और संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण रात्रि 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपजे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं के प्रति संवेदनशील, विद्यार्थियों के हर मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में हंगामा, 3 महत्वपूर्ण विधेयक हुए पारित और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय। 24 घंटे में प्रदेश के 35 से ज्यादा जिलों में बारिश, नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा पानी बरसा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान आज स्कोपजे शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भारत के थे लेकिन सत्य और अहिंसा का उनका संदेश समस्त मानवता का है। राष्ट्रपति ने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार नीट UG पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि सरकार पिछले 3 दिनों से चर्चा का प्रस्ताव दे रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी विपक्ष को चर्चा के एजेंडे पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक हितों से बड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के हर मुद्दे को सुनने और सुलझाने के लिए तैयार है।
4: और यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शनों और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्त

0: किया गया है, जिससे डीजल की खपत में भारी कमी आई है और कार्बन उत्सर्जन भी घटा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। ये मार्च कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के पास किए गए धरने के विरोध में था, जो भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रेडक्रॉस अस्पताल से कांग्रेस कार्यालय तक निकले हुए मार्च में शामिल हुए। पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के पास बैरिकेडिंग कर मार्च को रोक लिया। श्री खंडेलवाल ने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के जरिए पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और घुमंतू जनजातियों के छात्रों को शिक्षा में मदद देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इस योजना के तहत 4 छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के छात्रों को कवर करते हैं। लोकसभा में सामाजिक न्याय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बताया कि इस योजना का मकसद पात्र छात्रों को आर्थिक कठिनाइयों के बिना अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद करना है। प्रदेश में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की निगरानी के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति बनाई है, जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त उपाध्यक्ष होंगे और कई विभागों के सचिव सदस्य रहेंगे। ये समिति योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी और जिलों को समय पर बजट दिलाएगी। समिति प्रदेश के चयनित 8 जिलों में उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी मदद करेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जुलाई 2026 प्रवेश सत्र के लिए नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष और अगले सेमेस्टर के विद्यार्थी भी अब 31 जुलाई तक ऑनलाइन पुनः पंजीकरण कर सकेंगे। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र भोपाल की उप निदेशक स्मृति गर्गव ने बताया कि प्रवेश और पुनः पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उन्होंने ये भी बताया कि इग्नू 350 से अधिक रोजगारोन्मुखी शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित कर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ उच्च शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों पर प्रदेश में किसानों के लिए हर विधानसभा में कम से कम एक कृषि यंत्र किराए की दुकान खोली जाएगी। अभी राज्य में ऐसे 5,260 केंद्र चल रहे हैं। अब हर साल 1,060 नई दुकानें खोली जाएंगी, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को खेत तैयार करने में आधुनिक मशीनें आसानी से मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ विदिशा में करीब 150 इकाइयां ग्रेडर, कल्टीवेटर, प्लाऊ जैसे यंत्र बना रही हैं। ये यंत्र नाइजीरिया, सूडान, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देशों को भी भेजे जा रहे हैं। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मानसून के पहले और मानसून के दौरान बारिश के जल के संचय को बढ़ावा देना है। इस अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं सहेजें। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों के जीर्णोद्धार तथा रिचार्ज पिट और चेकडैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश में इन दिनों बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 15 जुलाई को इंदौर से इसका आगाज किया था। ये महोत्सव 13 नवंबर तक प्रदेश के सभी 55 जिलों में चलेगा, जिसके तहत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने महोत्सव की शुरुआत में किसानों को दिन में बिजली देने की घोषणा भी की थी। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। आज राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाए जाने की वर्षगांठ है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। तिरंगा स्वतंत्रता, एकता और लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर देश भर में तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को याद किया गया। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 35 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में हुई, जहां पर 4.2 इंच पानी बरसा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24-48 घंटों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान के तहत खंडवा पुलिस ने जिला मुख्यालय स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में NGO लॉयंस क्लब के सहयोग से नशा मुक्ति जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया। गुना में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में निजी कंपनियों द्वारा 383 से ज्यादा युवाओं का प्रारंभिक जॉब चयन किया गया। उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह ने

मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सिद्धपीठ माँ बगला दिखी बगलामुखी देवी मंदिर का दौरा कर प्रस्तावित देवी लोक निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैतूल कलेक्टर ने ग्राम पंचायत रगड़ गांव पहुंचकर सीधे ग्रामीणों से मुलाकात की और अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित एवं समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। शिवपुरी के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में करगिल विजय दिवस और सेवा सुशासन के 12 वर्षों पर केंद्रित 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 23 जुलाई यानी कल यशवंतपुर बेंगलुरु से कोटा के लिए एक तरफा स्पेशल ट्रेन 06591 चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी और भोपाल स्टेशनों से होकर गुजरेगी। वहीं भारतीय खेल प्राधिकरण SAI साई भोपाल के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के प्रतिभाशाली गोलकीपर मोहित HS का चयन FIH सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में किया गया है। हॉकी विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान कार्यक्रम सुनने वाले अपने सभी भैया बहनों को स्वाति बहन की राम राम। देखो भैया रो सभी चाहते हैं कि सब खुश रहें और अच्छे से स्वस्थ रहें और अपने जितने भी काम काज हैं बेहतर तरीके से करें, लेकिन इन सब के लाने सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि जब हम स्वस्थ हैं निरोग हैं तभी कोई काम जो है बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कई बार देखो जाते हैं कि बहुत छोटी छोटी बातों पे अगर अपन ध्यान ना दें तो बीमारी को सबक बन जाऊ थे। अब अच्छे स्वास्थ्य रहने हैं, अच्छी तरीके से अपन को अपनी जिम्मेदारी निभाने हैं तो ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में व्यायाम को महत्व दें, अच्छा और शुद्ध भोजन करें और अच्छा साफ़ सुथरा पानी पिएं। कई बार अपन देखा था ना कि भैया रो कि जैसे ही बारिश को समय होता है तो घर में चाहे मोड़ा मोड़ी होएं, चाहे बड़े बुज़ुर्ग होएं या फिर अपन खुद ही अगर पानी में कछु अपन ने लापरवाही कर दी या फिर अच्छे से साफ़ सुथरा पानी ना पियो तो बीमार हो जाते हैं और कई प्रकार की जो है पेट से जुड़ी हुई समस्याएँ भी अपन को होने लगाते हैं। तो भैया अपन तो यही कहें कि जहाँ से भी अपने घर में पानी की व्यवस्था है, नलके से आ रहे हैं या फिर अपन कुआं से ला रहे हैं या फिर किसी और माध्यम से अपन पानी ले रहे हैं, तो ये ज़रूर जांच कर लें कि वह पानी पीने योग्य है या नहीं। इसके साथ ही अक्सर देखा जाता है कि जो बारिश का समय होता है तो पानी का जो है जल स्तर कई बार नीचे होता है तो उस समय भी पानी जो है गंदा आता है, तो हमें ऐसे सोर्स से पानी लेना चाहिए जो साफ़ सुथरा हो और पीने योग्य हो। अब अगर मान लो अपने यहाँ इस प्रकार का पानी है कि अपन को लग रही है कि उसको बिल्कुल साफ़ रखना है तो उस स्थिति में अपन पानी को उबाल सकते हैं, छान सकते हैं और फिटकरी के माध्यम से भी पानी को साफ़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से भैया रो अपन को जो है भोजन की तरफ भी बड़ो ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जो भोजन अपन ले रहे हैं

पहली बात तो भैया रो, जो भोजन तैयार हो रहा है तो अपन को आसपास साफ सफाई रखने हैं, स्वच्छता के साथ जो है भोजन तैयार करते हैं। इसके बाद जो भोजन तैयार है उसको ढक कर रखें, और भैया जैसो मौसम वैसो अपन को खान पान रखने हैं। तो इस समय अपन देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगत है, अपने शरीर से भी बहुत मात्रा में पसीना निकलत है, तो कोशिश करें कि तली भुनी चीज़ों के खावे से बचें और हल्की चीज़ें खाएं, जिससे अपन स्वस्थ और निरोग रहें। तो भैया ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर अपन ध्यान रखें तो अपन स्वस्थ रहें और निरोग रहें, और जब अपन खुशहाल हैं तो अपने कोनों भी काम काज हैं बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अपन को हर काम में मन लगत है, चाहे घर गृहस्थी के काम की बात करें या फिर अपन खेती बाड़ी की बात करें या फिर कोनों व्यवसाय की। अगर अपन चाहते हैं कि बाय में अपन पूरे मन से काम करें, तो सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हम स्वस्थ रहें, अपने परिवार के सभी सदस्यों का पूरी तरीके से ध्यान रखें। और अब सुनते हैं लोकगीत, स्वर है अखिलेश सोनकिया का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भैया देखो, हर मौसम की अपनी ही अलग बात होती है और हर मौसम के फल जो हैं अलग अलग होते हैं। देखो जाए तो हर मौसम में जो फल हैं उनको सेवन अपन को करो जाइए, क्योंकि उनमें उस मौसम के अनुसार जो रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति होती है वो मौजूद होती है। और अभी समय अपन देख रहे हैं किसान भैयाओं की, बहुत से किसान भैयाओं ने फल और सब्जियों का उपयोग जो है विभिन्न तरीके से कर रहे हैं। आज खेती के साथ साथ कई प्रकार की चीज़ों का भी मैं उसका निर्माण भी हो रहा है। लेकिन अगर अपन उत्पादन की बात करें तो आज ऐसी बहुत सी प्रजाति के फल सब्जियां हैं जो कि अपन को लगत थे पहले कि अपने क्षेत्र में अच्छी तरीके से विकसित हुई हैं कि नहीं, तो उनको भी आज अपने भैया बहन जो है किसान भैया ने वे विकसित कर रहे हैं और उत्पादन में जिन बातों को ध्यान रखने आते हैं उनको भी पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं। तो आज सुनत है भेंट वार्ता, जाको विषय है सीताफल उत्पादन कैसे, और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रवीण सिंह गुर्जर, बातचीत करी है श्री सोहन सिंह ने। तो भैया बहनों सुनते हैं भेंट वार्ता।
3: किसान भाइयों, बरसात का मौसम पौध रोपण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस समय रोपे गए पौधे बहुत ही कम मुरझाते हैं और ये सर्वाधिक इस मौसम में सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। फलदार पौधों में सीताफल के लिए यहाँ की जलवायु कैसी है और इसको लगाकर हमारे किसान भाई किस तरह व्यापार की दृष्टि से अच्छा लाभ कमा सकते हैं, इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण सिंह गुर्जर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारे अंचल में आम, आंवला, अमरूद, इनकी तो हमारे किसान भाई पौध लगाते हैं और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, सीताफल को अगर हमारे किसान भाई व्यवसायिक दृष्टि से लगाएं तो इसके किस तरह के लाभ मिलने की संभावना?
4: सीताफल को औषधिक और पोषक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़, यदि हम सीताफल का यदि सेवन करते हैं तो जो बहुत बड़ी व्यापक समस्या है ब्लड प्रेशर की, उससे भी काफ़ी हद तक निजात मिलती है। और यदि हमारे किसान भाई सीताफल की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से प्रति इकाई क्षेत्र पर अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं और उसको एक व्यवसायिक रूप प्रदान कर सकते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि एक जो पेड़ है जो लगभग 5 से 6 वर्ष का है, एक पेड़ से लगभग 100 से लेकर 125 फल प्राप्त होते हैं। और यदि हम एक बीघा में बात करें तो लगभग एक बीघा में 100 करीबन पौधे आते हैं और इन 100 पौधों के यदि आप लगाएंगे एक बीघा से लगभग आपको 75,000 से लेकर 1,00,000 रुपए का आपको शुद्ध लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा हमारे किसान भाई इनके मध्य में अंतर्वर्ती फसलें भी ले सकते हैं और वो अतिरिक्त लाभ का साधन रहेगा। तो ये निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक पौधे रहते हैं तो आपको एक बार इन्वेस्ट करना है, एक बार पैसा लगाना है, एक बार रोपण करना है और लगभग 20 साल तक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल तक यानी 5 साल बाद 15 साल तक आप पर्याप्त मात्रा में इससे फल ले सकते हैं और व्यवसायिक स्तर पर अपनी इसको खेती कर सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, अपने अंचल संभाग में कैसी संभावना है
4: इस? लेकिन सिंह साहब, इस बात का हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है या पाले की ज़्यादा समस्या रहती है, क्योंकि ये जो फल पौधा है वो पाले के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। तो ऐसी जगह पे जहाँ गहरा क्षेत्र है, लो लाइन एरिया है, वहाँ पर इन पौधों को न लगाएं। ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ बिल्कुल मैदानी क्षेत्र हो और पाले की संभावना कम हो, ऐसी जगह पर हम इन पौधों का रोपण करते हैं। इसके लिए गर्म और शुष्क जलवायु बहुत ही उपयुक्त पाई जाती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में जहाँ ज़्यादा ठंड है वहाँ पर, या जो गहरे क्षेत्र हैं, तलहटी क्षेत्र है, वहाँ पर न लगाने के अलावा आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। ये पूरी तरह से अच्छा विकास करेगा, अच्छा उत्पादन देगा।
3: डॉक्टर साहब, सीताफल लगाने की कौन सी विधि ज़्यादा उपयुक्त है?
4: वैज्ञानिक विधि से यदि हम इसके बाग लगाते हैं तो ये वर्गाकार पद्धति, यानी पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होनी चाहिए, यानी वर्गाकार पद्धति से पौधों का रोपण करना चाहिए। और यदि हमारे किसान भाई इस तरह लगाते हैं तो वो बहुत ही उपयुक्त रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप, हमारे किसान भाई, इसकी योजना बनाएं बाग तैयार करने की, तो मार्च और अप्रैल के महीने में जब आपकी फसल ना रहे उस समय इसके गड्ढों की खुदाई कर लें, और ये लगभग 2 से 2.5 फीट गहराई, चौड़ाई, लंबाई की आप गड्ढे खोद लीजिए, उसकी मिट्टी को उस पे पास में ही रख दीजिए। लगभग 2 महीने तक इसको तेज़ गर्मी में आप छोड़ दीजिए, और जैसे ही वर्षा शुरू हो, वर्षा शुरू होने के बाद आधा सड़ा हुआ गोबर का खाद, आधा मिट्टी और लगभग 250 से 300 ग्राम नीम की खली को मिलाकर अच्छी तरह से मिक्सर बनाकर, जब आपकी 100 mm वर्षा हो जाए उसके पश्चात आप इसका रोपण कर सकते हैं। तो ये सबसे उपयुक्त तरीका है रोपण का।
3: डॉक्टर साहब, अगर हमारे किसान भाई लगाना चाहें तो सीताफल की कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिनका चुनाव करके हमारे किसान भाई इसकी रोपण कर सकते?
4: इस बागवानी की सफलता का श्रेय उचित प्रजाति के चुनाव पर निर्भर है। सामान्यतः हमारे किसान भाई यदि बहुत एडवांस हैं या पौध कहीं से भी ला सकते हैं, अर्का सहान जो किस्म है या प्रजाति है ये बहुत ही उपयुक्त है। इसके कारण ये हैं कि एक तो इसमें मिठास बहुत ज़्यादा रहती है, यानी लगभग यदि हम कहें 30 डिग्री ब्रिक्स तक इसकी जो TSS रहती है। दूसरा, इसके जो फलों का जो गूदा है वो सफ़ेद और बर्फ़ जैसा रहता है, तो इसको हमारे जो उपभोक्ता हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। किसान भाई हमारे इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस क्षेत्र के लिए अर्का सहान किस्म का सबसे पहले चुनाव करें, उसके बाद जो नई किस्म है अर्का नीलांचल विक्रम उसका चुनाव कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पर बालानगर का चुनाव करें, क्योंकि सबसे उपयुक्त किस्म अर्का सहान है, इसी का चुनाव हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और अच्छी गुणवत्ता के फल भी आपको प्राप्त होंगे।
3: डॉक्टर साहब, दूसरे फलदार पौधों की तरह सीताफल में भी खाद और उर्वरक प्रयोग करने की आवश्यकता होती है?
4: अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन लेना है तो निश्चित रूप से आपको पोषक तत्वों का प्रबंधन करना पड़ेगा। सामान्यतः यदि आपका पेड़ या वृक्ष है सीताफल का, यदि वो 5 से 6 वर्ष का हो गया है, तो प्रति पौधा या प्रति वृक्ष लगभग आपको 20 से 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, इसके अलावा आपको लगभग 250 से 300 ग्राम यूरिया और 100 से 150 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 500 से 600 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट को आपको, इसका जो तना रहता है उससे लगभग 1 से 1.5 मीटर दूरी पर, जब दोपहर के समय देखें तो सूरज जब ऊपर रहता है तो जितनी छाया बनती है उस पेड़ की, तो उस पेड़ की छाया पड़े तो उसकी चारों तरफ आप निशान बना लीजिए और तने से लगभग 1 से 1.5 मीटर छोड़ दीजिए। जो बीच का जो मध्य का भाग है उसमें सड़ा हुआ गोबर का खाद और रासायनिक उर्वरकों को डालिए, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा।
3: डॉक्टर साहब, सीताफल के पौधों में प्रमुख रूप से कौन कौन से जो कीट हैं ये नुकसान पहुंचाते हैं?
4: ये जो पेड़ है, ये वृक्ष है, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है, तो अधिकांश जितने भी कीट हैं वो प्राकृतिक रूप से इसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, तो लगभग अधिकांश कीटों से मुक्त रहता है। लेकिन मिलीबग का इस पर प्रकोप देखा गया है, और विशेष रूप से हमने देखा है कि शाखाएं और पत्तियों को ये बहुत ज्यादा हानि पहुंचा। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे किसान भाई यदि जैविक उत्पादन करना चाहते हैं तो 8 से 10 ml प्रति लीटर पानी की दर से नीम तेल का आप अच्छी तरह से स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन नीम तेल को सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को डिटर्जेंट में अच्छी तरह से घोलना होगा, जब वो पूरी तरह सफ़ेद हो जाए और पूरी तरह नीम का तेल घुल जाए और सफ़ेद मिश्रण में परिवर्तित हो जाए, उसके बाद 8 से 10 ml प्रति लीटर पानी। यदि आपका 15 लीटर का जो पंप है तो लगभग 140 से लेके 150 ml इसको मिलाइए और अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए, तो जो आपका उत्पाद प्राप्त होगा वो अच्छी गुणवत्ता का होगा और जैविक उत्पाद प्राप्त होगा।
3: डॉक्टर साहब, फलदार पौधों में कटाई छटाई का विशेष महत्व होता है। सीताफल के तो पौधे ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें भी कटाई छटाई करना आवश्यक?
4: बिल्कुल, कटाई छटाई का ये अनुसंधानों से पता चला है कि यदि जो बढ़ती हुई शाखाएं हैं उनको यदि अपन ऊपर से काट दें तो जो शाखाओं की संख्या बढ़ जाएगी और आपका उत्पादन बढ़ेगा। और इसके अलावा जहाँ आपको लगे कि सूखी टहनी है या रोगग्रस्त टहनी है उसको जरूर काट देना चाहिए। यदि इस तरह से आप कटाई छटाई करते रहेंगे और पूरी तरह से सूर्य की रोशनी पेड़ के प्रत्येक भाग पर यदि पहुंचेगी तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन बढ़ेगा और अच्छी गुणवत्ता का प्राप्त होगा।
3: डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि जहां पर पालक पड़ता है वहां पर इसके लगने की संभावना कम होती है।
4: जी जी।
3: अगर हमारे ग्रामीण भाई सीताफल का बगीचा लगाना चाहते हैं तो अगर थोड़े से जनवरी के महीने में अगर पौधों की देखभाल कर लें, पाले से बचा लें,
4: जी जी,
3: तो इसका उत्पादन लिया जा सकता है।
4: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में विशेष रूप से जनवरी के महीने में ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो ऐसी परिस्थिति जब बने किसान भाइयों के सामने तो पौधों की जो जड़ क्षेत्र है उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए, यानी उस समय पर हल्की सिंचाई कर देना चाहिए। थायो यूरिया का भी हमारे किसान भाई 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में की दर से घोल बनाकर यदि इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं और पर्याप्त मात्रा में जड़ क्षेत्र में यदि नमी रहती है तो पाले की संभावना बहुत कम रहेगी। इसके अलावा हमारी जो एक और प्रैक्टिस है कि हमारे किसान भाई मेड़ों पर धुआं कर देते हैं, उसको भी अपना लें तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाई अपने पौधों को पाले से आराम से बचा सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, अंत में चलते चलते हमारे ग्रामीण भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे हमारे ग्रामीण भाई सीताफल के पौधरोपण करके बगीचे लगा करके उनसे अच्छा उत्पादन ले सके?
4: हमारे जो सीताफल के जो पौधे जब वयस्क हो जाते हैं, पुष्पन शुरू हो जाता है, तो हमने देखा है, ये अनुसंधानों से भी पता चला है कि इसकी तरफ कीट बहुत आकर्षित नहीं होते हैं, यानी इसमें एक विशेष गंध आने की वजह से जितने भी मित्र कीट हैं वो इससे दूर रहते हैं, तो पुष्पों में परागण की या निषेचन की क्रिया में बाधा आती है। तो अधिकतम यदि हमारे किसान भाई को उत्पादन लेना है, जिन किसान भाइयों के पास यदि सीताफल के बाग हैं, विशेष रूप से जब पुष्पन की अवस्था हो उस समय रुएदार कोई कपड़ा अपने हाथों में पहने और जल्दी जल्दी सुबह 6 से लेकर 7 बजे की जो समय रहता है उस समय उस रुएदार कपड़े को जहाँ जहाँ पुष्पन या पुष्प दिखाई दे रहे हैं उन पर फेरने की ज़रूरत है, यानी रगड़ने की ज़रूरत है, तो निषेचन बहुत बेहतर होगा। और ये देखा गया है कि इससे लगभग 15 से लेकर 25% उत्पादन बढ़ जाता है। तो परागण बेहतर तरीके से हो इसके लिए किसान भाइयों को सुबह सुबह निषेचन करवाने के लिए रुएदार कपड़ों को

0: हाथ में पहनकर पुष्प की जो अवस्था होती है उस समय पुष्पों पर हाथ फेरने की जरूरत है, तो आपका जो फलन बहुत अच्छा होगा और अच्छी गुणवत्ता का प्राप्त होगा।
1: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को सीताफल का पौध रोपण करके किस तरह अच्छा उत्पादन ले सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी, और इस जानकारी से हमारे किसान भाई निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैयानों, अभी अपन सुन रहे थे भेंटवार्ता, जिसका विषय था सीताफल उत्पादन कैसे। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रवीण सिंह गुर्जर और बातचीत कर रहे थे श्री सोहन सिंह। तो अब जो किसान भैया ने ये चाह रहे हैं कि हम सीताफल से जुड़े हुए जो है पौध लगाएं या फिर बगीचा तैयार करें, तो जो डॉक्टर साहब ने बातें बताई निश्चित तौर पे वे उनके काम में आए। और कहते हैं कि हर मौसम में जो है हर पौधे की अलग रूप से देखभाल करी जाती है। खासकर अगर अपन फल वाले पौधों की बात करें तो उनके परागण निषेचन से लेके फलों को तोड़ने तक एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसको हर किसान भैया को जानना चाहिए। और जो अपने वैज्ञानिक भैया ने सलाह देते हैं उस सलाह को मानत भाई यदि अपन कामकाज करत हैं तो जो अपने फल हैं वे सुरक्षित रहते हैं। साथ ही जब हम इनको अपने हाट बाज़ार में ले जाते हैं तो इनकी हमें कीमत भी बेहतर मिलत है। भैया, कोई भी फल हो या सब्जी, अगर अपन उनको व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मुख्य काम होता है कि जो हमारे फल सब्जियां हैं वो सही अवस्था में ताज़ी ताज़ी जो है बाज़ारों और मंडियों तक पहुँचे। तो उत्पादन के साथ साथ फलों की गुणवत्ता बनी रहे, इस बात पे भी अपन को थोड़े ध्यान देने की ज़रूरत पड़त है। और अपने बहुत से भैया ने यही प्रयास करे थे कि उनको पूर्णता बनने से पहले ही उनको समय से तोड़ के उनको बाज़ारों में ले जाएं। तो देखो भैया रो, अपनी बातें तो आगे भी हुई हैं, अब सुनत है संदेश।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: भैया देखो, फल सब्जी की जैसे अपन बात कर रहे थे, उनको ताज़ा ताज़ा खावे की बातें अलग होते हैं। और अगर हम ऐसे ऐसे फल हैं अपने आसपास जिनको अपन कुछ समय के लिए प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं, जो कि हम सीजन चले जाने के बाद भी उनको उपयोग में लाएं। और भैया आज जो है राष्ट्रीय आम दिवस है, और हमें पता है कि अपने सभी भैया बहनों को जो है आम फल बहुत ही पसंद होते हैं। आज आम की अगर बात करें तो आम की कई प्रकार की प्रजातियां जो है आज बाज़ारों में उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि बहुत से भैया बहनों ने विभिन्न प्रकार के प्रजाति के जो है आम के पेड़ भी लगा रखे हैं। उनकी उचित देखभाल से उन्होंने उन्नति भी करी है और उनको अच्छो लाभ भी मिलो है। लेकिन भैया आप और जानते हैं कि जो आम है इससे कई प्रकार के जो है भोज्य पदार्थ जो है आज के समय में तैयार करे जाते हैं। और अगर अपन प्रशिक्षण लेके काम करें तो निश्चित तौर पे जितनी अपनी लागत है उससे कई गुना जो है अपन लाभ ले सकते हैं। और ये ऐसा व्यवसाय होता है जिसको कभों भी ठंडो नहीं पड़ता है कहते हैं। तो अब जैसे कि आम की बात करें तो अपन देखा था कि जो अपने आम जब कच्चे होते हैं तो अपन जो है कैरी के रूप में उपयोग कर लेते हैं। शुरू के आम जो हैं उनको अपन पना के रूप में बना सकते हैं। कच्चे आम से भी आम पापड़ तैयार होते हैं। और तो और अगर थोड़े आम बड़े हो गए हैं और अपन चाह रहे हैं कि इनसे कछु और तैयार करें तो अपन अमचूर जो है तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो अचार हैं तरह तरह से डलते हैं उनको भी अपन तैयार कर सकते हैं। अब अगर अपन चाह रहे हैं कि अपने आम से विभिन्न प्रकार की जो अपनी विभिन्न प्रकार की प्रजाति होती है तो देखा था कि कुछ आम तो जो है बहुत ही खट्टे होते हैं, कुछ आम जो है कि कैरी की अवस्था में भी मीठापन लिए होते हैं। तो जिस प्रकार की प्रजाति का अपन ने पेड़ लगाए रखा है उसके गुणों को पहचानते हुए उससे अपन विभिन्न प्रकार की चीज़ें तैयार करें। अब जैसे कि अगर आम में थोड़ी सी मिठास है तो अपन इससे आम पापड़ तैयार कर सकते हैं। आम से जो है मिठी भी जो है तैयार होती है। इसके साथ साथ जो है आज के समय में आम की मिठाइयाँ भी तैयार होती हैं। और भैया अगर अपन चाह रहे हैं कि जो अपन उत्पाद तैयार करें और वो अपन को लंबे समय तक विक्रय के काम आए तो एक सबसे अच्छा उत्पाद होता है आम से तैयार होने वाला जैम और जेली, जिसकी बाज़ारों में बहुत ज़्यादा मांग भी होती है। लेकिन भैया अगर हमें कोनो भी काम का शुरू करने हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम उस काम से जुड़ी हुई पूरी जानकारी रखें, सही तरीके से प्रशिक्षण लें और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए और बाज़ार की मांग को देखते हुए जो उत्पाद हैं उनको तैयार करें। और तैयार होने के बाद समय से सही तरीके से पैकिंग करके बाज़ारों में लाएं। भैया अगर अपन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो जो भी हम उत्पाद तैयार करते हैं उससे हमें बेहतर लाभ मिलता है। और हाँ भैया एक बात की बिल्कुल ठान के चलें, कितनी भी कोई भी समस्या हो लेकिन गुणवत्ता से अपन को समझौता नहीं करने, क्योंकि आज के समय में अपन देखा थे बाज़ार में विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो बिखरे हैं। अगर हमें ऐसे में अपने उत्पाद को लाने हैं तो ज़रूरी है कि हम अपने उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखें। और अब सुनते हैं संदेश।

भैया लोग कहते हैं कि अपना मन मस्तिष्क से अपन खुश हैं, निरोग हैं, तो कोनो भी समस्या होए पल भर में पूरे परिवार के लोग मिलके सरलता से भय से बाहर आ जाते हैं। और आज राष्ट्रीय आम दिवस के संगे संगे विश्व मस्तिष्क दिवस भी है। और अगर अपने मस्तिष्क की बात करें तो छोटी छोटी कही जाती हैं आदतें, अगर अपन ध्यान रख लें तो अपन स्वस्थ रह सकते हैं, मन से खुश रह सकते हैं, तन से खुश रह सकते हैं और अपने कामकाज को बेहतर भी कर सकते हैं। अपन चाह रहे कि हम स्वस्थ रहें, हमारा मस्तिष्क भी अच्छी तरीके से काम करे, तो भैया आज के समय में कही जाता है कि अपन को ऐसी दिनचर्या अपनाने हैं कि जो कि तनाव मुक्त हो, नियमितता हो और खुशियों से भरी हो। तो सबसे पहले भैया रो अपन को ये बात को ध्यान रखना है कि भोजन जो है संतुलित और पौष्टिक करें, जिससे हमारे शरीर में रक्त का सही से संचार हो, हम बीमारियों से दूर रहें। इसके साथ ही अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार देखो जाते हैं कि बहुत से भैया बहन जो है बहुत समय तक मोबाइल का उपयोग भी करते हैं और किन्हीं कारणों से वे पूरी नींद नहीं लेते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में भारीपन होता है, सिर में भारीपन लगता है और आने वाला दिन भी उनका पूरा थकावट से भरा होता है। इसके साथ साथ भैयारों अगर अपन चाह रहे हैं तो नियमित रूप से व्यायाम भी करें या फिर योगा भी करें सकते हैं, ध्यान भी लगा सकते हैं। और भैया सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम सभी जो है तनाव को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें और ध्यान से सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ें, क्योंकि तनाव को अगर हमें दूर करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपनी सोच को बदलें, अच्छी बातों को सीखें, नई नई चीज़ों पर ध्यान लगाएं और जो आपको जो ऐसे पसंदीदा काम होते हैं उनको करें। और कुछ लोग हैं विभिन्न प्रकार की कलाएं करते हैं, कुछ गाना बजाना ऐसे कि जिससे कि हमारा तनाव दूर हो जाए। और हाँ भैया एक बात को और ध्यान रखना है कि जहाँ तक हो सके तो अपन को नशीले पदार्थों से और धूम्रपान से दूर रहने, इनसे भी जो है हमारे शरीर पे मस्तिष्क पे असर होता है और धीरे धीरे करके हम बीमार हो जाते हैं, हमारे आसपास रहने वाले लोगों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो अपन चाहते हैं कि अपना शरीर स्वस्थ रहे, अपना मस्तिष्क स्वस्थ रहे, तो अपन को इन बातों को ध्यान जरूर रखने हैं और खुशी के साथ अपन को आगे बढ़ने हैं। तो अब जब अपनी खुशी की बात हो ही रही है तो कायना आप सुनत है अगलो लोकगीत, स्वर है अनिल दंडोतिया का।

भैया देखो, कहते हैं कि जब मौसम बदलत है तो बाई के संगे संगे जीवन को नव नज़रिया भी बदलता है। अब बारिश की जब बात है तो अपन ये वही समय होते जबकि ज़्यादा से ज़्यादा अपन पेड़ पौधे लगा के जो प्रकृति है उसको संवार सकते हैं। तो अपन अपने कार्यक्रम के माध्यम से सभी से यही कहें कि अपने आसपास पेड़ पौधा जरूर लगाएं और धरती को हरा भरा बनाएं। और अब हो रही है चलबे की बेरा, सभी किसान भैयों को स्वाति बहन की राम राम।

ये आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं युनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा किस नियम के अंतर्गत होगी और कितनी देर होनी चाहिए, ये बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मॉनसून सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। श्री टेनेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने, कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है, वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपने सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है।
उन्होंने कहा कि पीएमजेवी के एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवी के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए न तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और न ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क) भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार 3rd दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में
प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें। अपनी बात का असर ना होते देख श्री हरिवंश ने एक मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा, विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है। यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले 4 दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है। जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है। बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत

0: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और कूटनीतिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उत्तर मैसेडोनिया यात्रा को भारत की विदेश नीति और यूरोप के साथ बढ़ते संबंधों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इसी संदर्भ में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रोफेसर मिश्रा, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम देखें तो ये जो राजनयिक संबंध है उत्तर मैसेडोनिया और भारत के बीच, ये काफी वर्ष पहले ही स्थापित हो गया था, और उसके बाद ये भारत के किसी राष्ट्रपति की नॉर्थ मैसेडोनिया की पहली ऐतिहासिक राज यात्रा है। ऐसे में वहाँ की संसद में दिया गया जो राष्ट्रपति का संबोधन है, या फिर हम बोले कि ये जो दोहरा है, ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और संसदीय कूटनीति को एक नई ऊंचाई देने में कितना मील का पत्थर साबित हो सकता है।
3: देखिए, उत्तरी मैसेडोनिया एक लोकतांत्रिक देश है और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाना एक तरह से मुझे लगता है कि नेचुरल है। ये एक नैसर्गिक और तार्किक परिणति है कि दोनों लोकतांत्रिक देश मिलकर साथ काम करें। भारत का जो आईटेक प्रोग्राम है, जिसमें हम दूसरे अपने तमाम मित्र देशों के सिविल सर्वेंट्स की, वहाँ के ऑफिशियल्स की जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उसके तहत भी हमने उत्तरी मैसेडोनिया के पार्लियामेंट एम्प्लॉयज़ को लोकसभा में ट्रेनिंग दी थी। तो दोनों देशों के बीच में लोकतंत्र को कैसे सुदृढ़ करें और लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको हम कैसे सुदृढ़ करें, इस लिहाज से मुझे लगता है न सिर्फ राष्ट्रपति मुर्मू का वहाँ पर संबोधन, बल्कि दोनों देशों के बीच में लोकतंत्र को लेकर के बात करना और आपस में इसको लेकर एक सॉलिडारिटी होना बहुत महत्वपूर्ण है। और यही सॉलिडारिटी है जो भारत को ग्लोबल साउथ का एक मुखिया बनाती है। भारत ने ग्लोबल साउथ के एक नेता के तौर पर भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह परिलक्षित किया है कि ग्लोबल साउथ का मतलब हमारे लिए सिर्फ यही नहीं है कि एशिया और अफ्रीका के विकासशील देश हमारे साथ हैं, बल्कि यूरोप के भी जो छोटे देश हैं, जो बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति नहीं है, उनको भी हम साथ लाए। तो इस लिहाज से भी मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक वैल्यू और ग्लोबल साउथ की वैल्यूज दोनों को साथ लाने की कोशिश की जा रही है।
2: हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अभी उत्तर मैसेडोनिया यात्रा में है, तो ये भारत की जो विदेश नीति है और यूरोप के साथ जो भारत के बढ़ते संबंध है, उनको आप कैसे देखते हैं, और ये जो यात्रा है हमारे राष्ट्रपति की, वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है?
3: देखिए, इसमें तीन पहलू हैं। एक तो सबसे बड़ा पहलू ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा मैसेडोनिया, मोल्डोवा, जो बाल्कन के जो देश हैं, उनकी यात्रा के साथ साथ हमें ये देखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री भी अभी विदेशी दौरों पर हैं, और मोटे तौर पर भारतीय विदेश नीति में इस बात पर बहुत अच्छी तरह जोर दिया जा रहा है कि आज यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंधों को नए स्तर पर पहुंचाना है और उनको एक नया आयाम देना है। इसमें भारत ने न सिर्फ यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, बल्कि बाल्कन और पूर्वी यूरोप के जो छोटे देश हैं उनको भी साथ लाने की कोशिश है। तो एक बहुत ही इंक्लूसिव यूरोप पॉलिसी हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि भारतीय विदेश नीति में और भारत के जो नीति निर्धारक हैं उनको यह बात भी बहुत स्पष्ट है कि जैसे भारत की आर्थिक शक्ति और उसकी जो डिप्लोमेटिक प्रोवेस है वो बढ़ रही है, हमें दुनिया के तमाम देशों के साथ न सिर्फ कूटनीतिक तौर पर बल्कि उनके साथ आर्थिक और तकनीक के स्तर पर सहयोग को आगे बढ़ाना होगा। इस लिहाज से मुझे लगता है उत्तरी मैसेडोनिया की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तरी मैसेडोनिया एक छोटा सा देश नहीं है। उत्तरी

0: मैसेडोनिया वो देश है जो यूगोस्लाविया से अलग हुआ था, और जब एक स्वतंत्र देश बना तो भारत ने 39 और देशों के साथ मिलकर उत्तरी मैसेडोनिया को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित करने के लिए और उसे एक संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के तौर पर जगह देने के लिए पुरजोर उसकी वकालत की थी और उत्तरी मैसेडोनिया एक देश बना। भारत के साथ उत्तरी मैसेडोनिया के संबंध बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जो क्रिश्चियन है एक बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी है। भारत जैसे मल्टीकल्चरल देश के लिए ये तथ्य कि मदर टेरेसा का जन्म उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था, ये अपने आप में दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंधों के साथ साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट में बहुत बड़ी भूमिका ये अदा करता है। और दोनों देशों के बीच में संबंध इसी तौर पर जब अतीत में जब यूगोस्लाविया एक देश था तब भी और जब उत्तरी मैसेडोनिया एक देश बना तब भी इन दोनों देशों के बीच में संपर्क तो था, लेकिन उसे कूटनीतिक तौर पर उसे राजनयिक तौर पर एक सही दिशा देना बहुत जरूरी हो गया था। और ये मुझे लगता है राष्ट्रपति मुर्मू की ये जो यात्रा है ये उसी दिशा में उठाया हुआ कदम है कि दोनों देशों को अब पिछली जो हमारी जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाते हुए आपसी व्यापार और सहयोग को राजनीतिक कूटनीतिक सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, उस दिशा में हम कैसे काम करें, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा की जा रही है।
1: जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जो रिश्ते हैं ये और मजबूत होंगे और काफी क्षेत्र है जिसमें भारत और उत्तर मैसेडोनिया का सहयोग बहुत जरूरी है। तो आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये भी कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई मॉडल को साझा करने की एक बहुत बड़ी जरूरत है। इससे उत्तर मैसेडोनिया और भारत दोनों को किस प्रकार के व्यवहारिक लाभ मिल सकते हैं?
0: देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से उत्तरी मैसेडोनिया को जोड़ने का मतलब है, और हम जानते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के देश पहले से ही इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई से एक दूसरे को जोड़ना है। उत्तरी मैसेडोनिया का एक खास इसकी एक भूमिका है। तमिल जो हमारा सिनेमा है उसमें मरसूल नाम की एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने भारतीयों को ये दिखाया कि उत्तरी मैसेडोनिया कितना खूबसूरत देश है, स्कोपे जो उनकी राजधानी है वो कितनी खूबसूरत है। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच में पहले तो जो सैलानी उत्तरी मैसेडोनिया जाना चाहते हैं या भारत आना चाहते हैं उनके लिए जब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई जैसी सुविधाएं होंगी तो उनके लिए एक दूसरे के देश में आना जाना सरल होगा। दूसरी बात यह है कि ये भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच में व्यापार को लेकर जो दोनों देशों में समझौता हुआ है कि आज जो हम $37 मिलियन के स्तर पर खड़े हैं इसे कैसे दुगना किया जाए, और उसके लिए जरूरी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन, और उस क्षेत्र में मुझे लगता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई की बहुत बड़ी भूमिका है। साथ ही साथ ये जो हम भारत और उसके जो विदेश नीति के निर्धारक हैं वो ये जो बात सोचते हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ जब हम अपने संबंधों को और अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को जब हम एक तरह से अलाइन कर रहे हैं तो यूरोप के बाकी देश उसमें छूटे नहीं, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब यूरोप के तमाम जितने भी देश हैं उन सभी की हमें अपने आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति और आर्थिक और व्यापारिक सहयोग में उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई मुझे लगता है कि समय से आगे की सोच है। उत्तरी मैसेडोनिया के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता है और साथ ही साथ पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाने के लिए भी इसकी बहुत जरूरत है।
1: इस वार्ता के दौरान हमने ये भी सुना कि कृषि हो या फिर खाद्य प्रसंस्करण हो या कपड़ा उद्योग और नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेखांकित किया। कृषि तकनीक और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में यह तकनीकी साझेदारी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को कितना संबल प्रदान कर सकती है?
0: जी, आपने दो बातें कही। पहली तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है या
1: जी
0: नई जो तकनीक के क्षेत्र हैं, इन दोनों ही क्षेत्रों में भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच में मोटे तौर पर यह समझौता हो गया है कि उत्तरी मैसेडोनिया भारत का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसकी सदस्यता लेगा, और जो कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंस CDRI है उसमें भी उत्तरी मैसेडोनिया एक सदस्य बनेगा। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनमें भारत ने न सिर्फ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बल्कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक पहल की है जिसमें दुनिया के तमाम देश शामिल हो रहे हैं। दूसरा मुद्दा है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण का। भारत एक कृषि प्रधान देश अभी भी है, और क्योंकि भारत की अधिकांश जनता अभी भी कृषि क्षेत्र में है तो हमारे लिए कृषि क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ सहयोग करना और उसमें नई तकनीक को साझा करना, नई तकनीक दूसरे देशों से सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। फूड प्रोसेसिंग का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत के छोटे और मझोले किसान जो फूड प्रोसेसिंग या एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग में हैं उनके लिए फूड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और इनका तमाम जो निर्यात है उसके क्षेत्र में शायद मुझे लगता है नॉर्थ मैसेडोनिया से भारतीय किसान कुछ सीख सकते हैं।
1: भारत सरकार ने नॉर्थ मैसेडोनिया के नागरिकों के लिए आईटेक यानी कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण स्लॉट्स की संख्या को दोगुना कर दिया। क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर केंद्रित यह फैसला आपके हिसाब से प्रोफेसर मिश्रा दोनों देशों के बीच सॉफ्ट पावर और पीपल टू पीपल टाइज को कितना बढ़ावा दे पाएगा?
0: देखिए श्रेया जी, आईटेक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत भारत दुनिया के तमाम जो विकासशील देश हैं उनके लिए खासतौर पर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, उनका क्षमता निर्माण करता है और उनको ये जो अत्याधुनिक जो तकनीकें हैं प्रशासन में, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज को डील करने में और जो मोटे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी कैसे अपने हमारे मित्र देशों के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वहाँ के ऑफिसर्स हैं, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और कटिंग एज इंफॉर्मेशन पा सकें। तो इस क्षेत्र में उत्तरी मैसेडोनिया के पास हमारे हर आईटेक प्रोग्राम में 2 सीटें हुआ करती थी जिसे बढ़ाकर अब 4 किया जाएगा और इसमें खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्लॉट भी उत्तरी मैसेडोनिया को दिए जाएँ। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे दोनों देशों के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वहाँ के जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी एक दूसरे को जान सकेंगे। उन उत्तरी मैसेडोनिया के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनके लिए भी भारत को समझना मुझे लगता है ज़्यादा आसान होगा। एक दोनों देशों के बीच में ब्यूरोक्रेसी के बीच में जो परस्पर जो दिलचस्पी बढ़ेगी, मुझे लगता है कि उससे भी पीपल टू पीपल कनेक्ट आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए मुझे लगता है ये एक इनेबलर का काम करता है और उत्तरी मैसेडोनिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये एक इनेबलर का काम करेगा।
1: जी, तो मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये होगा कि जो राष्ट्रपति की यात्रा मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 स्तरीय राजकीय यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पूर्वी यूरोप के इन प्रमुख राष्ट्रों के साथ भारत का जो यह सक्रिय जुड़ाव है, तो ये भारतीय यूरोपीय संघ के समग्र संबंधों को किस प्रकार से एक सकारात्मक और नई दिशा दे रहा है?
0: देखिए, उत्तरी मैसेडोनिया ये चाहता है कि वो यूरोपियन यूनियन की सदस्यता ले और राष्ट्रपति की जो ये 3 देशों की यात्रा है, बाल्कन देशों की और जिसे हम बड़े तौर पर आज उत्तरी यूरोप भी कहते हैं, उत्तरी यूरोप के देशों के साथ भारत के संबंधों को एक नया आयाम, एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए मुझे लगता है राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जैसा कि हम जानते हैं आर्थिक तौर पर, सामाजिक, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, कूटनीतिक, रक्षा, तमाम क्षेत्रों में संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, लेकिन भारत की ये सोच है कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन के या यूरोपियन संघ के देशों के साथ ही भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंध भारत और यूरोप के संबंधों का एक सिर्फ हिस्सा है। अगर हम यूरोप के तमाम देशों को जो यूरोपियन संघ के सदस्य नहीं है उनको भी अगर हम अपनी यूरोपियन जो हमारी नीति है उसमें जोड़ेंगे तो न सिर्फ भारत के लिए व्यापार के तौर पर व्यापार को बढ़ाने के लिए या राजनीतिक संबंधों के लिए या कूटनीतिक संबंधों के लिए बल्कि पीपल टू पीपल कनेक्ट के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होगी। तो मुझे लगता है भारत की जो यूरोप के संदर्भ में जो नीति है वो यही है कि हम यूरोपियन यूनियन पर अपनी यूरोप नीति को समाप्त नहीं करेंगे, हम पूर्वी यूरोप के देशों में भी जाएंगे, हम दक्षिणी यूरोप के तमाम देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम स्कैंडिनेविया के देशों के साथ भी, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार जब यात्रा की थी 5 देशों की तो हमने ये देखा था कि वहां भी ये स्पष्ट था कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे संबंध सिर्फ हमारी यूरोप नीति का सिर्फ एक हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन भारत की यूरोप नीति को परिभाषित नहीं करता है। तो साफ तौर पर पूर्वी यूरोप की यात्रा यूरोप को एक इंक्लूसिव चेहरा देती है और एक हमारी जो इंक्लूसिव नीति है कि हम बड़े और छोटे देश के बीच में उसकी आर्थिक शक्ति को देखकर कोई उनके बीच में कोई भेद नहीं करते हैं, हम सभी देशों को, बड़े हों या छोटे हों, उनको एक समान नजरिए से देखते हैं और सभी मित्र देशों को हम अपने साथ रखना चाहते हैं।
1: जी प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आज के सुर्खियों में कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े और हमें भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच जो ये व्यापार, प्रौद्योगिकी और कूटनीतिक संबंधों के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत और उत्तर मैसेडोनिया के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और कूटनीतिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे

0: आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: सुर्खियों में
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब आपको सुनवा रहे हैं विधानसभा समीक्षा। आलेख वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर का है और वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।
3: प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख रमेश ठाकुर का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन खूब हंगामा हुआ। राज्य विधानसभा में आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से स्वीकृति दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अनुपस्थिति में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह विधेयक वर्ष 2019 से प्रदेश में लागू है, लेकिन अब इसे केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85, 151, 296 में समझौते का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धारा 151 और 296 के अपराधों में आरोपी और फरियादी दोनों पक्ष न्यायालय के समक्ष आपस में समझौता कर सकेंगे। इसी तरह धारा 85 में भी पारिवारिक विवाद से संबंधित प्रकरणों में महिला को समझौते का अवसर मिलेगा, लेकिन इन प्रकरणों में प्रकरण दर्ज होने की स्थिति से 6 माह बीतने और न्यायालय के समाधान होने पर ही समझौता हो सकेगा। ये प्रावधान इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी स्त्री के पति या उसके रिश्तेदारों के दबाव में ये समझौता नहीं किया जाए। महिला यदि स्वेच्छा से समझौते के लिए सहमति देती है तब न्यायालय उस पर विचार करेगा और उसके बाद ही समझौते को मंजूरी मिल सकेगी। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर कुमार द्वारा प्रस्तुत मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने भारी आपत्ति व्यक्त की। उनका कहना था कि विधेयक में संशोधन के माध्यम से निजी विश्वविद्यालयों को मनमानी करने का अवसर दिया जा रहा है। कांग्रेस के महेश परमार, झूमा सोलंकी, हीरालाल अलावा, प्रताप ग्रेवाल और कैलाश कुशवाहा का आरोप था कि विधेयक में आवश्यक भूमि की अनिवार्यता में छूट दिए जाने से छोटे छोटे स्थानों पर दो दो कमरों में निजी विश्वविद्यालय संचालित होने लगेंगे। भाजपा के डॉ. चिंतामणि मालवीय, उमाकांत शर्मा और माधव सिंह ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए निजी विश्वविद्यालयों को आगे आने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास संसाधनों की कमी के चलते निजी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी विपक्षी सदस्यों को आश्वस्त किया कि निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दिए जाने से प्रदेश में छात्रों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। विपक्षी सदस्यों की आपत्ति के बीच विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। कोरम के अभाव में आज सदन की कार्यवाही 5 मिनट विलंब से प्रारंभ हुई। सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के विधायक दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज सदन में बांह पर काली पट्टी बांधकर आए। सदन में उन्होंने इस मुद्दे पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी ये मांग कहते हुए नामंजूर कर दी कि समय सीमा में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जाने से उस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। विपक्षी सदस्यों के भारी शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं प्रश्नकाल में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह अनुपस्थित रहे, उनकी जगह मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब दिया। कांग्रेस के सुनील उइके ने पूछा कि क्या शिक्षक ई अटेंडेंस व्यवस्था से नाराज हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से अधिकांश शिक्षक अब समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं। वहीं कांग्रेस के डॉ. हीरालाल अलावा ने अनुसूचित जनजातियों की भूमि के अंतरण का सवाल उठाया, जिस पर सदन में देर तक सवाल जवाब चलता रहा। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के जवाबों पर सदन में कई बार ठहाके भी लगे। राजस्व मंत्री ने डॉ. हीरालाल अलावा और मंदसौर के कांग्रेस विधायक विपिन जैन को आश्वासन दिया कि उठाए गए मामलों की जांच करवाई जाएगी। सदन में आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और कांग्रेस के बाला बच्चन के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर संबंधित विभाग के मंत्रियों ने आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने उन गांवों को प्राथमिकता दी है जहां पंचायत भवन और सामुदायिक भवन नहीं है। सरकार पहले ऐसे स्थानों पर आवश्यक भवनों का निर्माण कराएगी ताकि ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसी दौरान विधानसभा में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य पंचायत व्यवस्था को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाना है। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।
2: अभी आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिच।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सुनते हैं यह गीत फिल्म बंटी और बबली से। अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाज़ें हैं। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4-4-1-6 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
3: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
4: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
2: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से

0: चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
3: हम जनमत मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से जनमत मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वन रक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं असगर अली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत नजरिए को एक अवामी तहरीक बनाने पर जोर दिया है, जिसमें नौजवान एक कलीदी रोल अदा करें। हुकूमत ने ये बात दोहराई है कि वो पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर बामाना बहस के लिए तैयार है। इसने नौजवानों के एहतजाज को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशों की नुक्ताचीनी की। अपोजिशन ने दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रखनांदाजी की। इसने बहस से पहले तालीम के महकमे के वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट मार्च के दौरान मुजाहरीन पर मुबैना तौर पर ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने से मुतालिक दरख्वास्तों पर मरकज और पुलिस से जवाब तलब किए हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बेहतर रेल सेफ्टी, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रेन हादसात में खातिरख्वाह कमी आई है। अमरीका ने ईरान पर यमन के हूसी ग्रुप की जानिब से बहर अहमर में सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का इल्ज़ाम लगाया है और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित भारत की तामीर का ख्वाब जन आंदोलन बनना चाहिए और मुल्क के नौजवानों को इस नज़रिए को बुनियाद फराहम करनी चाहिए। वजीर आजम ने नई दिल्ली में विकसित भारत अहदाफ के लिए मुतअल्लिका शोबों और देही तरक्की, ज़राअत और समाजी बहबूद की पेशरफ्त के जायजे के सिलसिले में सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतह मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। इस मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी, अहम वजारतों के सेक्रेटरी साहिबान के साथ साथ वजीर आजम के दफ्तर के सीनियर अहदेदारान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि अवाम की ज़रूरत के तहत तैयार करदा असलाहत के नफाज में तेज़ी आनी चाहिए और इनसे बामाना तब्दीली पैदा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि असलाहत का मकसद महज हुकूमत के कामकाज में बेहतरी लाना नहीं, बल्कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की जानिब मुल्क के सफ़र को तेज़ करना है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी मुजाहरे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मरकज नौजवानों के जज्बात व खदशात के हवाले से नहायत हसास है और तलबा के जायज़ मसलों को सुनने और इसके हल के लिए पुरअज़्म है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि कुछ लोग अपने सियासी मफाद के लिए तलबा के एहतजाज को इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: पार्लियामेंट में अपोजिशन के हंगामे पर वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने हर मामले पर बामाने बहस पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन अपोजिशन पार्लियामेंट के बजाय सड़कों पर इसके हल की गैर मुनासिब कोशिश कर रही है। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने आज कहा कि तलबा की जानिब से उठाए गए नीट पेपर लीक मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा, ये जाँच का मौजू है जिस पर वसी तर तबादला ख्याल की ज़रूरत है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि ये एक संगीन मसला है जिस पर संजीदा बातचीत की ज़रूरत है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले और तलबा के एहतजाज समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की जानिब से आज मुसलसल तीसरे रोज बार बार रखनांदाजी के पेश नज़र दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में जब ऐवान की कार्रवाई दूसरी मरतबा मुलतवी होने के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने नीट मामले पर नारेबाजी जारी रखी। एहतजाज जारी रहा तो ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल दिन में कांग्रेस के सी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तलबा के एहतजाज का मामला उठाया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने यह बात दोहराई कि हुकूमत मुकर्रर करदा पार्लियामानी जाब्तों के तहत और मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए सभी फरीकों के साथ बामाने बहस के लिए तैयार थी।
2: सरकार नी पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम का

0: सफेद होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी नीट मामले और दीगर मामलात पर बार बार रखनांदाजी हुई। कई मरतबा कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने यह कहते हुए अपोजिशन से तआवुन करने की अपील की कि हुकूमत बहस के लिए तैयार है। ऐवान बाला में खिताब करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर यह कहते हुए बहस से बचने का इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की इस मामले पर बहस पर रजामंदी के बावजूद उसने नई शरायत रख दी। ऐवान के रहनुमा जेपी नड्डा ने अपोजिशन के तर्ज अमल की यह कहते हुए नुक्ताचीनी की कि यह गैर जिम्मेदाराना और जमहूरी अकदार के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शफाफियत और जवाबदेही के तई पुरअज़्म रही है। अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहते हुए तालीम के मरकजी वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया कि इसके बगैर बहस नहीं हो सकती।
0: अगर फेल डिसीजन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। जब वो राजीनामा नहीं देंगे चर्चा यहाँ नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाओ।
1: शोरगुल जारी रहने के दरमियान राज्यसभा की कार्रवाई भी कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा में सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता स्टेज 6 पर बिजली प्रोजेक्ट के तहत ज़ेर तामीर सुरंग में हादसे के दौरान जान गंवाने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया और एक मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। इसके बाद सदर नशीं सीपी राधा कृष्णन ने मुल्क की पहली अंदरून मुल्क तैयार करदा हाइड्रोजन पर मबनी रेलगाड़ी के लिए हुकूमत रेलवे अहलकारों और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मानसून इजलास के मुसलसल तीसरे रोज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के शोर शराबे के पेश नजर बार बार मुलतवी करना पड़ी। रखनांदाजी की वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कोई कामकाज नहीं हो सका। हुकूमत की तरफ से बार बार इस यकीन दहानी के बावजूद कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस के लिए तैयार है, अपोजिशन ने अपना एहतजाज जारी रखा। आज लोकसभा की कार्रवाई 3 मरतबा और राज्यसभा की कार्रवाई 4 मरतबा मुलतवी की गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों फरीकों की बात सुनी और कहा कि हुकूमत एक खुले जहन के साथ बहस के लिए तैयार है। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से अपील की कि वो कार्रवाई में रखनांदाजी के बजाय एक तफसीली बहस में हिस्सा ले। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे अगर हुकूमत इस बात की यकीन दहानी कराए कि नीट पेपर लीक मामले पर जवाबदेही तय करने के सिलसिले में मुजाहरा कर रहे नौजवानों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को एक खत में जनाब वांगचुक ने कल रात अस्पताल आने के लिए दोनों वजरा का शुक्रिया अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हुकूमत के इकदाम की बदौलत संगीन नौयत के रेल हादसात की तादाद साल 2014-15 के 135 से घटकर इस साल 2026-27 के जून तक सिर्फ 2 रह गई है। लोकसभा में आज अपने तहरीरी जवाब में जनाब वैष्णव ने बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और बेहतर रखरखाव के जरिए रेल सेफ्टी को मुस्तहकम किया गया। जनाब वैष्णव ने मजीद बताया कि सेफ्टी से मुतालिक सरगर्मियों पर अखराजात साल 2013-14 के तकरीबन 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर पीर के रोज पार्लियामेंट की जानिब मार्च कर रहे मुजाहरीन पर किए गए मुबैना ताकत के इस्तेमाल पर मरकज और दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया ने हुकाम को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी समेत पुलिस कार्रवाई से मुतालिक तमाम सबूत को महफूज रखने की हिदायत दी है। मुफादनामा की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए बेंच ने हुकाम को जवाब सौंपने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। इस मामले की अगली समाअत 11 सितंबर को होगी। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब मुसाफिर खिदमात के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन DMRC ने हिफाजती वजूहात की बिना पर 17 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया था। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, 12 खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल थे। सिक्किम के नामची जिले में समरदंग में ज़ेर तामीर सुरंग में बचाव टीमों ने मज़ीद 8 लाशों का पता लगाया है। ताहम सुरंग के अंदर इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल के सबब इन लाशों को निकाला नहीं जा सका। अहलकारों ने कहा है कि कम दूरी तक दिखाई देने और मीथेन गैस के रिसाव ने बचाव कार्रवाई को ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। अब तक 13 लाशें बरामद की जा चुकी हैं जबकि सुरंग के अंदर कुछ अफराद फंसे हुए हैं। सिक्किम हुकूमत और कौमी पनबिजली पावर कारपोरेशन के सीनियर अहदेदारान मकाम पर सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: एनएचपीसी टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए मुख्तलिफ एजेंसियां आज लगातार तीसरे दिन भी कोशिशों में लगी रहीं। बचाव कार्रवाई 24 घंटे जारी है, ताहम कम बसारत और मीथेन गैस के रिसाव ने लाशों को निकालने में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। 8 लाशें टनल के दहाने से 2 किलोमीटर दूर हैं। इस दौरान सिक्किम हुकूमत ने हादसे में फौत होने वालों की लाशें आज उनके कुंबों को सौंपी। मरकज के अलावा सिक्किम हुकूमत और एनएचपीसी ने मुतासिरा कुंभों के लिए माली मदद का ऐलान किया है। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक मीटिंग हुई जिसमें मंदिर के इंतजाम, अतियात के निजाम, तकरियों और इंतजामी असलाहत जैसे मुख्तलिफ अहम फैसले किए गए। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की तकररी खाली अहदों को पुर करने और इसकी मजहबी कमेटी की नई सिर से तश्कील पर तबादला ख्याल किया। ट्रस्ट ने कहा कि खसूसी तहकीकती टीम की हतमी रिपोर्ट अभी मौसूल नहीं हुई है और मीटिंग के दौरान इस मामले पर बातचीत नहीं हुई। हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान नाज़ेबा मवाद नशर करने की बिना पर 50 OTT प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया है। लोकसभा में अपने तहरीरी जवाब में इत्तलात और नशियात के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुर्गन ने बताया कि हुकूमत शिकायतों की बुनियाद पर इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स पर बाकायदगी से कार्रवाई करती है। जनाब मुर्गन ने कहा कि हुकूमत ने डिजिटल मीडिया पर हालात हाजरा और ऑनलाइन मवाद के नाशरीन के लिए इदारा जाती मैकेनिज्म वजह करने के खातिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जवाबित 2021 को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात और वस्ती महाराष्ट्र में कल इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। भारतीय महकमे मौसमियात ने शमाल मशरक़ी भारत में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इसी तरह के मौसमी हालात की पेशगोई की है। अमरीका ने यमन के हूसी बागियों को उस ऐलान की मजम्मत की है जिसमें हूसियों ने बहर अहमर में सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी करने और तजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने सऊदी अरब के खिलाफ हूसी बागी ग्रुप की इस धमकी के लिए ईरान को मौरिद इल्ज़ाम ठहराया। चाइना ओपन बैडमिंटन में 2 मरतबा की ओलंपिक तमगा याफ्ता PV सिंधु अपने हमवतन उन्नति हुडा को हराकर खवातीन के सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज दोपहर प्री क्वार्टर फाइनल में हुडा को 21-14, 9-21 और 21-10 से शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी आलमी नंबर 11 इंडोनेशिया के अलवी फरहान को 21-17, 5-21 और 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत नजरिए को एक अवामी तहरीक बनाने पर जोर दिया है जिसमें नौजवान एक कलीदी रोल अदा करें। हुकूमत ने ये बात दोहराई है कि वो पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर बामाना बहस के लिए तैयार है। इसने नौजवानों के एहतजाज को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशों की नुक्ताचीनी की। अपोजिशन ने दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रखनांदाजी की। इसने बहस से पहले तालीम के महकमे के वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट मार्च के दौरान मुजाहरीन पर मुबैना तौर पर ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने से मुतालिक दरख्वास्तों पर मरकज और पुलिस से जवाब तलब किए हैं। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Ser Çakma Müşehri. ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक छोटा सा गाँव, एक साधारण रसोई और उसी रसोई से उठती एक बड़ी शुरुआत। जहाँ कभी सिर्फ घर के लिए अचार, पापड़ और मसाले बनते थे, आज वहीं से निकल रहे हैं ब्रांड, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियां। खेत के एक कोने में उगाई गई धनिया जब एक अत्याधुनिक पैकेज्ड ब्रांड बनकर उभरती है, या फिर किसी छोटे से शहर की बेकरी जब एक नए भारत के निर्माण की मिसाल बनती है, तब जन्म लेती है असली जमीनी क्रांति। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME स्कीम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। एक ऐसी योजना जिसने न केवल 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, बल्कि देश के अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक पहचान दी है। 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक आजीविका के अवसर और 44% महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कहानी है उस भारत की जो वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये योजना वित्तीय समावेशन, तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। साथ ही हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और वरिष्ठ कृषि एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार
1: जगदीश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है, इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर, और लगभग 75,000 से अधिक इकाइयां अब उद्यमी पंजीकरण, FSS, AI और GST के दायरे में आ चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस फॉर्मलाइजेशन को केवल कर या विनियमन के चश्मे से अगर हटाकर व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में देखें तो क्या समझते हैं आप?
2: देखिए, मुझे लगता है कि जो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जो बेसिकली गांव पर आधारित है या Tier 2 cities पर आधारित है या Tier 3 cities पर आधारित है, इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है। और इसकी जो योजना बनी है वो इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी राज्य में चले जाएं, आपको बाजार जिसमें आप अनाज के अलावा अपने घरेलू रसोई का जो सामान लेते हैं, उसके अलावा अपना नाश्ते का सामान लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको लोकली मेड मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने इस मार्केट पे इस तरह से कब्जा करके रखा था, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको नई नई स्कीम लानी पड़ती है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर, मतलब अगर आप कस्बाई स्तर पर चले जाए तो कस्बाई स्तर पर भी लोकली और मैन्युफैक्चर्ड, लोकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सिर्फ खाने पीने के पदार्थ ही नहीं, दूसरे भी पदार्थ आपको मिलते हैं। ये बहुत दिन से और बहुत वर्षों से ये बाजार डेवलप हो रहा था, मोदी सरकार ने पहली बार इसको फॉर्मली ध्यान दिया और इसके लिए एक अच्छी मजबूत योजना शुरू की। और ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, अगर आप जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे देश की, तो उससे करीब 1/4 तो होगी ही, अभी उसका आकलन नहीं हुआ है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बेसिकली रूरल बेस्ड है, ये कितने की है, कितने हजार करोड़ की, कितने बिलियन डॉलर्स की है, ये आकलन अभी किसी ने नहीं किया कि एक आध स्टडी इस पर है। लेकिन अगर आप पाएंगे तो इस समय देश भर में, और लोग लोकली, वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया है, इस जो डेवलपमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पर उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत ये योजना है, उसको भी इस बात को ध्यान में रख के दिया गया है कि गांवों, कस्बों और Tier 2, Tier 3 cities में, यहाँ तक कि आप जो बड़े शहर हैं उनमें भी आप पाएंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं, चाहे खाने पीने के पदार्थ हो, चाहे आपके इस्तेमाल के पदार्थ हो, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर तो खाने पीने की चीज, नाश्ते की चीज और मनोरंजन की चीजें

0: और सब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। इस इकोनॉमी को टैप करके इस योजना ने बड़ा और मदद पहुंचाई है उन सब उद्यमियों को जो अपने बल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: जी हरवीर जी, योजना ने हाल ही में 2 लाख से अधिक क्रेडिट लिंक्ड स्वीकृतियों का आंकड़ा छुआ है और इसमें 20,300 करोड़ से अधिक का निवेश भी आकर्षित हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग तंत्र में अंतिम मील तक क्रेडिट डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना में ऐसा क्या अलग रहा जिसने बैंकिंग तंत्र के प्रति सूक्ष्म उद्यमियों का जो हिचकिचाहट का भाव है उसे तोड़ा। क्या बैंक अब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को कम खतरे वाला क्षेत्र मानने लगे हैं?
2: एक तो ये अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें हमारे लिए है। अभी करीब 30 लाख करोड़ से ज्यादा का ये एक इंडस्ट्री है देश में और जो अगले 2 साल में मेरे ख्याल से करीब 45,000 करोड़ तक उसको पार कर जाएगा। अब ये जैसे अभी उपासना जी कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल की, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है, बड़ा कब्जा जो बड़े ब्रांड बड़े मार्केट एक्सेस उनके पास रहे हैं, और जबकि छोटे स्तर पर गांव से थोड़ा आगे हम जाए जो छोटे कस्बे छोटे शहर वहां पर तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोशिश की कि वो वैल्यू एडिशन में जो फूड प्रोडक्शन है उसमें जाए, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में जाए। वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि वो बेहतर उनके आय का जरिया बने और स्थानीय स्तर पर किफायती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बाधा आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए वो होती है वित्तीय संसाधनों की, जो हम रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल उसकी बात करते हैं। जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है और इसके पहले जब फॉर्मल सेक्टर की बात करेगा या बैंक्स को अप्रोच करेगा उसका उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तमाम सारे कोलेटरल चाहिए, फिर बैंक्स में इतना लंबा प्रोसेस है, उसको ये मिलना मुश्किल था और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिर सी बात है कि इसका स्कीम को ही इसी काम के लिए तैयार किया गया कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कुछ लाख रुपए से अपना काम शुरू करना चाहते हैं वो किस तरीके से फॉर्मलाइज एंटरप्रेन्योर के रूप में और उनकी जो यूनिट है वो कैसे फॉर्मलाइज सेक्टर में जाए, जो गुणवत्ता के मानक है उनको पूरा करती हो और साथ में उसके लिए मार्केट की जो लोकलाइज स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करे। अब इस तरह की जो स्कीम जो बिना कोलेटरल के एक सीमित स्तर पर जो फाइनेंस मुहैया कराती है ऐसे जो एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनको कोई बहुत बड़ा जो तामझाम होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपके पास असेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फिर बैंक तय करेगा कि हम इसमें कितना डालेंगे और किस तरीके से वो असेस करेगा, उन सब झंझटों से मुक्त करते हुए इस तरह की स्कीम लाई गई ताकि ये जो बेहतर संभावना का जो क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये लगातार एक बात है जब हम कहते हैं कि जो भारत बड़े शहरों में नहीं महानगरों में नहीं जो मेजर इंडस्ट्रीज में नहीं है, जो छोटे स्तर पर है जो रूरल इंडिया जिसे हम कहें या हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज हैं वहां पे जो लोग एक तरीके से अपने उद्यमशीलता के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उनके पास क्रेडिट की सुविधा दी गई, उनको टेक्नोलॉजी का नो हाउ, उनका जो हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं कि उनको बताया गया कि किस तरीके की तकनीक आपका जो उत्पाद है उसको तैयार करने में काम आएगी, किस तरीके की प्लांट और मशीनरी जो है इसमें जरूरत होती है उसके लिए कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा और आप अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि जो छोटे एंटरप्रेन्योर है उसके सामने ये भी एक चैलेंज होता है कि जो मार्केटिंग का जो एक स्किल होती है उसके पास उतनी बेहतर नहीं होती जो बड़ी कंपनियों की जो मार्केटिंग के जो लोग हैं या उनके जो संसाधन है उनके पास जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। तो उस चैलेंज को दूर करते हुए ये जो सारे स्टेप्स हैं फाइनेंस अवेलेबल कराने से लेकर के उसको ट्रेंड करने तक मार्केटिंग के तक वो इस स्कीम की खास जो खूबी है और जो हम देख रहे हैं कि भाई 2 लाख से ज्यादा सैंक्शन इसमें हुए हैं तो ये अपने आप में या 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश हो चुका है तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो एक ये जो काम हो रहा है वो छोटे स्तर पर हो रहा है और जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है क्योंकि वो प्रोड्यूस भी वहीं से आ रहा है तो उसके जो उत्पादक हैं उनको अपने आसपास अपने उत्पादों के थोड़ा बेहतर कीमत देने का एक बाजार भी खड़ा हो रहा है। तो ये एक जो इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो इकोसिस्टम जो है इनमें से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो फिर माइक्रो से स्मॉल में जा सकते हैं, फिर वो और बड़े हो सकते हैं और बड़े हुए हैं लोग। इस तरीके के उदाहरण, जैसे दो उदाहरण इस आर्टिकल की बात आपने जिक्र किया, जिस तरह से छोटी जगहों पर इस तरीके की तमाम सारी जो कहानियां सामने आती हैं और उसी रास्ते चल के देश में कई बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश हुई है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लॉइट करने का और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार के साथ में उनके जो इकोनॉमी जो है उसको बड़ा करने का एक अच्छा एक तरीके से एक ये स्कीम बनी और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। उसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में। जिस तरह से लोगों की इकोनॉमी कंडीशन बदल रही है, उनके जो हाथ में अधिक पैसा आ रहा है तो वो प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं और उनको फिर ये है कि जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरफ न जाकर के जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध है वो उनके मार्केट जो है के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें हमारी जो GDP का करीब 7% ये सेक्टर बन गया है और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसके पास है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है जो हमारे पास जिसकी जो एक संभाव्यता जिसको हम कहते हैं उसका हमने बहुत छोटे स्तर का दोहन किया है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर जो है उनके लिए अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की।
1: हरवीर जी, जिन कहानियों का जिक्र कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि PMFME योजना के सबसे पहले जो लाभार्थी थे वो थे जमुना लाल पाटीदार और उनका आवेदन इस योजना के तहत पहला आवेदन था जिसे स्वीकृत किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण में कोई पृष्ठभूमि न रखने वाले 10वीं पास उद्यमी जमुना लाल पाटीदार को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इस योजना से मिले। उन्होंने उसका निवेश धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू करने में किया। योजना के तहत उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनका विचार एक सफल उद्यम में बदल गया और आज उनके पास 5 से ज्यादा लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उनका व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जमुना लाल पाटीदार की ये कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात को हम आगे बढ़ाएं तो एक बड़ी चुनौती ये आती है कि अगर हमें वित्तीय सहायता मिल भी जाए तो जो छोटे स्तर के जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं या जो गांव के दूर दराज के किसान हैं, गुणवत्ता नियंत्रण कैसे करें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न डे की पैकेजिंग है और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। क्या आप देखते हैं कि इस दिशा में किस तरह के परिवर्तन लाने की जरूरत है और कितना बदलाव पिछले एक दशक में आया है?
0: देखिए, ये चैलेंज तो है और ये चुनौती भी है उन सब छोटे उद्यमियों के लिए जो अपने घर से या अपने गांव से ऐसा उद्यम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो फल हैं और सब्जियां हैं इनके बहुत कम पदार्थ बनते हैं, 2-3% के लगभग इसका योगदान होता है फूड प्रोसेसिंग में। जबकि फूड प्रोसेसिंग भारत में और सनराइज सेक्टर बोला जाता है इकोनॉमी की भाषा में, और इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा कृषि उत्पाद करने वाला देश है, सबसे अधिक दूध उत्पाद करने वाला देश है और हम जो है, मतलब आप सोचिए कि फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में भी भारत की जो रैंकिंग है वो वैश्विक रैंकिंग में ऊपर ही है। ये पूरा सेक्टर जो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, हमारा खाने की वस्तुएं बनती हैं उसमें 32%, जैसा हरवीर सिंह ने बताया, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जबकि बहुत चुनौती है। और इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह हैं जिनको आप हर राज्य में, और हर राज्य सरकार भी उनको अपनी तरफ से मदद दे रही है, आप किसी भी राज्य में चले जाएं, लोकल अखबार उठा के देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी आपको जरूर मिलती है। कोई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट अपने गांव में जाकर एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप शुरू करता है और 200-500 किसानों को अपने साथ जोड़ता है, उनको नई टेक्निक सिखाता है। 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है आप छोटे शहरों तक पहुंच गई है और लोग उससे कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको एक विशेषज्ञ सहायता की जरूरत जरूर है, उनको ब्रांडिंग ठीक से करने की जरूरत। अभी जो प्रोड्यूस वो तैयार करते हैं वो इतना ही होता है कि वो लोकली खप जाए, और इसका उद्देश्य भी मुझे यही होना चाहिए कि और जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, फल और उसके जो प्रोसेस्ड है पदार्थ वो सारे, और जो आप मिलेट्स आ गए, मिलेट्स के कई पदार्थ बनकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हमारा जो खाद्यान्न है उसकी क्वालिटी के बारे में हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कहीं कोई एकाध कोई खेप वापस आती होगी, अदरवाइज वो सब मार्केट में खपता है। आप यूरोप में घूमकर आइए, आपको भारत के हजारों छोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं। लोग अमेजोन पर उसको ऑर्डर करते हैं और लोग खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना बड़ा, इसको सनराइज सेक्टर ऐसे ही नहीं कहते, इसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि ये हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के आधे के करीब पहुंच सकता है। इसी समय उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है। उनको जरूरत किस बात की कि जो राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही है, स्वयं सहायता समूह वर्षों से काम कर रहे हैं और जिन राज्यों में वो सफल हुए हैं, वो आप जैसे यूपी है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट्स को और प्रधानता दी जाती है, स्वयं सहायता समूह को कहा जाता है कि इनको आप बनाइए, इनको हम प्रमोट करेंगे, मार्केट से लिंक करेंगे और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। ये हो रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं हो रही है, हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही है। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेती है, ये केंद्र की योजना बहुत अच्छी योजना है, ये मैं समझता हूँ कि जो सहायता राज्यों से मिल रही है उसके ऊपर है। अब 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिला और 75,000 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर इसमें लिस्टेड हुए जीएसटी में, FSSAI में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो जरूर मिलना चाहिए। मिलेट्स जब से आए हैं, मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थ और प्रोसेस फूड बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जहां मिलेट्स होते हैं। तो और फिर क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करते हैं उसके लिए उसको वो मदद, ये जो स्कीम है इसमें ये सब दिया जा रहा है, लेकिन इसका आकार बढ़ाने की जरूरत।
1: हरवीर जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या एग्री सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, और दूसरा कि छोटे स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्या ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सस्टेनेबल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे ग्रामीण युवा हैं, जो वहीं पर रुकना चाहते हैं और कुछ बड़ा सोच के काम करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए मौका मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ट्रेनिंग में थोड़ा अभी कोशिश है इस स्कीम के सामने, लेकिन हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के और फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, निफ्टम्स हैं, तो जरूर इसमें इनिशिएटिव लेकर के जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए वो थोड़ा उनको तैयार भी करना चाहिए इसके लिए कि आपके लिए यहाँ पर बड़ा इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी है, आप आगे जा सकते हैं और साथ में आप स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। फूड में ये फैक्टर जरूर है कि जो गुणवत्ता है और हाइजीन है, हमारा FSSAI है, उसके जो मानक है, उसके स्टैंडर्ड्स जो है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, तो वो उनको पूरा करते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे लाए। क्योंकि अगर आप जो फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप उनको पूरा करेंगे और आपका प्रोडक्ट उस तरीके से बाजार में लोगों तक पहुंचेगा, तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्थानीय स्तर पर बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि आप उसी लेवल पर उसकी क्वालिटी जो है, उसकी हाइजीन उस स्तर पर ला रहे हैं और आप कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम है, आप सोर्सिंग वहीं कर रहे हैं, आपकी जो चेन है सोर्सिंग से लेकर मार्केटिंग तक की वो बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपके एक्सपेंसिव जो है वो इकोनॉमिकल है दूसरों के मुकाबले। तो ये एक अच्छा बहुत ही मॉडल कामयाब हो सकता है। और इसको क्योंकि बात इसमें फॉर्मलाइजेशन से हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ बढ़ाना है हमें, उसमें उनके जो FSSAI के उनके पास सर्टिफिकेट्स हों, उनके पास जो है ये बाकी टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज हों, वो सब इसका पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुहिम के रूप में धीरे धीरे, जैसे लेकिन ये भी रीजनेबल नंबर आ गया है, अगर 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसके फुटप्रिंट्स पूरे देश में मिलेंगे, इनको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और हम देख रहे हैं अगर आप जाएंगे मार्केट्स में, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बेसिक चीजें जो है मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स बना करके, चना में, मक्का में, और बहुत सारी है, जैसे मैंने मिलेट्स की बात की, मैं कुछ महिलाओं से एक बार मिला था हमारे एक कार्यक्रम में, वो आए उड़ीसा से, उन्होंने कहा कि जब ये हॉकी कप एक वहां पर जब हुआ था भुवनेश्वर में, वहां पर उनको अच्छा मार्केट मिला और अच्छे दाम मिले, क्योंकि मिलेट के बिस्किट्स जो है उनके बहुत बेहतर तरीके से उनको मार्केट मिला और पसंद किया गया। तो ये मतलब इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट एक्सेस में, इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जहां इस तरह का कैप्टिव मार्केट होता है, कोई बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर इन लोगों को मार्केट एक्सेस दिलवाना चाहिए, जिससे कि इनके जो बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद हैं वो लोगों के बीच में पहचान बनाए और ये जो मार्केटिंग है वो फिर इनकी विकसित हो।
1: जी जगदीश जी, अगर इस योजना और खाद्य प्रसंस्करण को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो जो 44% महिला नेतृत्व वाले जो उद्यम हैं उनको स्वीकृत ऋण मिले हैं, साथ ही साथ 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल मिली है, यानी जो महिलाओं को आज तक हम सहायक श्रम मानते आए थे, बहुत बड़े तबके के लिए सहायक श्रम की भूमिका थी उनकी, अब वो बिजनेस ओनरशिप में परिवर्तित होने जा रही हैं। आपको क्या लगता है जब महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और ज्यादा तकनीकी तौर पर सक्षम बनाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा, तो आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब भारत को बनाएं, उस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?
0: मुझे लगता है महिलाएं बहुत बड़ा और हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग कोई आज की नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अगर आप देखें कि कितनी चीजें हमारे घरों में बनती है, आज उस क्वालिटी की चीजें आपको बाजार में नहीं मिलती, हमारी नानियों दादियों ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं हमने खाया है, तो ये ऐसे ही नहीं बनती, फलों से, सब्जियों से, अनाज से, मोटे अनाज से, इन सब से वो बनाती रही। मैं समझता हूँ उसमें अगर आप महिलाओं को बढ़ाना चाहते तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो पुराना उनका ज्ञान, पुराने जमाने की जो उनकी विधियां हैं, जो बहुत कम खर्च में ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, वो कोई भी पदार्थ उसमें वेस्ट नहीं जाता। अभी तो हम अपने जो कृषि टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें से सिर्फ 10% ही फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, और फलों और सब्जियों में तो 2-3% ही कर पा रहे हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े अपनाएं तो आप यकीन मानिए वो महिलाएं ऐसा कार कर सकती है। 44% महिलाएं कम नहीं होती है। अगर एक योजना जिसमें 2 लाख से ज्यादा सैंक्शन हुए, 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, उसमें अगर 44% महिलाएं हैं तो ये मानकर चलिए कि महिलाएं इस योजना को आगे बढ़ा रही हैं। उनके उस ज्ञान को, जैसे ही क्या होता है, अगर आप कोई स्वयं सहायता महिलाओं का समूह है और उसमें जब कोई एक टेक्निकल विशेषज्ञ जाता है तो वो आधुनिक पढ़ाई लिखाई वाला होता है, वो जब उनको बताने लगता है तो वो हंसती हैं आपस में कि क्या बोल रहा है, इसको नहीं मान, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता। तो उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उस नॉलेज को किस तरह से आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकलने वाला है। जिन देशों ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया है उन्होंने पुराने नॉलेज को छोड़ा नहीं है, पुरानी टेक्निक्स को छोड़ा नहीं है, उसको उन्होंने उसको नया रूप दिया, टेक्नोलॉजी में उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये अडॉप्टेशन अगर आप करते हैं इस योजना में तो यकीन मानिए महिलाएं इस योजना की मतलब कर्णधार हो सकती हैं। और बड़े पैमाने पर कितना प्रोड्यूस हमारा बेकार जाता है, आलू पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बेकार फेंका जाता है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, अगर है तो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। टमाटर कितने ही राज्यों में टमाटर फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में तो एक पूरा जिला है टमाटर से सड़कों पे फेंक देते हैं, प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है। फिर प्रोसेसिंग की यूनिट अगर लगा दी जाए तो उसको मार्केट एक्सेस नहीं है, और वो उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए, जीवन अवधि है तो वो प्रोड्यूस उस अवधि में पहुंच जाए कंज्यूमर तक, ये सब व्यवस्था आपको निको सीखनी पड़ेगी। और उसके लिए जो मेरा जोर इस बात पर है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएंगे, तो आप यकीन मानिए महिलाएं जो आज कर रही है ना, जो स्वयं सहायता समूह की छोटे छोटे उद्यम चला रही है, जैसे मिलेट्स के बिस्कुट छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव-गांव में ये बन रही है चीजें, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग ये दोनों को संभालने की जरूरत है। तो अगर आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाते हैं, अगर मशीनरी नहीं है तो बनाई जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें लोग बना रहे हैं। मैंने छोटे स्थानों पे अमरावती महाराष्ट्र का छोटा स्थान है, वहां 2-3 यूनिट्स देखी जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसने उनको एक इंजीनियर मिल गया, उसके सहारे उन्होंने इसको अपना लिया। तो ये नए प्रयोग वो लोग उनके दिमाग में आते हैं, हमने एक योजना बना दी और योजना का एक फिक्स ढांचा है तो उसको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए कि हाँ ठीक है इसको भी हम लेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे। इसने आपके पास 4 ऐसी योजना है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय जो है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और पीएमएफएमए के साथ में ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी है, जो इन सब योजनाओं में कैसे लिंकेज हो और इन सब योजनाओं का लाभ फूड प्रोसेसिंग को कैसे मिले, मंत्रालय इसके लिए कोशिश कर रहा है, नो डाउट, मतलब उनके उद्देश्यों में भी लिखा है और ये सब योजनाएं फूड प्रोसेसिंग को मदद करती है, उस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको शामिल करना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि अच्छा हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमारा बनाने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अलावा अगर पुराना कोई अच्छा फार्मूला है तो हम उस फार्मूले को अपनाएंगे। तो यकीन मानिए हमारा, हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें ग्रो करने की जबरदस्त संभावना है। अभी हम 30.5 के लाख करोड़ के आसपास का ये सेक्टर है, इसको आप चौगुना

0: सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे इस सेक्टर में है। तो मैं समझता हूँ कि योजना एक उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है और इसको इन सब चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। और मेगा फूड पार्क और जो ये बड़ी पीएम किसान संपदा योजना के तहत बन रहा है, कोल्ड चेन बन रही है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बन रहे हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, टेक्नीशियंस है, उनको गाँव में जाना चाहिए आसपास के, और जहां वो प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है, उसको कैसे मदद दी जाए ये कोशिश करनी चाहिए, उनको कैसे हम सहायता दे सके उसको। जब आप इस पीएम एफएमई से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा उसका मुझे लगता है। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बना देने से अब बात नहीं बनती है, उसके साथ नीचे भी लोगों को जोड़ा जाना चाहिए।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम में अब समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड के समय इस योजना को शुरू किया गया था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर भविष्य की बात करें तो अगले 5 से 10 वर्षों में आप इस योजना से भारत के ग्रामीण इलाकों की प्रगति को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इस योजना का दायरा और व्यापक होता जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन जो एक गंभीर समस्या है, उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा?
2: बिल्कुल, देखिए, एक तो अभी तक के जो नतीजे हम देख रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरी बात ये है कि ये हमें हमारे तमाम सारे पॉलिसी एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट ज्यादातर ये सब मान चुके हैं कि जो लिबरलाइजेशन में हमने उम्मीद लगाई थी कि लोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर बड़ी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जाएंगे, उसकी संभावनाएं अब कम है। हमें जो रास्ता ढूंढना है इन लोगों के लिए, उनके इकोनॉमिक वेलबींग का, उनके बेहतर का, वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही ढूंढना है। तो ऐसे में इस तरह की स्कीम को और बेहतर करके और वहां पर और ज्यादा संभावनाएं पैदा करके क्या हम कर सकते हैं, कैसे इसे बड़ा निवेश ला सकते हैं, वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि बिहार में कुछ इस तरीके का एक छोटे स्तर पर सोलर पावर कोल्ड रूम बनाए, बहुत ही पायलट लेवल पे, और उसमें महिलाओं ने अपने जो, जैसे उपासनी जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे फल और सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं बड़े पैमाने पर, उन्होंने उसमें रखना शुरू किया, उनको एक मेंबर बना करके किया गया काम। तो ये छोटा सा काम था लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उनका वेस्टेज कम हो गया, उनके प्रोड्यूस को बेहतर दाम मिलने की स्थिति पैदा हो गई। इसमें भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो शेल्फ लाइफ जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोसेस होकर के आते हैं उनका अगर कम है तो कम्युनिटी लेवल पर उनके लिए ये इस तरीके के कलेक्टिव जो अप्रोच के जरिए जो फैसिलिटी है उसमें भी साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा तंत्र सरकार को बनाना चाहिए जो इनके साथ सीधा जुड़ सके।
1: छोटे छोटे कदम जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो वो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पूरी तस्वीर बदल देते हैं। पीएम एफएमई योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उन लाखों हाथों की ताकत है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं, जहां एक छोटा सा यूनिट एक परिवार की उम्मीद बनता है और वही उम्मीद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ती हैं तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं जिंदगियों में दिखाई देता है। हमारे अतिथि जगदीश उपासने जी और हरवीर सिंह जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है नाटक सफ़ेद भेड़िये। इसके लेखक हैं हाशिम अस सादिक और प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढूंढियाल।
1: प्रस्तुत है नाटक सफ़ेद भेड़िये। लेखक हाशिम अस सादिक। प्रस्तुतकर्ता राकेश ढूंढियाल।

0: अरे कबीर, आओ यार, कैसे हो?
1: एकदम बढ़िया। और सुनाओ, तुम कैसे हो?
0: भाई मैं भी ठीक हूँ।
1: एकदम ठीक। यार राकेश, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
0: हाँ हाँ कहो ना।
1: राकेश, मेरा एक फ्रेंड है, क्लासिक टावर के फ्लैट नंबर 15 में रहता है।
0: मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्लासिक टावर तो आजम भाई स्ट्रीट में है ना?
1: हाँ हाँ वही। अमजद का कहना है कि उस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 5 में नए टेनेंट्स आए हैं।
0: अच्छा,
1: उनकी एक्टिविटीज उसे कुछ डाउटफुल लग रही है।
0: लेकिन डाउट की वजह क्या है?
1: यार उसका कहना है कि वहां एक अधेड़ उम्र की औरत 5-6 लड़कियों के साथ रहती है।
0: हाँ हाँ
1: और उनके साथ मर्द कोई नहीं रहता।
0: अरे ऐसे बहुत से फ्लैट्स हैं यार जहां सिर्फ औरतें रहती हैं।
1: केवल ये बात नहीं है यार, वो लड़कियां बहुत मॉडर्न अंदाज में बहुत बन सवर कर निकलती हैं।
0: अरे तो ये भी कोई खास बात नहीं है कबीर।
1: ओहो यार, उस फ्लैट में 3-4 लोग आते हैं जो सूरत से लफंगे लगते हैं।
0: अच्छा,
1: लड़कियां उनके साथ काफी घुली मिली रहती हैं और फ्लैट का दरवाजा भी ज्यादातर बंद रहता है। अमजद का ख्याल है कि वहां कोई सेक्स रैकेट चल रहा है। यार अमजद को मालूम है कि मैं इंटेलिजेंस में हूं, ये बात उसने मुझसे इसीलिए कही। अब क्योंकि ये इलाका तुम्हारे अंडर में आता है,
0: हाँ हाँ
1: इसलिए ये बात मैंने तुमसे कही।
0: अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं।
1: अच्छा ओके राकेश, मैं चलता हूं।
0: यार कबीर, चाय पिए बगैर कैसे जा सकते हो?
1: चाय यार फिर कभी सही, जरा मुझे राउंड पर जाना है। ओके सी यू।
0: ओके बाय कबीर।
2: मैं कमिंग सर।
0: ओ यस यस, कमिंग, सिट डाउन।
2: थैंक यू सर।
0: आजम भाई स्ट्रीट का एरिया जानती हो?
2: यस सर, अच्छी तरह से।
0: वहाँ क्लासिक टावर है?
2: जी सर, वो तो बहुत मशहूर बिल्डिंग है, काफी अमीर लोग रहते हैं वहाँ।
0: भाई हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है, उसे वर्कआउट करना है।
2: जी सर।
0: उस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 5 में कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज चल रही हैं।
2: अच्छा।
0: यह भी डाउट है कि वहाँ सेक्स रैकेट भी हो सकता है। तुम उस फ्लैट में जगह बनाने की कोशिश करो।
2: जी बना लूंगी सर।
0: लेकिन किस तरह?
2: सर ऐसी बिल्डिंग्स में काम वाली बाई की हमेशा जरूरत रहती है।
0: हाँ गुड, तुम्हारा अप्रोच मुझे सही लग रहा है, क्योंकि उस फ्लैट में नए टेनेंट्स आए हैं।
2: ओ फिर तो और आसानी से हो जाएगा सर।
0: कविता, ये काम इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एंटी सोशल लोग बहुत अलर्ट होते हैं।
2: सर ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मुझे एक मेल मेंबर की जरूरत पड़ेगी।
0: अच्छा करीम कैसा रहेगा?
2: फाइन, एकदम फाइन सर।
0: ओके, मैं ऑफिशियली ऑर्डर भिजवाए देता हूँ, तुम करीम के साथ काम शुरू कर सकती हो।
2: थैंक यू सर, नाउ आई एम ऑन माई हील्स।
0: तुम्हें इस सिलसिले में जो कुछ भी चाहिए होगा उसका इंतजाम कर दिया जाएगा।
2: थैंक यू।
0: लेकिन रिपोर्टिंग के बारे में बहुत अलर्ट रहना होगा, सिर्फ पर्सनली या करीम के थ्रू।
2: ओके सर। भगवान तोर भला करेगा, बहुत ही भूखी हूँ माई, बहुत ही भूखी। ईश्वर तेरा झोली भर देगा माई।
3: हे जन्म जली, काय गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही रे?
2: अरे अरे दे देना सिठानी कुछ, भूखी का पेट भर जाएगा और भगवान तेरा भला करेगा।
3: अरे यहाँ कान फूट गए, मनो तेरा मुंह नहीं दुखा रहे चिल्ला चिल्ला के। चल इते से भाग,
2: जो बचा है वही दे दो।
3: अरे सांड निघाई तो रखी है और हाथ पसारे फिर रही तू। हराम की दार जो लग गई रे तुम लोगों को, मेहनत करके कमाने में जान निकलती है ना।
2: भक देदा देदा माई।
3: अरे पाँव छोड़ रे, पाँव छोड़। बिलैया घाई लिपट रही रे पाँव से, सीधी सीधी खड़ी हो। हाँ सीधी।
2: अरे माई, अरे लोग भीख देते हैं माई, काम को नहीं देते।
3: ये काम मांगेगी तो काम सोई मिलेगा, अब तेरे द्वारे सर पर दौड़ के काम तो नहीं चलाएगा ना रे।
2: अरे माई हमारी तो कुलगार गृहस्थी फुटपाथ पर है, अब कहीं काम मांगे जाओ तो कागज पत्र मांगत है। फिर पुलिस थाने जाने को कहते भाई, हमारी तो काया कापती है पुलिस वालन के नाम से।
3: अच्छा तो तू फुटपाथ पे रहती है?
2: और का माई।
3: अरे अरे तो आजा,

0: अंदर तू आ, आजा।
1: नहीं नहीं भाई, जौन देना है ना यहीं से दे दो, अंदर ना आओ।
0: अरे काय रे, मैं तो खा जाऊंगी का।
1: अरे माई, जौन मने ही अंदर बुलावत है ना, वो करनी है ठीक ना होते। हाँ
2: ऐसी कंचन काया लेके डोलेगी तो मर्दों की नियत तो खराब होएगी ना रे।
0: अच्छा तू अंदर तो आ जा। अरे सुन, हमारे यहाँ कोई मर्दुआ नहीं है रे, आ जा। अरे बैठ, आराम से बैठ। अच्छा जी बता, तेरा कोई ठो ठिकाना भी है या ऐसे ही तू हवा में घूमती रहती है, है?
1: अरे माई, वही काली मंदिर के लगे फुटपाथ पे रहती हूँ।
0: अच्छा अकेली रहती है?
1: नहीं माई, मोर मरद रहते साथ में।
2: अरे वही नाश पीटा तो मुझसे भीख मंगवाता है दारू पीने खातिर, और दारू नहीं मिले ना तो पीटता है माई, मौत पड़े।
0: जी बता, हमारे ते तू काम करेगी? वो जोन पुलिस के पास वो भेजते है ना कागज पत्तर, अरे वो भी नहीं चाहिए हमें तो, और ऊपर से 500 रुपया भी देंगे हम तो।
1: लेकिन मरद से पूछ के बताऊ, अभी तो कुछ खाए के दे दो माई।
0: अरे जे ले तू। हाँ
1: 10 रुपया? अरे 25-50 तो दे दो माई। अरे भगवान का दिया सब कुछ तो है। ए माई, कोई मरद घुसा थे घर में, देखो तो जरा।
0: अरे तो तू खड़ी काय हो गई रे, बैठ ना। बैठ बैठ। अरे ये तो हमारी बहन का बेटा है, मिलबे के लाने चलो आओ।
1: हाँ नहीं नहीं, हम जाते मैं।
0: अरे सुन सुन, अरे सुनता, अरे कितने जा रही? हिरनी गाई चौकड़िया वर्ती भाग गई। रास्ते पे आ गई ना तो नोटों की बरसात बरसा देगी जे जन्म जली।

0: करीम,
1: हाँ।
0: ये सेठानी के यहाँ जो आदमी आया था,
1: हाँ।
0: वो छुप छुप कर हमें फॉलो कर रहा है। पक्के पियक्कड़ की एक्टिंग करते रहना।
1: ठीक है। कायरी, कहाँ थी तू अभी तक? हैं? कैसे हो? तेरे को आने में इतनी देरी? बोल बोल।
0: तेरी ठठरी उठे, अब मत मार। भूखी को मार रहा है, करम जले तेरे हाथ ही टूट जाए। अरे बस कर।
1: बोल, अब करेगी देरी? बोतल लाने में देरी करेगी? अब
0: ये ले नासपीटे, पकड़।
1: अरे आज तो पूरा अद्धा ले आया।
0: ये ले तेरा चिरका, कब बखत जोड़ जोड़ तोड़ दिया।
1: ये क्या है?
0: रोटी है और का है? सवेरे से भूखी हूँ, पहले खाना खा ले फिर पीना इस डायन को।
1: एक काम कर, तू खा ले, मैं तो पाव बाटली भीतर डालने के बाद खाऊंगा।
0: जो मर्जी आए कर।
2: मैं कम इन सर?
3: हाँ हाँ करीम, आओ आओ बैठो।
2: थैंक यू सर।
3: एक महीने के बाद आए?
2: सर सेठानी के गुर्गे हम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।
3: अच्छा,
2: बड़ी तरकीब से आपके पास आया हूँ।
3: कौन सी तरकीब?
2: सर हुआ ये कि आज पीने के बहाने हमने ऐसा हुल्लड़ मचाया कि लोगों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस पकड़ के मुझे थाने ले आई और वहां से मैं आपके पास।
3: भाई तरकीब तो अच्छी है।
2: सर मेरे मोबाइल पर कविता मैडम का मैसेज है।
3: हाँ हाँ,
2: आप पढ़ लीजिए इसे।
3: लाओ। सर शक सही है, लता बाई नाम की एक औरत वहां सेक्स रैकेट चला रही है, चार लड़कों की मदद से। अच्छा, यहां लड़कियां और उनकी संख्या बदलती रहती है। ओहो, लगता है यह फ्लैट किसी बड़े रैकेट का छोटा सा हिस्सा है। लता खट भाऊ के किसी आदमी के कांटेक्ट में रहती है। मैं यहां पूरी तरह सेट हो चुकी हूं। गुड, मैं लता का भरोसा जीतने में सफल हो गई हूं। अच्छा, वो मुझे रास्ते पर लाने की सर तोड़ कोशिश कर रही है। अच्छा, वैसे वो करीम से घबराती भी है। ओवर एंड ऑल सर। करीम?
2: यस सर।
3: पब्लिक अगर अलर्ट हो जाए तो पुलिस के हाथ आसानी से मुजरिम तक पहुंच जाते हैं, जैसा इस केस में हुआ।
2: सर एक बात है आपसे कहना।

0: सब थाने के अमले को आप ये हिदायत देने का कष्ट करें कि वो हमसे फुटपाथ छाप लोगों की तरह बिहेव करे और सब हमसे बिल्कुल अनजान बने रहें।
1: बिल्कुल, तुम लोग काफी संभल कर काम कर रहे हो, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ।
0: ओके सर, मैं चलूँ सर।
1: ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।
0: थैंक यू।
2: अरे मैं तो सोच रही थी कि तुम मट्ठर होएगी रे, ठेल ठेल के तुझसे काम लेना पड़ेगा। अरे मनो, तू तो मशीन गाइंग काम कर रही रे, बहुत ही फुर्ती है तेरे हाथ पावन में।
3: अरे माई, यह बड़े फुर्ती से करता हूँ कि वो नास पीटो ना आधम के। अरे तन को देर हो जात है माई, तो झोपड़िया तक घसीटता हुआ ले जावत।
2: हाँ, उसे देख के तो मुए भी घबराहट होते। तू ऐसे दानों को छोड़ का नहीं देती रे। हमारे एक जानने वाले हैं, खटभाऊ नाम है, नोट भरे पड़े हैं उनके पास, रखबे तक को जगह नहीं है। सुन, उन्हें काम वाली चाहिए, तू उनके यहाँ भी काम कर ले, पूरे 2,500 रुपया मिले हैं।
3: 2,500? माई, उस नास पीटे से पूछ अब, तब बताऊ। अच्छा, अब चला था मालकिन।
2: आओ जा।
4: करीम।
0: यस सर।
4: ये देखो, खटभाव का रिकॉर्ड मिला है।
0: जी।
4: आदि मुजरिम है, पहले ये लाल टकलू के गैंग में था, बल्कि उसका राइट हैंड। 5 साल पहले लाल टकलू मुठभेड़ में मारा गया था।
0: सर, ये लाल टकलू वही तो नहीं जो तलोजा के पास मारा गया था?
4: हाँ बिल्कुल वही। उसके बाद पता चला था कि यह नॉट आउट की गैंग में शामिल हो गया था, उस समय से आउट ऑफ सीन था, और अब इसका केस इतने साल बाद सामने आया है।
0: नॉट आउट का रैकेट तो इंटर स्टेट है सर, और शायद इसके तार बाहर से भी जुड़े हैं।
4: तुमने ठीक कहा करीम, इसीलिए हमें केंद्र से सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि हमने जो जाल मछलियां पकड़ने के लिए डाला था, अब उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंसते नजर आ रहे हैं।
0: सर ये तो चिंता का विषय है, मैडम इतने खतरनाक मुजरिम के यहाँ काम कर रही हैं।
4: हाँ मुझे मालूम है, तुम दोनों बहुत रिस्की गेम खेल रहे हो, मगर ये तो करना पड़ेगा ना।
0: सर मैं कविता मैडम के पीछे साये की तरह रहता हूँ और रहूंगा भी, मगर खटभाव के फ्लैट में तो वो अकेली ही रह जाती है ना, ये बहुत खतरनाक है सर।
4: भाई जिस तरह कुछ लोगों को क्रिकेट खेलने का शौक होता है, कुछ को हॉकी खेलने का, तो कुछ को शतरंज खेलने का, इसी तरह हम पुलिस वालों को खतरों से खेलने का शौक होता है।
5: क्या बात कही है, 100% करेक्ट।
4: ओहो कबीर, आओ कबीर आओ।
0: गुड आफ्टरनून सर।
5: वेरी गुड आफ्टरनून।
0: अच्छा तो सर मैं चलता हूँ।
4: ओके करीम, मैंने तुम दोनों के लिए किसी भी इमरजेंसी के लिए इंतजाम किया हुआ है।
0: थैंक यू सर।
4: कबीर, मैंने तुम्हें आज ये बताने के लिए बुलाया है कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसका रिजल्ट आ गया है, तुम्हारे दोस्त का शक 100% सही था।
5: गुड
4: भाई, तुम्हारे दोस्त की पूरी डिटेल्स दो, हम उसे इनाम देंगे ताकि पब्लिक इसी तरह और जागरूक हो।
5: राकेश गिरफ्तारी हो गई?
4: नहीं, वो फ्लैट दरअसल एक बहुत बड़े रैकेट का छोटा सा हिस्सा है, ये लोग बहुत बड़े मुजरिम हैं।
5: जैसे?
4: हिस्ट्री शीटर खटभाव, जो आजकल नॉट आउट के लिए काम कर रहा है।
5: ये तो बहुत बड़ा रैकेट है। ऊपर वाला तुम्हें कामयाबी दे, वैसे आज तक तो नॉट आउट पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है।
4: इसीलिए हमारा प्लान है कि पिक्चर क्लियर होने पर पूरे देश में एक साथ एक समय इनके अड्डों पर छापा मारा जाए।
5: भाई वाह, ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा।
4: नहीं कबीर, केवल कर्तव्य का निर्वाह।

0: हे पोरगी, तुला सांगितलं ना मी काय बकबक करतोय.
1: अरे साहबजी, हमका तो कुछ सूझत ही नहीं, उधर कुआ उधर खाई, किते जाऊं साहब.
0: देख देख, तेरे को डरने का नहीं, अपुन क्या है तेरे को मालूम नहीं, तेरा चवन्नी छाप मर्द है ना, एकदम पॉम्पलेट माफिक. अपुन फ्राई करके खा जाएंगा.
1: अरे साहब जी, आपको नहीं पता हमरे मर्द को गुस्सा आ जाए ना तो दसियों के रोके ना रुके.
0: अपुन का एम तेरे को मालूम नहीं, गोली सीधा भेजे में बैठती है.
1: हाय दैया, ए साहब जी, हम तुमरे साथ न जाऊ, तुम तो होकर जाने के पीछे पड़ गए. अरे वही नहीं रहे तो हमरा तुमरे साथ भागने का फायदा.
0: अरे अरे अरे, तू तो बुरा मान गई रे. चल, अब उसको अपन ऐसा नहीं बोलेंगे.
1: देखो

साहब जी, हम तो पहले ही आपसे कहत रहे कि हम ओकरे भलाई के खातिर तोरे संग भागे के मन बनावत। हम उसे बहुत ही प्रेम करते साहब जी, हम तो तोसे रुपया लेके उसे देने।

0: अरे देख तो जरा कैसा झकास ड्रेस है, एकदम माधुरी के माफिक लगेंगी इस ड्रेस में। अरे उधर इच क्या देख रही है, इधर देख ना।
1: साहब जी, वो जो सामने खड़ा है वो अनिल कपूर जैसा लगत है ना।
0: अरे होंगा रे होंगा, तू इधर ड्रेस देख।
1: नहीं नहीं, हमको ओकरा के पास से देखना है। अभी आवत हो, अभी आवत हो साची।
0: अरे आई तर ए, अरे बाबा सुन तो।
2: अरे मेरा पर्स, ओ भाई भाई, ओ भाई।
0: अरे चिया, इसने तो उसका पॉकेट साफ कर दिया है। देवा देवा, पुलिस भी आ गई। अरे खड़बाऊ भाग, नहीं तो तू भी हवालात की हवा खाएगा।
3: अरे तुम दोनों अचानक,
1: हम जीत गए।
3: हाँ हाँ भाई, पहले तुम दोनों बैठो, अब पूरी बात बताओ।
1: यस सर। सर खटभाऊ मुझसे शादी करना चाहता था।
3: अच्छा।
1: करीम की वजह से वो ये काम यहाँ नहीं कर सकता था।
3: हाँ हाँ।
1: इसलिए वो मुझे इस शहर से भगा कर ले जाना चाहता था। इसलिए एक झोले में कपड़े भरकर मैं उसके साथ निकली।
3: गुड।
1: शहर से बाहर निकलने से पहले उसे मेरे लिए कपड़े खरीदने थे। मैं और खटभाऊ एक बड़े शोरूम से कपड़े खरीद रहे थे, वहीं एक आदमी का मैंने पर्स मार दिया।
3: समझ गया। और उस आदमी ने तुम्हें पकड़ लिया होगा, फिर तुम्हारी पिटाई हुई होगी, उसके बाद पुलिस आ गई होगी।
1: पुलिस को देखकर खटभाऊ भाग खड़ा हुआ। और उसके जाने के बाद प्लान के मुताबिक करीम मुझे बचाने आया।
3: हाँ।
1: पब्लिक ने इसे भी तबीयत से धोया और फिर पुलिस हमें थाने ले आई
3: और वहां से तुम यहाँ आ गए। मगर इससे फायदा,
1: ये लीजिए सर।
3: ये तो लैपटॉप है।
1: यस सर, ये खटभाऊ का लैपटॉप है।
3: ओहो।
1: घर से निकलते समय मैंने इसे बड़ी चालाकी के साथ झोले में डालकर छुपा लिया था।
3: भाई कविता, करीम, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। और ये लैपटॉप नहीं
1: जी,
3: भाई यही तो वो हथौड़ा है जो न सिर्फ खटभाऊ बल्कि पूरे रैकेट की कमर तोड़ देगा।
1: सर।
3: हाँ?
1: हम दोनों एक लड़की को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
3: गुड।
1: वो उन्हीं के जाल में फंसी हुई है और उसे वहां से निकालना है।
3: लेकिन अब तुम दोनों अंडरग्राउंड हो जाओ।
4: यस यस सर।
5: हम आओ जी होल खा रहा है। अरे पूरो एक मास बीत गाओ, वो जन्म जली को गए, उनके पति को भी धरती लील गई। अरे पतो नहीं है दो को। भाऊ तुम मानो ने मानो, मनो हमारो दिल तो सही में कह रहा हूँ कि पुलिस से टाको बिड़ो दोई को।
0: अरे पुलिस के लोग होता तो अभी तक रेट पड़ गया होता, एक महीना टाइम होने को आया।
5: अरे जा दिना से मोड़ी गई है ना, बई दिना से तो तुम वो लैपटॉप घूमो है।
0: अपन तेरे को कितनी बार बोला कि वो जन्म जली नहीं ले गई, अपन नशे में कितनी बार उसको किधर किधर भूला, पर उसने अपन को ढूंढ के ला के दिया।
5: अरे तुम्हारे सर पे तो ऊ की सुंदरता को जादू चल गा हुए। अरे इतने बरस हो गए, हमारे इतने से कोई मोड़ी नहीं भागी, मनो उन दो ही पापियों के जावे के बाद जे गुलाबो भाग गई।
0: पुलिस को उसकी लाश मिली है, ये देख।
5: बताओ बताओ। अरे हाँ जी, लाश तो भाई की है। अरे जी देखो भाव जी, कंगन है ना उनके हाथ में, जे कंगन एक बार हमने खूब उके हाथ से उतारने की कोशिश करी, मनु उन्हें उतारने नहीं दे। पक्की बात है भाव, जे लाश उसी मोड़ी की है।
1: सर ये तो बोल ही नहीं रही है, बुरी तरह डरी हुई है सर।
3: देखो डरो मत, यहां कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम इस वक्त पुलिस के स्पेशल सेल में हो।
1: वो लोग हम ही मार डरी है, अबे तक जो उन्हों लड़की भागी है होकर लाश है मिली है। पर गुलाबो तुम्हारी लाश तो पुलिस को मिल चुकी है, ये देखो अखबार।
3: मुजरिमों को धोखा देने के लिए हमने खबर छपाई है कि पुलिस को तुम्हारी लाश मिली है। अच्छा तुम कहाँ की रहने वाली हो?
1: हमीरपुर के साहब, जो प्राइमरी स्कूल है ना।
3: हाँ हाँ।
1: वही मां हमारे बाबू चपरासी हैं।

0: हमें हमारे बाबू के पास पहुंचा दे साहब, पहुंचा दे।
1: हाँ हाँ पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे। यदि तुमने हमें सब कुछ सच सच बता दिया तो जरूर पहुंचाएंगे।
0: सही सही बताओ साहब, दीदी हमें नरक से निकारे नहीं।
2: गुलाबो, अमीरपुर से तुम अड्डे तक कैसे पहुंची?
0: हमारे गांव में एक ठी बड़ी बहन जी है, लहंगा चोली की दुकान है उनका। गांव के सभी बिटिया उनके लगे जाती रही, सो हम हो जात रहन। वह बहन जी लड़कियन का मुफत में लहंगा चोली देत रही, इसे घर से लाए हमार पैसा बच जात रहा। और जब गांव में हाट लगे ना, तब लड़कियन का पैसा देत रही।
2: तुम्हारे माता पिता को ये सब मालूम है?
0: ये दद्दा, बापू जाने पड़ते तो हम ही नील पील कर देते।
3: अच्छा, उसके बाद क्या हुआ?
0: हम ही मोबाइल के बहुत शौक रहा, यह कारण हम बाबू से कहें।
1: तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मोबाइल दिलवाया?
0: नहीं, बाबू तो चिल्लाए पड़े, कहीं तय अभी धरती से उगा नहीं कि तुम्हें तो मोबाइल चाहिए। हमरे सामने अब कभू मोबाइल के नाम न ली है।
2: ओहो, अब रोने क्यों लग गई? आगे बताओ।
0: बड़ी बहन जी के हियाँ हर महीना एक ठे अंकल जी आउत रहे, वसूली करे आउत रहे।
3: कैसी वसूली?
0: वह अंकल जी गांव के लोगन का उधारी देत रहे, हमरे बाबुओं को दीन रहा उधारी, वह वसूले आवत रहे।
1: बड़ी बहन जी क्या रहते थे?
0: हाँ साहब, बहन जी कहत रही ये हमार मित्रा ही। और जब हम बहन जी से मोबाइल की जिद की है ना,
1: हाँ?
0: कहीं अंकल जी से बोलूंगी वो तुझे शहर से ला के देंगे। ये मोबाइल के कारण हमारी जिंदगी बर्बाद होएगा हजूर।
2: ओहो, चुप हो जाओ, शाबाश, चुप हो जाओ।
0: एक दिन हम अपन चाची का चावल दे बगल के गांव जात रहन, पक्की सड़क में अंकल जी अपन मोटर गाड़ी सुधारत रहें, हम उनके पास चले गए।
1: वहां कौन था, और भी लोग थे?
0: वह सड़क तो वही से वीराने रहा थी। जब मोटर गाड़ी ठीक हो गए तो अंकल जी हम ही मोटर में बिठाई और चाची केहन गांव छोड़ दिहिन।
1: अच्छा।
0: हाँ, रास्ता पर खूब हंसी ठट्ठा केहिन।
3: अच्छा, तो उन्होंने तुमको चाची के घर पर छोड़ा?
0: नहीं, हम तो गांव के मोड़े में उतर गए थे। हम अंकल जी से कहन कि वो हम ही मोटर से छोड़े वाली बात गांव में कोई से ना कहें, बाबू को पता चली ना तो जिंदा जमीन में गाड़ दई है।
1: उसके बाद भी तुम उनकी मोटर में बैठी?
0: वो तो रोज है सबसे छुपाए के हम ही मोटर में घुमावत रहे।
1: अच्छा।
0: एक दिन कहीं तू मेरे साथ शहर चल, मैं वहां तुझे तेरे पसंद का मोबाइल दिलवा दूंगा और चुपचाप गांव में छोड़ाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। दीदी, वह दिन जौन हम घर से निकले तो आज तक घर न लौट पाए, हम ही घर पहुंचाए दीदी थी, अपना के पाँव पड़े थे।
2: अरे पाँव छोड़ो, पाँव छोड़ो गुलाबो। हाँ, अब ये बताओ उसके बाद क्या हुआ?
0: वह शहर पहुंच के अंकल जी कहें कि पहले हम घर चलेंगे, मुँह हाथ धो के बाजार जाएंगे। तारा खोर के जैसे हम अंदर गए था अंकल जी दरवाजा बंद कर दें, कड़ी लगा दें। हम घबरा गए, हम कहें हम ही मोबाइल उबाइल ना चाहिए, हम ही गांव पहुंचाए दे। हाँ, पहले तो वो हम ही समझाइन, फिर एक झापड़ मारिन तो हमार दिमाग झन्ना आएगा, फिर कहीं आवाज निकाली तो टटुआ दबा दूंगा, फिर हम ही जकड़ लिए। फिर बहुत समय के बाद एक ठे औरत और दूठे आदमी आए, फिर सब दारू पीन, हम का जबरदस्ती पीबाइन, हम सुत भी सर गए साहब, और हमरो साथ जबरदस्ती कहन। जब हम ही सुध आई तो हम एक लंबे चौड़े कमरा में रहें, उन हमरे जैसे औरों लड़कियां रहें, हम सब रोवत रहें, और एक ठे आदमी हम पंचन का कोड़ा से मारत रहा। फिर लता आंटी आई, वही पांच ठे लड़की पसंद की हिन, फिर अपने साथ ले आई, उनके ठिकाने में ला के कहिन अगर तुमने कभी किसी से कुछ कहा तो तुम्हार सगले परिवार को खत्म कर देंगे।
1: करीम।
3: यस सर।
1: तुम इसे दूसरे कमरे में ले जाओ।
3: ओके सर, आओ चलो।
1: कविता
2: सर,
1: तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है, कल ठीक 5:10 पर

0: खबरें ही खबरें सबसे तेज
1: मुंबई से बॉम्बे का नाम निशान मिटाने पर
2: मेट्रो इंडिया में इन बड़ी खबरों के अलावा
3: आज के सन्धार सबसे बड़ खबर पुलिश एक अंतरराज्य सेक्स रैकेट पुरोपुरी भेंगे फेलेछे ভারতের ইতিহাসে এটা তৃতীয় সবচেয়ে বড় র‍্যাকেট।
4: ইসি বিচ এক বড় খবর আতি হুই। পুলিশ নে এক আন্তঃরাজ্যীয় সেক্স র‍্যাকেট কা ভণ্ডাফোড় কিয়া হে। দেশ কে 10 রাজ্যো মে ফেলে ইস র‍্যাকেট কে 57 আড্ডো পর ছাপে মারকার আব তক 80 মুজরিমো কো গ্রেফতার কিয়া যা চুকা হে। 350 বন্ধক লড়কিয়ো কো ছুড়ানে কা সমাচার ভি হে। अपने संवाददाताओं से जुड़ते ही हम इस खबर के विस्तार में जाएंगे, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस सेक्स रैकेट का पर्दाफाश करने में अमजद नाम के एक नौजवान की जागरूकता काम आई, जिसने एक फ्लैट में चल रही संदेहपूर्ण गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दी। तो आप भी रहिए बाखबर और बने रहिए हमारे साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे हाशिम असादिक का लिखा नाटक सफेद भेड़िये। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: राकेश बद्रवास्ती, कबीर अरविंद बिलगनिया, लताबाई रंजना तिवारी, कविता स्वस्तिका चक्रवर्ती, करीम इरफान सौरभ, खट भाऊ उदय शाहणे, गुलाबो सुनीता सिंह और समाचार वाचक की भूमिका निभा रहे थे डॉक्टर अरविंद सोनी। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: हाशिम अस सादिक का लिखा नाटक सफेद भेड़िये अभी आप सुन रहे थे। इसके प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
2: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
3: सफर में
2: आपके साथ
3: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए अरविंद जोशी का सितार वादन, राग है बिहाग।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे बेहाग राग पर अरविंद जोशी का सितार वादन।
1: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
2: आकाशवाणी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और संसदीय टिप्पणी की।
2: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: सरकार नीट पेपर लीक चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोऊ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:51 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।